हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। सवेरे के 5:57 होने को है, हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल D में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम

0: के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: सत्य वो है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है और जिसमें सभी का कल्याण है। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध है वही सत्य बोल सकता है, वही सत्य शोधक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की प्रत्येक अवस्था में सत्य सनातन है, निश्चल, पवित्र और आनंददायक है। हम मनुष्यों को व्यावहारिक जगत में रहते हुए सत्य शोधक होना चाहिए। इसके लिए सत्य के असीम सौंदर्य और इसके महत्व को समझते हुए हमें अपने दैनिक लोक व्यवहार में विवेक के प्रकाश को आत्मसात करना होगा। हमारे अंतस का अनुभव सत्य है, ये चेतना से भरपूर है, ये शांति और आनंद देता है। बाह्य सुख सुविधाएं अंतस को आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि परम आनंद तो आत्मा के ज्ञान से मिलता है और आत्मा चेतना का प्रकाश हमारे अंतस या अंतःकरण को पावन करती है, क्योंकि इससे अज्ञान दूर होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा परम लक्ष्य है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का साधक अपने अभिमान, अज्ञान की आहुति देकर अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से उजागर कर देता है। सत्य का शोधक संसार के दुर्गुणों को ध्वस्त करते हुए कदम से कदम बढ़ाकर नई सामाजिक संरचना और नए युग का निर्माता बनता है। आइए आज सुबह की शुरुआत सत्य के शोधक बनकर समाज को नई दिशा देने के शुभ प्रयास से करते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देश गान।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज इसमें सुनिए कड़ी संख्या 153। गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर।

श्री राम और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वनगमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थी रंजना जोगलेकर, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा में प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:45 पर कर सारी बात में आप सुनेंगे वार्ता मूंगफली में कीट एवं रोग नियंत्रण के विषय में। सवेरे 7 राजस्थली कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राजस्थानी कहानी रमकू की हूंस। कहानीकार होंगी डॉक्टर पुष्पा राजावत। समाचार तरंग का प्रसारण समय रहेगा सवेरे 8:45 का। सवेरे 9:15 पर हेलो जयपुर में आप सुनेंगे हमारा हेल्थ सेगमेंट। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन, आज इसमें चर्चा होगी क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान होंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर, सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:10 पर आप सुनेंगे हरीश चंद्र शर्मा पार्टी के गाए कुछ लोकगीत। ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम पणिहारी सुनेंगी दिन में 1:30 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकते हैं दिन में 3:30 पर। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:00। ग्राम भारती कार्यक्रम में शाम 7:00 ग्रामीण श्रोता सुनेंगे बातचीत कृषि प्रशिक्षण के विषय में। ये बातचीत होगी देवीलाल कुमावत से, साथ ही होंगे मौसम, बाजार भाव और गीत। किसान भाई बहनों के लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम होगा शाम 7:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर शशिकांत गोयल से बातचीत कृषि में वृद्धि नियामकों का प्रयोग इस विषय पर।

स्पोर्ट्स स्कैन, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:30 का समय रहेगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक का। ये दोनों ही प्रोग्राम्स हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा में ये थी जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारण समय के बारे में। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कर सारी बात।

0: मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: श्रोताओं कर सारी बात में लीजिए सुनिए वार्ता मूंगफली में कीट एवं रोग नियंत्रण।
4: करसा भाई और बेना राम राम सा। करसा भाया आज आप बात कराना मूंगफली की फसल में पौध संरक्षण की, क्योंकि देखो आप खेती बाड़ी करा छा और अपनी पूरी मेहनत और लगन और पूरो रुपयो पीसो लगार आप अपनी फसला ने खड़ो करा छा, पर जब कई बार छोटी सी लापरवाही या कहलेवा की जानकारी का अभाव में ये रोग और कीट अपनी फसला ने नुकसान पुगावे छे तो अपना जो किसान भाई हो छे वहाँ की कमर टूट जाओ छे और वहाँ आर्थिक नुकसान पहुँचे छे। तो देखो साहब जब आप कीट और रोगों की बात करा तो आपने यहाँ की पहचान होनी चाहिए और इनके साथ साथ आपने यो भी ज्ञान होना चाहिए कि भाई कौन सा रोग में या कौन सा कीट का प्रकोप पर आप कौन सो उपचार कर सका छा। तो आप बात करा छा खड़ी फसल में दीमक और सफेद लत का नियंत्रण का बारे में, तो सा ये भी अपनी जो फसल हो छे बिनो बोड़ो नुकसान पुगावे छे। इनकी रोकथाम के तानी क्लोरोपाइरीफास 20 cc 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई का पानी के साथ यदि आपा प्रयोग करा तो आपने दीमक और सफेद लट ज्यादा नुकसान कौन पुगा पावे। बात करा मोयला या चेपा की तो इको प्रकोप दिखाई देवा पर 250 मिलीलीटर मिथाइल डिमेटोन या डाइमिथोएट या फिर 300 मिलीलीटर मेलाथियन प्रति बीघा की दर से आपने छिड़काव करना चाहिए। कातरा की जब आप बात करा तो इकी रोकथाम के तानी 6 किलो मिथाइल पैराथियन 2% चूर्ण प्रति बीघा में भुरकाव करना चाहिए। बात करा आप बरूथी की जिन्हें आप माइट भी कहवा छा तो सा देखो बरूथी को भी प्रकोप अपनी फसला में कटे कटे देखे गयो छे। अत्यधिक प्रकोप की दशा में गंधक को चूर्ण 4 किलो प्रति बीघा की दर से यदि आप भुरकाव करा तो ये अपनी जो फसल है मूंगफली की या इनका प्रकोप से बची रहेली। अब बात करा आप रोग नियंत्रण की, सबसे पहली बात करा टिक्का बीमारी की। टिक्का बीमारी को प्रकोप होबा पर कार्बनडिज्म 50% WP 0.1% 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर मैनकोजेब 0.2% यानी कि 2 लीटर प्रति लीटर पानी का घोल प्रति बीघा की दर से छिड़काव करना चाहिए या फिर हेक्साकोनाजोल 5 cc 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रथम छिड़काव बीमारी का प्रारंभिक लक्षण दिखाई देवा पर और दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करवा से ई बीमारी को प्रभावी नियंत्रण पायो गयो छे। खड़ी फसल में संधि विगलन रोग यानी कि कॉलर रोट की जब आप बात करा तो खड़ी फसल में संधि विगलन रोग की रोकथाम के तानी प्रोपिकोनाजोल 25 cc या हेक्साकोनाजोल 5 cc 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी को मृदा निक्षेप या फिर सिंचाई के पानी के साथ 200 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से देना चाहिए। बात करा जैव उत्पाद के द्वारा संधि विगलन यानी कि कॉलर रोट की और टिक्का बीमारी को नियंत्रण, जैव उत्पाद ट्राइकोडर्मा विडी 10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार और 4.0 किलो ट्राइकोडर्मा विडी ने 250 किलो गोबर की खाद में उपयोग से 15 दिन पहले बिगोर छाया में रखना चाहिए और बुवाई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में मिला देना चाहिए और 5% नीम की निमोली को घोल यानी NSKE को पहलो छिड़काव 45 दिन पर और दूसरा छिड़काव 60 दिन पर करवा पर यहाँ रोगों को प्रभावी नियंत्रण पायो गयो छे। कॉलर रोट को और टिक्का बीमारी को समन्वित प्रबंधन की जब आप बात करा तो यहाँ रोगों की रोकथाम के तानी टेबुकोनाजोल 2 DS 1.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार और बुवाई से 15 दिन पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विडी प्रति बीघा की दर से 12 से 15 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ने मिला छाया में रखना चाहिए और बुवाई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इनके साथ ही ट्राइकोडर्मा विडी की या मात्रा ई मात्रा ने 40 दिन की फसल अवस्था पर माटी में मिला देनी चाहिए। ई उपचार से कॉलर रोट को प्रभावी नियंत्रण करो जा सके छे। इनके साथ ही टेबुकोनाजोल 25.9% EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रथम पर्णीय छिड़काव बीमारी का प्रारंभिक लक्षण दिखाई देवा पर और दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करवा पर टिक्का बीमारी को नियंत्रण करो जा सके छे। जड़ गलन रोग भी अपनी फसल ने बड़ो नुकसान पुगावे छे तो ई रोग का नियंत्रण के तानी 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विडी प्रति बीघा की दर से 60 से 65 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलार छाया में रखना चाहिए और बुवाई के समय भूमि में मिला देना चाहिए और बीज ने 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विडी प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुवाई करनी चाहिए और ट्राइकोडर्मा विडी 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से

0: बीमारी का लक्षण दिखाई देता ही मृदा निक्षेप यानी कि ड्रेंचिंग से कर देना चाहिए। मूंगफली पकवा को समय अक्टूबर का अंत से नवंबर का मध्य तक होवे छे। फसल पकता समय भी अपनी हरी रैली इन्हें जमीन खोदर देख लेना चाहिए कि फलियां पक गई या न पकी। अगर 80% फलियां पक गई हो तो मूंगफली की खुदाई की जा सके छे। मूंगफली खोदवा के पाछे इन्हें छोटी छोटी डेरिया में 7 से 10 दिन तक आवश्यक रूप से सुखा लेना चाहिए। अब बात करा आपा उर्वरका की, तो मूंगफली में 5 किलो नत्रजन और 8 किलो फॉस्फोरस यानी कि 11 किलो यूरिया और 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा के हिसाब से खेत में बुवाई से पहले देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग अधिक लाभदायक रहे छे। 50 किलो जिप्सम प्रति बीघा बुवाई के समय ड्रिल करना लाभदायक रहे छे। रेतीली भूमि में 10 किलो नत्रजन और 15 किलो फॉस्फोरस प्रति बीघा देनी चाहिए। निराई गुड़ाई भी अपने लिए बहुत जरूरी है। मूंगफली का पौधा में फूल आभा से पहले ही निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। फूल आभा के पश्चात कोई निराई गुड़ाई कसिया या खुरपी से कोन की जा सके। आवश्यकता हो तो दूसरी निराई गुड़ाई आवश्यकता के अनुसार आपा शीघ्र ही कर सका चा। खरपतवार नियंत्रण की आपा बात करा तो रेतीली माटी में जटे मूंगफली में भूरट खरपतवार की समस्या हो वटे पेंडा मेथालिन 30 EC की 175 ग्राम मात्रा का प्रयोग बुवाई के 2 दिन पाछे और पुनः 6 सप्ताह सिंचाई के तुरंत बाद छिड़काव कर देना चाहिए। या फिर खरपतवार नियंत्रण के तानी इमेजा थाई पर 10% SL दवा की 10 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति बीघा की दर से 100 से 125 लीटर पानी में डालर बुवाई के 30 से 35 दिन के पाछे छिड़काव कर देना चाहिए। जी खेत में यो रसायन प्रयोग में लायो गयो छे बटे सरसों की अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सके छे। इके पाछे सरसों की बुवाई अगर करनी हो तो बीज की मात्रा ज्यादा डालनी चाहिए। बात करा सिंचाई की तो मूंगफली की खड़ी फसल में 3 से 4 सिंचाई आपने करनी चाहिए। पहली सिंचाई बुवाई के करीब 25 से 30 दिन पाछे की जानी चाहिए और दूसरी सिंचाई अगस्त का प्रथम पखवाड़ा में की जा सके छे। फूल आभा पर सुइया बनबा पर और फली का बनता समय भूमि में नमी को होबो आवश्यक छे। अगर समय पर वर्षा हो जावे तो सिंचाई देवो आवश्यक कोन है। सामान्यतः सितंबर के पाछे सिंचाई न करनी चाहिए अन्यथा फसल पाकवा में देरी हो सके छे। फव्वारा सिंचाई की बात करें तो मूंगफली की फसल में फव्वारा सिंचाई विधि से सिंचाई के तानी नोजल से नोजल की दूरी 12 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर रखकर 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पानी का दबाव पर सिंचाई करना चाहिए। ई फसल में 60 मिलीमीटर प्रति सिंचाई पानी लगभग पर 5 सिंचाइयां बुवाई के 24, 48, 70, 91 और 112 दिन के पाछे उपयुक्त पाई गई छे और 50 मिलीमीटर प्रति सिंचाई पानी लगापर पर 7 सिंचाइयां बुवाई के 25, 40, 54, 68, 82, 95 और 108 दिन पाछे उपयुक्त पाई गई छे। फव्वारा पद्धति के द्वारा सतही सिंचाई की अपेक्षा लगभग 25% सिंचाई जल की बचत पाई गई छे। तो किसान साथियों ई तरीका से यदि आप ये छोटा छोटा उपाय अपनावा अपनी फसला को निरीक्षण करता रहवा तो देखो ये जो रोग और कीट अपनी फसला में लाकर अपने नुकसान पुगावे छे तो आप यहाँ से बच सका छा। ई के साथ साथ टेम पर सिंचाई टेम टेम पर खरपतवार नियंत्रण यदि आप अपनी फसला में करता रहवा तो देखो अपनी अच्छी उपज होबा से कोई भी कौन रोक सके। तो किसान साथियों आपने यहाँ छोटी छोटी चीजा को ध्यान रखनो छे और अपनी जो फसला छे वहां से आप यही तरीका से अच्छा उत्पादन ले सका छा।
1: श्रोताओं कर सारी बात में अभी आप सुन रहे थे वार्ता मूंगफली में कीट एवं रोग नियंत्रण के विषय में। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है।
2: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियात और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म अदब की सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए कराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर जिसका मकसद है वो है आपका अपना DD उर्दू चैनल।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

103 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर सवेरे के 7 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थली।

0: राजस्थली कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोताओं को गुणगुण स्वागत है सा। आज रही कार्यक्रम में आप सुनने वाला एक कहानी रमकुरी हूँस। कहानीकार है डॉक्टर पुष्पा राजावत।
1: एक छोटो गांव हो, उन गांव में सातू जाति रा लोग रहता। गांव में एक गाया भैंसा राखण वालो गवाड़ियों भी रहतो। उनरो नाम पद्मो चौधरी हो। पद्मो दूध धारो काम करया करतो और आपको घर को खर्चो चलातो। मोट्यार होता होता ही उनरो ब्याव पागती गांव में एक कन्या सु होई गयो। उनरी लुगाई शीलवंती बहुत समझनी और होशियार ही। उनरे एक बेटी हुई, कन्या को नाम रमकु राख्यो। रमकु रो बाप बेटी ने लाड प्यार सु बड़ी करण लाग गयो। घर माए खूब रौनक रेवन लाग गई। अठी ने विदाता ने और काई मंजूर हो। रमकुरी माँ कोई बीमारी सु स्वर्ग सिधार गी। रमकुड़ी 3.5 साल की छोटी सी उम्र में माँ का लाड प्यार सु अणमणि होगी। माँ ने मरिया 12 दिन भी नहीं होया ने पद्मा चौधरी वास्ते ब्यावरा रिश्ता आवन लाग गया। बुढ़ा बडेरा और गांव रा लोगारी समझाई सु पद्मो ब्यावरे वास्ते राजी हो गयो। वो जाने हो कि माई माँ किसी होया करे। वो जान तो कि करा मारी छोरी रे फोड़ा नहीं पड़े। गणी सूझ बूझ कर ने दूसरो ब्याव कर लियो और रमकू ने दूजी यानी सौतेली माँ मिल गई। चौधराणी थोड़ा घना दिन तो सुख चैन सु काटन दिया और पाछे आपरो रंग दिखावन लागी। छोटी सी रमकू ने बात बात पर लड़ाई झगड़ा और रूसना मनाना करवा लागी। 5 साल री छोटी सी उम्र में काणी पीठ गाँव सु नरो दूर एक खाता पीता परिवार में रमकू ने ब्याव कर दियो। पहली का जमाना में ब्याव छोटी थकीरो कर देता और मुकलाओ थोड़ा मोड़ो करता। 9-10 साल की होता होता मुकलाओ मान दियो। अब रमकू आपरे सासरे चली गई। सासरा में 2 जिठानियां ही, उनारो काम हो फालतूरी पंचायतें करनो। देवरानी आया पाछे और भी बडेरी होगी। दोनवा रे दो दो बेटा सारे दिन घर ने माथे चढ़ाई डो राखता। रमकू रो आदमी सीधो साधो खूब मेहनती हो। रमकू भी उनरे सागे सागे खेतरो दूध धारो काम करावती। दोनों पति पत्नी में चोखो मेल मिलाप हो। 1-2 साल में परिवार री लीक सु हट रमकू एक बेटी ने जन्म दे दियो। जिठाणिया मोसा बोलन लागी और मुंडा मरोड़ मरोड़ बातां करती। छोरी तो धीरे धीरे बड़ी होन लागी। जिठाणिया रा बेटा दूध रा भर भर बाट का पीता और गांव में रोता फिरता। रमकू री बेटी ने कालो गुड़ और धाणी खावण ने मिलती पण बाकी नहीं बोलती, आपरा काम सु काम राखती। एक दिन सासु कने समाचार आया कि रमकू रो बाप मर गयो। सासु रोवा राट और आपका घर रा सुन खराब नहीं वे इया जान ने उनने नहीं बतायो और 5-7 दिन पाछे कयो जा थार पियर में जाया। रमकू रे पगरा घूगरा बन गया। मेहंदी मोली कर बाजनी पाजे मा पैर रमकू जाने री तैयारी करन लाग गी। इया करता करता वह अपने गांव री सीम पर पुगी जना लुगाया ने आपस में बतलावती देखी। लुगाया रमकुरा बनाव ने देख और कहवे कि देखो बाप मरेड़ो है और केड़ी बन ठंडर रोवन ने आई है। बेटी री आंख में तो आंसू रो नाम कोनी, आ केड़ी बेटी है। रमकू बाप री मौत सु अनजान आपरा घरा का नी जावन लागी। 2-4 लुगाया रास्ता में मिली और बोली कि रमकू तू अब आई है कहीं। अब रमकू रो माथो ठिणक्यो। घर री पोड़ में पुगी और जाजम पर गांव रा बूढ़ा बडेरा और लोग लुगाया ने देखताई अशुभ समाचार जान सारो दोष माई मारो दिखबा लाग गयो। सब कहो कि बाप बीमार हो जना एक बार भी मिलन ने नहीं आई। ओड़ मो सुनता ही रमकुरा अंग अंग में वास्ते सी लागबा लागी। माई मारो खराब व्यवहार देख अर बा एक मिनट भी बटर नहीं रुकी अर पानी री घूंट भी गड़ा में नहीं उतारी अर बाई पगा पाछी सास रपूगी अर सारा गहना घाटी एक एक करने सासू और पति रे आगे रोती रोती फेंक्या अर घणो रोस करियो पण अब काई वे मरोड़ा बापरा आखरी दर्शन भी नसीब नहीं हुआ। घणो दुख जतायो पण कोई की नहीं कर सक्यो और कोई रकी फरक भी नहीं पड़ियो। पति तो सब बात सु अनजान हा वह भी की नहीं कर सक्या। रमकू आपरी बेटी ने छाती रे लगार आपरो मन हड़को करियो और खूब रोई। थोड़ा घना दिन बीतबा लाग्या और रमकू रा घर्रा धणी री तबियत

0: खराब रेबा लागी। वह घर रो खेत रो और आपरा पति री सेवा को सारो काम मन लगाए ने करया करती। साल डेढ़ साल री लंबी बीमारी रे बाद कुदरत री मर्जी रे आगे कोई दवाई दारू काम नहीं आई और रमकुरा पति संसार सु आंख फेर ली। अब रमकुरा जीवन में दूनो दुख आ गयो। भगवान परेशानी देवे तो शक्ति भी देवे। रमकु आपरी बेटी रे सारे जिंदगानी जीबारो मतो कर लियो और आपरा पति री जमीन न्यारी बावन लागी। आत्मसम्मान री धीराणी और खरी मेहनती रमकु अरुण री दोनों बेटियां रात दिन एक कर खेत ने चमन बना दियो। जिठानी रा छोरा कुत्ता मारता फिरता पड़िया पड़िया रोटियां तोड़ता। तीनों माँ बेटियां चौकी कमाई करन लाग गई और खूब मेहनत कर राप को नाम समाज में बना लियो। अब रमकुरी जिम्मेदारी बेटी का हाथ पीड़ा करने री रीवी। थोड़ी बहुत खोजबीन करने सु एक कमातो खातो लड़को देखबान मिल गयो और वह आपकी बेटी रो ब्याह तय कर दियो। गांव रा लोगा री सहमति और साथ सु वह बेटी ने पराई कर दी। अब दोनों माँ बेटी आपरा खेतरी छोटी बेटी ही जकी दोनों माँ बेटियां मिल और आपका खेतरी रुखाड़ी करती गाय भैंस ने नीड़ती चराती जिनसु डांडा सु भी बने ज्यादा लगाव होबा लाग गयो। अब थोड़ा दिन बाद वह दूसरी बेटी रो भी ब्याह कर दियो और जिम्मेदारी सु मुक्त होगी। अब वह काम रे साथ साथ कंठी माला भी ले ली और आप रो थोड़ो घणो टेम भक्ति में देबा लागी। दोनों छोरिया माँ के कन्ने डोडी रहती माँ को पूरा ध्यान रखती। किया करे ने कि आपा काई सोचा और ऊपर वालो काई विचारे। ब्याह रे 4 साल बाद बड़ी बेटी रो पावणा ने निकालो निकलो। बुखार उतरन रो नाम नहीं लेवे। दवाई दारू उतारा सब करया पर वे ठीक नहीं हुआ। दिना दिन कमजोरी सु शरीर पतलो पड़ गयो और खून रो पानी हो गयो। अब उना ने कोई नहीं बचा सकया। बड़ी बेटी जवानी में विधवा होगी। अब रमकुरा गोडा टूट गया वह हिम्मत हारन लागी पर भगवान री शक्ति सु बेटी ने आप रे कने राख और कामकाज में मन लगावा लागी। बेटी ने पीवर में रहती देख जेठानी रा बड़ा बेटा रा साला रो रिश्तो करण खातर जिठाणिया जोड़ देबा लागी। सालो की कमाई धमाई तो करतो कोनी और तीतर मार तो फिरतो। बेटी रे साथ रिश्ता री बात सुनता ही रमकू रे गुस्सा रो पार नहीं रियो। एक चढ़े रे एक उतरे। जेठू ता सोची कि साला ने घर जमाई राख लेश्या और इनारी जमीन पर फको जासी आपा मौज करस्या अरे मेहनत करसी। आ बात रमकू रे उनरी बेटी रे दोनों रे गले नहीं उतरी। लड़की वर ने नापसंद कर दियो। दूसरी जगह बेटी री शादी करे तो घर जमाई राखे आ बात काका बाबा ने नहीं जची। मान चाहे नहीं मान मैं थारो मेहमान। एक दिन मौको देख और माँ की गैर हाजरी में साला जी जगह बीन राजा बनबो चावा बेटी री कोटड़ी में बढ़ गया और माए सु कुंदो लगा दियो। रमकू री बेटी डकैत बीन राजा ने सागेड़ी मरम्मत करी और कुंडी खोली। जना पंचायत बैठी पंच सोचन लाग गया कि अब काई करा। पण तीतर बाद साड़ो पंचारे सामी कयो कि मने ता घना मानसु बुलाई जद में आयो। पंच कयो कि घोर कलयुग आ गयो। दोनों ने एक कोटड़ी में रेवण सु लोग लुगाई बनर एक साथ रेवणो पड़सी। पंच आपरो फैसलो सुना दियो। अब साला जी घर जवाई बन और सासरे रेबा लाग गया। जवाई सारा दिन तीतर मारतो फिरतो और कोई भी काम काज नहीं करतो। गाय ढांडा सब मरबा लाग गया। खेती बाड़ी सूखबा लागी। अकेली बेटी मेहनत करती फिर भी खेती बाड़ी में घाटो लाग गयो। जमीन गिरवी राखनी पड़ी। टाइम सु जमींदार ने लगान नहीं चुका बासु जमींदार जमीन हड़प ली। पंचारा फैसला सु रमकू बहुत नाराज हुई और सांची बात करवा वास्ते मौको देखबा लागी। उन एक बार इशो मौको मिल्यो कवा पंचायत ने सामी ले ली और उनारो फैसलो मानबासु साफा मना कर दी और आपरे कने गांठ रा पीसा बेड़ा करो रहा वह सब ले और शहर की तरफ रूख कर लियो। एक साहूकारणी उनने घर्रा काम काज वास्ते राख ली। अब्बा साहूकारणी रे घर पूरा समर्पण भाव सु काम करती सबरा दिल जीत लिया और पाछो गांव कदई नहीं गई। रमकू की हूस सु बा आपकी बेटी री और खुदरी जिंदगी ने संवार ली। आज भी आपा देखा कि गांव की लुगाया अशिक्षा के कारण अत्याचारा रो सामनो करे। अपनी सबारी जिम्मेदारी है कि आपा बेटिया ने अच्छी शिक्षा देवा और आपरा पगा माथे उबाण और आत्मनिर्भर बनावा जिनसु परिवार समाज और गांव और अपने देश समेत पूरी दुनिया रो कल्याण वे जावे।
1: रमकुरी हूस अभी आप सुन रहे हैं कहानी। कहानीकार रहा डॉक्टर पुष्पा राजावत। ये कहानी का पाछे अब सुना आप एक मीठो सो लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थली। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं। बोल है SH बिहारी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अगर तुम ना होते इस फिल्म का गाना। बोल है गुलशन बावरा के, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: ये गाना है फिल्म ज़मीन आसमान से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। बोल हैं अनजान के संगीत आर डी बर्मन का है।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे अवतार फिल्म का गाना, बोल थे आनंद बख्शी के।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पिघलता आसमान से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। बोल हैं इंदीवर के संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

नितिन मुकेश, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना खून भरी मांग इस फिल्म का गाना। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना सौतन फिल्म का गाना, बोल थे सावन कुमार के संगीत उषा खन्ना का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे। समाचार 8 बजे हिंदी में, 8:15 पर अंग्रेजी और 8:30 पर उर्दू में होंगे। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा।

0: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
2: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती

0: परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-23-31-04-81 या 23-71-17-17 या 23-71-71-06 और 23-31-44-44। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा

0: 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912467302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
2: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE नीट CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Self-enumeration for Census 2027 to begin today in Ladakh and identified snowbound areas of Jammu and Kashmir. NTA to reconduct UGC NET exams for 3 subjects, English, Sociology and Commerce, following complaints of errors in these papers. Protesting Jharkhand students to hold fresh round of talks with state government in Ranchi today. IMD issues red alert for very heavy rainfall in

0: शाम में भारत के आयुष शेट्टी मर्दों के सिंगल्स के जुमरे में चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन और शी यू की के खिलाफ खेलेंगे। मर्दों के डबल्स के जुमरे में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी पहले ही एक बाय हासिल करने के बाद दूसरे राउंड में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के खिलाफ गाले बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन अपनी पहली इनिंग का दोबारा आगाज करेगा। भारत ने कल के खेल के अख्तितम पर 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव अभी क्रीज पर ही हैं। इससे कबल देवदत्त पुडिकल ने शानदार सेंचुरी बनाते हुए 167 रन का स्कोर किया, जबकि केएल राहुल ने 82 और ध्रुव जुवेल ने 51 रन का शानदार स्कोर किया। मर्दों की हॉकी में आज नीदरलैंड्स में वाग्नेर हॉकी स्टेडियम में भारत की टीम सेकेंड पूल के डी के अपने मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। इसका मकसद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखना है। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे गुमराहकुन लेबलिंग और सारिफिन के हुकूक से मुतालिक बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। प्रोग्राम के दौरान सामईन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं। ये नंबर्स हैं 011-233-10481, 011-2371-7117, 011-2371-7106। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 अता करेंगे। अमले अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि अवार्ड्स की तकसीम से मुतालिक तकरीब में पेंशन मित्र से मुतालिक किताबचा और मुल्क की सतह पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC मुहिम 5 के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया कौनेन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सफे अव्वल पर शाये करते हुए वजीर आजम के इस बयान को खसूसियत के साथ नुमाया किया है कि नौजवानों को मुफ्त कोचिंग और मसनूई जहानत AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के शिनाख्तशुदा बर्फानी इलाकों में 2027 की मर्दुम शुमारी के लिए खुद इंदराज का अमल आज से शुरू हो रहा है। इम्तहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA 3 मजामीन इंग्लिश, कॉमर्स और समाजी उलूम के पर्चों में गलतियों की शिकायत के बाद इन तीनों मजामीन के लिए UGC नेट इम्तहानात दोबारा मुनाकिद कराएगी। झारखंड में एहतजाज करने वाले तलबा आज रांची में रियासती सरकार के साथ बातचीत का ताज़ा दौर शुरू करेंगे। महकमे मौसमियात ने ओडिशा गंगोत्री मगरबी बंगाल में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में कदीम बाबा बुद्ध अमरनाथ मंदिर के लिए सालाना श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और BWF बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है समाचार तरंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग।

मैं हूं आपकी प्रस्तोता सलेहा। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो विकास की गति, जन सुविधाओं और तकनीकी दक्षता से सीधे जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीबी जी राम जी की। लेकिन किसी भी योजना की सफलता केवल उसके निर्माण तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी प्रभावी, उसका जो क्रियान्वयन है, उसकी तकनीकी गुणवत्ता है, निगरानी है और आम लोगों तक सीधे सीधे उसकी पहुंच, इन सभी पहलुओं को सुनिश्चित करना भी

0: उतना ही आवश्यक है। तो आज इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ हैं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री अरविंद सक्सेना जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और इस कार्यक्रम को समय देने के लिए यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को हम ये चाहेंगे कि आप बहुत ही आसान से शब्दों में बताएं कि ये वीबीजी राम जी क्या है और अगर एक आम आदमी यानी गांव के आदमी के नजरिए से देखें तो इस योजना से उसे सीधे तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है।
1: जैसा कि योजना के नाम से पता लग रहा है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो हम यहाँ रोजगार के साथ साथ विकसित भारत में ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका की बात करते हैं। यानी हमारे जो रूरल ग्रामीण परिवार में जो लोग रह रहे हैं, जितने भी परिवार रह रहे हैं, उनके हम रोजगार और उसकी आजीविका के लिए इस योजना से फ़ायदा ले सकते हैं, उनसे लाभ ले सकते हैं। अगर आप देखें तो विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका योजना जो है, इसमें 125 दिन के लिए तो एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी है। अगर कोई भी अकुशल श्रमिक जो ग्राम में रहता है, गांव में रहने वाला है, तो उसको 125 दिन रोजगार मिल सकता है। साथ ही अब ऐसी गतिविधियां इसमें जोड़ी गई हैं कि वो उनकी आजीविका के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिससे उनकी आजीविका भी बढ़ेगी।
0: और सर कितने तरह के काम जो है इसमें शामिल किए गए हैं?
1: आपने ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। योजना में अब गांव के विकास के लिए जितनी भी आवश्यकताएं, लगभग उन सब को शामिल कर लिया गया है। यानी हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर किसी गांव में दिक्कत है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आप कहें कि भवन निर्माण जो है, स्कूल के कमरे, स्कूल की बाउंड्रीज, फिर अतिरिक्त कमरा अगर ज़रूरत है स्कूल में तो वो, लाइब्रेरीज, फिर आप देखें पंचायत घर बन सकता है, स्वास्थ्य के लिए अगर कोई हॉस्पिटल बनना है तो वो इसमें बन सकता है, तो जितने भी रूरल हार्ट्स बन सकते हैं। तो आप देखें कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें हुई हैं जो इस योजना में अब अनुमत हो गई हैं। आजीविका के लिए भी इसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह गाँव में बने हैं, हमारी ग्रामीण महिलाएँ मिलके ग्रुप बनाती हैं, तो उनके रूरल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि वो कहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए शेड बन सकता है, उनकी जो फेडरेशन बनाया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जिससे वो अपने उत्पादों को वहाँ बैठ के बात कर सकें और उनको डिस्प्ले भी कर सकें। तो इस तरीके की अब चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं, जिससे महिलाएँ आप अपने प्रोडक्ट पर बात कर सकती हैं, बैठ के विचार विमर्श कर सकती हैं, तो ये चीज़ें हुई हैं जिससे उनको आजीविका संवर्धन भी होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप देखें कि केवल आजीविका ही नहीं, हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गांव में अगर आप देखें तो वाटर स्केरिसिटी रहती है, तो जल संरक्षण के जो काम है, जल संरक्षण संग्रहण, इसके अलावा जो जल जीवन मिशन चल रहा है, बेसिकली अब जल जीवन मिशन को जब गांव के लिए लाया गया तो हर घर में नल की बात हो रही है, हर घर जल नल, तो जब नल हर घर के लिए जाएगा तो आगे उसको मेंटेनेंस कौन करेगा, तो विकसित भारत रोजगार आजीविका गारंटी योजना में जल जेजेएम के जो काम है उनको भी अनुमत किया गया है कि जेजेएम के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के जो वर्क हैं वो इसमें कराए जा सकते।
0: सर बतौर इंजीनियर होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि तकनीक को इस तरीके से कैसे जोड़ा गया है कि योजना पारदर्शी रूप में क्रियान्वित हो सके।
1: जी, इसमें ये बहुत अच्छा वो किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो मेन ऑब्जेक्ट जो इस स्कीम का है वो है कि विकसित भारत 2047 तक हम अपने रूरल एरिया को, ग्रामीण एरिया को किस तरीके से करेंगे। तो इसमें प्लान बनाने के लिए जीआईएस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। हम अपने गांव की बाउंड्री को आइडेंटिफाइड करके उस गांव में कहां कहां किस लोकेशन पर क्या एक्टिविटी हो सकती है उसकी पहले ही योजना बनाएंगे, और वो योजना एक संतृप्त प्लान, सैचुरेटेड प्लान बनेंगे कि उस गांव की वास्तविक नीड्स क्या हैं, गैप्स आइडेंटिफाइड होके टोटल नीड्स उसमें निकल के आएंगी, और फिर विभिन्न योजनाओं से जितनी भी रूरल एरिया में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स चल रही हैं उनमें जो फंड अवेलेबल है उसके साथ कन्वर्जेंस करके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। तो स्कोप बढ़ गया है इसका।

0: फिर जब हम वर्क का एग्जीक्यूशन करेंगे तो सारा सिस्टम ऑन बोर्ड होके कंप्यूटर से होगा, यानी
1: यानी उसकी निगरानी भी
0: निगरानी
1: ऑनलाइन रखी
0: निगरानी
1: जाएगी।
0: ऑनलाइन हो जाएगी। आप देखें कि जो वर्कर्स काम करेंगे उनकी अटेंडेंस भी फेशियल ऑथेंटिकेशन से होना शुरू हुआ है।
1: अक्सर ऐसी पहले शिकायतें नरेगा के समय आती रही है
0: जी
1: रजिस्टर को लेकर। जी
0: बिल्कुल, इसी तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन की बात हुई, पेमेंट्स पहले भी होते थे, अभी भी हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से ही कर रहे हैं। लेकिन जो नई चीज़ आई, फेशियल ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर टेक्नोलॉजी का प्लानिंग का यूज हुआ, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे वो ऑनलाइन ही बनेंगे सारे के सारे, उनके एस्टिमेशन और वो सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी। इसी तरीके से जो मेजरमेंट्स होंगे वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी पे बहुत बड़ा कदम है कि हम स्कीम के स्टार्ट से लेके उसका जो फाइनल प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तब तक की सारी एक्टिविटी आप देखेंगी वो ऑनलाइन होंगी।
1: राजस्थान ऐसा कहा जा रहा है कि देश में श्रमिक नियोजन में योजना के तहत प्रथम स्थान पर है, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को भी ये बताएं कि कितने श्रमिक नियोजित हुए हैं और इसी अवधि में पिछले साल क्या उनका संख्या थी, क्या तादाद थी।
0: लगभग मोर देन 9 लाख से अधिक परिवार जो हैं वो इस समय श्रमिक कार्यरत हैं राजस्थान में, और इस अवधि में पिछले साल 8 लाख समथिंग कुछ लोग काम करते थे, यानी हमारा जो प्रतिशत है वो बड़ा है। इसका बेसिक जो कारण है अगर हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस योजना को लॉन्च किया तो जनप्रतिनिधियों के साथ इसको लॉन्च किया गया था, तो गाँव में जितना हम लोग इसको प्रचारित करेंगे, लोगों को बताएंगे कि योजना के बेनिफिट्स क्या हैं, उसको उनको क्या लाभ होने वाला है, तो श्रमिक वहाँ काम पे आते हैं। और इस समय चूँकि प्लांटेशन एक्टिविटी हमारे राजस्थान में हरियालो राजस्थान के तहत हो रही है, इस
1: जी
0: साल मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है राजस्थान में 10 करोड़ का, उस 10 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ 61 लाख ग्रामीण विकास पंचायती राज को भी प्लांटेशन करना है। तो हमारी ये एक्टिविटी इस समय पूरी तरीके से चल रही है, गांव-गांव में जहाँ चारागाह विकास है उनमें प्लांटेशन का काम हो रहा है, स्कूल परिसर या जितने भी सामुदायिक परिसर हैं उनमें प्लांटेशन की गतिविधि हो रही है, नर्सरीज हम लोगों ने डेवलप की है उसमें काम चल रहा है। तो इसलिए ये श्रमिक चूँकि इस समय एक्टिविटी ऐसी है जो वर्षा के टाइम में करना ज़रूरी है, तो हमारे लोग भी गाँव वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो काम मांग रहे हैं।
1: इस योजना में 60 दिन का वो जो बुवाई के समय है कि श्रमिकों की उपलब्धता बेहतर हो, तो एक रेस्ट पीरियड भी दिया गया है जब ब्रेक रहेगा।
0: जी हाँ जी हाँ, ये भी इसलिए दिया गया है कि गाँव में जब फसल कटाई और बुवाई का काम होता है तो उस समय गाँव में श्रमिक नहीं मिल पाते, तो सरकार ने ये प्रावधान इस अधिनियम में ही किया है कि हम 60 दिन का 60 दिन का एक पीरियड रखेंगे जिससे कि उस अवधि में लोगों को कृषि के लिए काम करने के लिए लोग उपलब्ध हो सकेंगे।
1: सर, कोई भी योजना जब आती है नई, तो जाहिर सी बात है उसके साथ ही बहुत सारी चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या-क्या खास चुनौतियां हैं, और अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, आपको क्या लगता है इस योजना को लागू करते समय किन-किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है?
0: राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, जैसा कि आपने कहा कि ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी अलग है, राजस्थान में 10 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है मैम, तो हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन की स्थितियां अलग अलग हैं। तो बेसिक अगर किसी योजना को इम्प्लीमेंट्स करना है तो मेरा मानना है कि हम प्लानिंग जितनी अच्छी करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा होगा। तो काम यह है कि हमें प्लानिंग सोच समझ के करनी चाहिए, ग्रामीणों को उस प्लानिंग में योजना बनाने में कि उसके गांव की आवश्यकताएं क्या हैं और वो कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट होंगी, उनको आइडेंटिफिकेशन पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। भले ही कोई भी हो, अगर वो अकुशल श्रमिक नहीं भी है तो भी हमें ये समाज सामाजिक हमारी जिम्मेवारी बनती है गांव में कि हम योजना ऐसी बनाएं जो हमारे लिए उपयोगी हो, हमारे समुदाय के लिए उपयोगी हो। अगर हम योजना आइडेंटिफाइड कर लेंगे तो फिर उस योजना को इम्प्लीमेंट कराने का काम इस योजना के तहत होगा, फंड्स की आवश्यकताएं कहाँ से होंगी वो सब पूरी होंगी। तो ये थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ये चैलेंज है हमारे ग्रामीणों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, कि हम प्लान योजना कितनी अच्छी बनाते हैं और फिर राशि की उपलब्धता किस किस स्कीम से कैसे कैसे हो पाएगी ये हमें देखना होगा।
1: जी हाँ, किन सर हम बात कर रहे थे अभी कि स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही काम तय किए जाएंगे, तो सर इसमें क्या ग्राम पंचायतों या स्थानीय समुदाय को भी शामिल किया जाएगा?
0: बिल्कुल मैम, योजना बनने के बाद

0: सभाओं जो होंगी, ग्राम सभा की बैठकें होंगी, उसमें उन योजनाओं को बताया जाएगा और उनके अनुमोदन के बाद ही वो योजनाएं पारित होंगी, तब प्लान अप्रूव्ड होंगे जो बात कर रहे
1: सामाजिक
0: हैं।
1: परिपेक्ष की बात करें तो देखिए, गांव में आज भी युवाओं के समक्ष पलायन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उन्हें लगता है जहां बेहतर काम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहां जाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही काम मिलेगा तो क्या इससे पलायन भी रुक सकेगा?
0: बिल्कुल मैम, अगर आप देखें तो केवल अकुशल श्रमिक ही नहीं, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक भी अब इस योजना में श्रम भाग के तहत आएगा। यानी जो विकसित भारत ग्रामीण आजीविका रोजगार गारंटी योजना है, इस योजना में श्रम और सामग्री का जो अनुपात है, श्रम 60% और 40% सामग्री। पहले जो योजना हुआ करती थी महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसमें 40% केवल मेटेरियल था और उस 40% में मेटेरियल के साथ साथ कुशल कारीगर और अर्धकुशल भी शामिल था। जबकि इस योजना में 60% जो अकुशल श्रमिक है, अकुशल श्रमिक के साथ जितना भी मैनुअल स्किल और सेमी स्किल्ड लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो गए। तो अच्छे ड्यूरेबल असेट बनाने के लिए हमें मेटेरियल कंपोनेंट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है,
1: और प्रशासनिक खर्च के लिए भी अलग से प्रावधान किया
0: बिल्कुल
1: गया है।
0: प्रशासनिक खर्च भी जो 6% था वो 9% तक बढ़ा दिया
1: जी
0: गया है। तो जो गांव के युवा हैं, उन युवा को जो उनका अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, जैसे जेजेएम की जब हम बात करेंगे, जेजेएम के जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के वर्क होंगे, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फिटर प्लम्बर इनकी आवश्यकता होगी, तो वो उस युवा को वहाँ काम मिलेगा।
1: सर, हमारे ग्रामीण श्रोताओं को खास तौर पर आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही कहूँगा कि हमें गांव की विकसित करने के लिए, अपने गांव की जो आवश्यकता है, एक तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें, हम उसमें अपनी योजना बनाने में भूमिका दें और हम सजग रहें, सतर्क रहें, योजना को उसकी पारदर्शिता, उसके क्या सामाजिक प्रभाव आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट से, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उन सब चीज़ों पर हम निगरानी रखें और जहाँ भी हमें आवश्यकता है हमें बताएं, जिससे हम भी अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में उनके जो आउटकम्स हैं उस लेवल तक ले जाएं जिसके परिणाम हमें वांछनीय हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। वीबीजी राम जी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ ये तमाम जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार तरंग कार्यक्रम के जरिए आपने जाना होगा वीबीजी राम जी को बेहतर तरीके से, और निश्चित ही ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही होगी। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए मुझे अनुमति आपको बता दें, कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग सहयोग सुदर्शन नाहर, संपादन माधुरी वशिष्ठ, संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की तिथि में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का दो दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में। और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और

0: अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीखें तय कर दी गई हैं। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को निकाली जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ये लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। इधर राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण के लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता 12 कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान 12 और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास की सौगात दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। अधिक ब्यौरा हमारे 12 संवाददाता से।
1: कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का शिलान्यास एवं लाभार्थियों को चाबी वितरण, 2400 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय एवं संजीवनी पार्क का शुभारम्भ, स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक वितरण, लखपति दीदी योजना 8 करोड़ रुपए एवं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण तथा ग्राम श्री स्वास्थ्य सखी मार्ट 12 का लोकार्पण भी करेंगे तथा 54 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 मंजिला जिला अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज कोटा के बोरेखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 82,55,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में 72,58,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के नए भवन का शिलान्यास शामिल है। भवन में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, मातृत्व और प्रसूति सेवाओं तथा बच्चों के उपचार की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा अस्पताल में 1,25,00,000 रुपए की लागत से बनी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। अराई में 8,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 स्थानों पर टैंक टू टैप जल शोधन और निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। ये व्यवस्था वाटर कूलर सहित विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट में पेयजल की गुणवत्ता से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। इसके तहत पुरानी और अनुपयुक्त पानी की टंकियां बदली जाएंगी। जल स्रोत और आउटलेट दोनों जगह नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही टंकियों की समयबद्ध सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा जल गुणवत्ता की केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में देशभर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे। सम्मेलन में सीबीडीटी के अन्य सदस्यों के साथ देशभर के वरिष्ठ आयकर अधिकारी शामिल होंगे। इसमें आयकर विभाग से जुड़े वर्तमान और भविष्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा।

0: जाएगा। साथ ही विभाग के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव और कार्य योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाजशास्त्र विषय का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। जयपुर में लोक मंथन 2026 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने रविवार कल जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लोक मंथन 2026 के प्रतिभागी पंजीयन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोक मंथन का 5वां राष्ट्रीय संस्करण जयपुर में होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की मुख्य थीम हम भारत के लोग रखी गई है।
1: ये हम सबका सौभाग्य है, राजस्थान का भी सौभाग्य है कि इस बार का कार्यक्रम राजस्थान जयपुर में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रजिस्टर करें और कार्यक्रम में ज़रूर आएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं पहले गई हूँ भाग्यनगर में, जाने का मुझे भी अवसर मिला। मैंने देखा जो स्केल है इस कार्यक्रम का वो बहुत बड़ा है, और इसमें चाहे कल्चर की बात करें, इतिहास की बात करें, थिंक टैंक की बात करें, स्पीकर्स की बात करें, हर प्रकार से आपको जब आप इस कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ आप इस कार्यक्रम से सीखेंगे।
0: सावन के तीसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल, दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में सहस्रघट और रुद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है, जबकि परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। बाड़मेर के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की तिथि में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिलों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में। और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज। इसके साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। <So easy.
4: laughs> अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
7: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800

0: 2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
1: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह और नए हफ्ते की खूबसूरत शुरुआत में आप सभी का स्वागत है हेलो जयपुर में। आप हैं अनीता शर्मा के साथ। दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी सेहत को तब तक हल्के में लेते रहते हैं जब तक कोई बड़ी चुनौती सामने ना आ जाए। लेकिन स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि सही समय पर सही जानकारी और जागरूकता भी है। इसलिए एवरी मंडे हेलो जयपुर में सबसे पहले बात आपकी सेहत की सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन में।
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर FM फिट एंड फाइन के प्रायोजक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर टोंक रोड टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर।
2: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आंखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
3: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर टोंक रोड टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
0: दोस्तों, कहा जाता है मुश्किल समय इंसान की हिम्मत और व्यवस्था दोनों की परीक्षा लेता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हर पल बेहद अहम होता है, हर फैसला मायने रखता है और समय पर लिया गया सही कदम किसी की जिंदगी को बचा सकता है। ऐसे ही गंभीर हालात में क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं और उन्हीं चुनौतियों के समाधान तलाशना भी उतना ही जरूरी है। तो आज फिट एंड फाइन में हम बात करेंगे क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य इस विषय पर, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुर्जर को। नमस्कार सर।
4: नमस्कार मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर क्या होती है और सामान्य इलाज से अगर हम समझना चाहें तो ये किस तरह से अलग है।
4: जी, सबसे पहले तो आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और बहुत ही अच्छा विषय आपने चुना है क्योंकि इस विषय पर लोगों को जानकारियाँ कम हैं और भ्रांतियाँ भी कई तरह की लोगों के मन में रहती हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं सही जानकारी लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचाऊँ। जैसा आपने पूछा, क्रिटिकल केयर में किस तरह के मरीजों को लिया जाता है, तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब यह है कि जिस मरीज की स्थिति इतनी गंभीर हो कि उसे 24 घंटे निगरानी और लगातार इलाज की ज़रूरत हो, तो ऐसे मरीजों को हम ICU में या क्रिटिकल केयर यूनिट में रखते हैं।
0: जी।
4: और इसमें जो मरीज होते हैं वो यूजली या आम तौर पर गंभीर स्थिति में होते हैं, और इसमें अलग अलग स्पेशलिटी, चाहे वो, मैं कुछ आपको एग्जांपल या उदाहरण से समझाना चाहूँ तो किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आ गया, या किसी को लकवा हो गया, या किसी की सांस में इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि वो अपना ऑक्सीजन का लेवल नहीं मेंटेन कर पा रहा है, इसके अलावा कोई पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है जिसको मल्टीपल इंजरीज हैं, या सबसे कॉमन जो होता है जब सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस का अर्थ हुआ जब शरीर में या खून में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से उसका जहर पूरे शरीर में जब फैलने लगता है तो उसे हम सेप्सिस कहते हैं। तो इस तरह के मरीजों को हम ICU में या क्रिटिकल केयर में लेते हैं।
0: जी, आपने जैसा बताया कि गंभीर स्थिति में जो पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हों या सांस से संबंधित या कोई इंजरी से संबंधित, डॉक्टर साहब पैरामीटर्स की हम बात करें तो कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं जब ये कहा जाता है कि व्यक्ति क्रिटिकली इल है? और क्रिटिकल केयर की जब हम बात करते हैं, एक स्पेशलाइज केयर है, कौन सी चीज़ें या तत्व इसमें शामिल होते हैं?
4: जी, तो जैसा मैंने पहले कहा था कि उन मरीजों को जिनको हमें लगातार मॉनिटरिंग या निगरानी वॉच करने की ज़रूरत होती है, तो हम जो कॉमन पैरामीटर्स हैं, या कोई भी इंसान जब ICU में जाता है, चाहे वो मरीज से मिलने जा रहा हो या मरीज स्वयं देखेगा, तो मॉनिटर पर हमेशा 5 पैरामीटर आपको एटलीस्ट दिखेंगे, जिसमें जनरली अलार्म बजे हुए रहते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, डीप साउंड्स हमेशा आती रहती है। तो उसमें सबसे पहले हमारा रहता है हार्ट रेट, उसके बाद में

0: हम देखते हैं मरीज का ब्लड प्रेशर मेंटेन है कि नहीं है, हार्ट रेट में कोई इरेगुलरिटी है तो उसको ठीक किया जाएगा, बीपी अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ख़राब है, और बहुत कम है तो और भी ज़्यादा ख़राब है, तो ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट का ध्यान रखा जाता है कि मरीज जो सांस ले रहा है वो नियमित है और जितनी होनी चाहिए उतनी है या नहीं है
1: जी।
0: इसके अलावा कंटिन्यूस ECG की मॉनिटरिंग होती रहती है, यानी कि हार्ट की जो ना सिर्फ रेट बल्कि ECG में अगर कोई गड़बड़ी हो तो वो तुरंत मॉनिटर पर रिफ्लेक्ट हो जाए और इमीडिएटली उसको एड्रेस करते हैं। इसके अलावा हम ऑक्सीजन का लेवल जो है SpO2 जिसको बोलते हैं, कोविड के बाद में लोगों को बहुत कॉमन टर्म हो गया है, सब लोग समझने लगे हैं, तो सेचुरेशन को उसमें मेंटेन किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स हैं जैसे मरीज का यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है या नहीं है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करके हम लगातार नज़र रखते हैं, इसीलिए हम इसको वाइटल मॉनिटरिंग भी कहते हैं। तो ये वाइटल्स हमेशा स्क्रीन पर दिखते रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ या जो ट्रीटिंग फिजिशियन या डॉक्टर है जो ICU स्पेशलिस्ट है वो 24 घंटे इस पर नज़र रखते हैं, और कोई अलार्म होता है या कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुरंत उसको एड्रेस किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विभागों से वो उनकी एक टीम मिलकर काम करती है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके योगदान से ये पूरी देखभाल की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है?
0: जी ये बिल्कुल लोगों को बहुत मन में सवाल रहते हैं कि कौन इसको देखता है कैसे देखता है, तो देखो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटेंसिव केयर की पूरी टीम होती है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है या जो इंटेंसिविस्ट है जो जिसको हम इंटेंसिविस्ट बोलते हैं वो जनरली इस पूरी टीम का एक लीडर या हेड आप उसको कह सकते हो। उसके साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है जो क्रिटिकल केयर में ट्रेंड है, जो स्पेशली ट्रेनिंग जिसकी हुई है क्रिटिकल केयर में, वो नर्सिंग स्टाफ रहता है, प्लस जो स्पेशलिटी से जुड़ा हुआ डॉक्टर है, जैसे अगर हार्ट का कोई मरीज है तो कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा, अगर कोई फेफड़ों की समस्या है तो कोई पल्मोनोलॉजिस्ट होगा, अगर ब्रेन का मामला है तो न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, पेट से जुड़ा हुआ तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोसर्जन, या फिर किडनी या किसी भी ऑर्गन से जिस ऑर्गन की समस्या को लेकर के मरीज आया है उस स्पेशलिटी का एक डॉक्टर देखता है, प्लस उसके अलावा जो सपोर्टिव हमारा स्टाफ होता है जिसमें डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट हो गए जो मरीज के न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखते हैं, टीम के साथ डिस्कस करते हैं, फिजियोथेरेपी या जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं वो होते हैं, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट होता है जो मेडिसिन की डोज और बाकी सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो एक अलग अलग स्पेशलिटी के लोग मिलकर के पूरी एक टीम बनाते हैं और वो टीम 24 घंटे मरीज पर निगरानी रखती है और इस तरह से हम ICU में मरीज को ठीक करते हैं।
1: यानी कि अलग अलग डॉक्टर्स और एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या होती है जब कोई क्रिटिकली इल पेशेंट आता है, क्योंकि इसमें समय की भी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है, हर सेकंड कहा जाता है कि बहुत कीमती है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि लोगों को इसकी अहमियत जब पता होगी तभी वो इस समय की वैल्यू समझ पाएंगे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कई बार इसको गोल्डन आवर पीरियड भी बोलते हैं, जो इंजरी का या जो चोट हुई है या जो ट्रॉमा हुआ है या कोई भी इवेंट हुआ है मेडिकल से जुड़ा हुआ, उसका जो शुरुआती एक घंटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस कह सकते हैं या बहुत वैल्यूएबल होता है। अगर मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए या जो उसको इमीडिएट केयर चाहिए, चाहे वो लाइफ सपोर्ट हो या कोई CPR जैसी स्थिति हो या कोई ऑर्गन सपोर्ट हो, तो वो जो एक घंटा होता है अगर उस समय पर मरीज़ को इलाज मिल जाता है तो मरीज़ का जो आउटकम है उसकी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और अगर हमने इसको लूज़ कर दिया तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इरिवर्सिबल लॉसेज भी हो जाते हैं और दुर्भाग्य से कई बार मरीज़ को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको लगता है मरीज़ की स्थिति गंभीर है या आपको लग रहा है कि मरीज बेहोश हो गया है या जवाब नहीं दे रहा है या फिर कोई पैरालिसिस जैसा लग रहा है, एक शरीर का एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपको फिर उसमें समय को बिल्कुल नहीं गंवाना, जो नियर बाई आपको फैसिलिटी मिले जहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपको मिल सकता हो तुरंत उसको मरीज को वहाँ तक पहुँचाएं, आगे वहाँ जो टीम है वो उसका ख्याल रखेगी और परिणाम भी हमारे फेवर में आएंगे।
1: जी, यानी कि समय बहुत कीमती है और ऐसे समय बिल्कुल भी समय ना गंवाएं और जल्दी से जल्दी व्यक्ति को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसमें रोगी को एक सामान्य समस्या नहीं, कई तरह की जटिलताएं हैं जो साथ चलती हैं, लेकिन जब परिवार वालों को ये बताया जाता है कि व्यक्ति को ICU में

0: शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बहुत सा डर घबराहट परिवार के
1: जी
0: लोगों को नजर आती है उनमें। तो ऐसे में एक विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोग इस बात को समझें कि आईसीयू में लेने का मतलब ये नहीं होता कि अब मरीज़ का बचना असंभव है या मुश्किल है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मरीज़ ऑलरेडी इतना ख़राब स्थिति में हो तो ऐसा होता है, पर मैं आपको बताऊँगा कि 80% से ज़्यादा लोग जो मरीज़ होते हैं आईसीयू में वो स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं, और 10% केसेस में कुछ लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत पड़ती है, कई बार घर पे भी आपको विशेष इंतज़ाम करने पड़ते हैं। तो एक जो आम धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर या लोगों के मन में जो बात डर बैठा हुआ है कि साहब आईसीयू में अगर ले लिया तो अब तो बस
0: लास्ट स्टेज ऑफ
1: लास्ट
0: लाइफ।
1: स्टेज है या बस जो समय मिल रहा है वही है, ये
0: जी
1: बिल्कुल गलत है। ये मुझे लगता है कि बाकी देशों के मुकाबले मेरे देश भारत में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, इसका कारण चाहे जो भी रहा हो, पर अब समय आ गया है कि लोगों को ये जागृति आनी चाहिए लोगों में कि आईसीयू एक स्पेशलिटी है, और क्योंकि मरीज़ को क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर की नीड है, उसको ज़रूरत है, तो हमने उसको आईसीयू में लिया है। अगर उस मरीज़ को आईसीयू में नहीं लेंगे तो परिणाम हमारे खिलाफ़ जाएंगे। तो आईसीयू में ले लिया है का मतलब अगर कोई संभावना मरीज़ के ठीक होने की या बचने की है तो वो केवल और केवल आईसीयू में है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि आईसीयू में ले लिया इसका मतलब अब मरीज का बचना मुश्किल है, जबकि बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं जब हमें ये कहना पड़ता है कि हमारे सारे प्रयासों के बावजूद भी हम मरीज़ को नहीं बचा पाए। 90% से ज़्यादा केसेस में मरीज़ ठीक होता है, स्वस्थ होता है, इवन वेंटिलेटर पर हो तो भी वेंटिलेटर हटता है और घर जाता है। तो ये बात लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें मैं कहूँगा कि कुछ लोग जो असल में मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं उनके द्वारा इस तरह की बातें ज़्यादा की जाती है, जो चीज़ों को समझते नहीं है, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट भी नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वो इस तरह की समाज में भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब मरीज़ के भी हित में नहीं है, और लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि आईसीयू में ले लिया इसका मतलब अब हमारा मरीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है।
0: सुरक्षित है
1: जी
0: जी, गहन चिकित्सा की अगर ज़रूरत है इसीलिए उसे आईसीयू में
1: डेफिनेटली
0: शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर साहब, फैमिली मेंबर्स को समझाना क्या कई बार कुछ कठिन होता है, और इसके लिए क्या, क्योंकि जैसा हम देखते हैं इमोशनली अटैचमेंट तो रहता ही है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इसके लिए टाइम टू टाइम ब्रीफ करने के लिए कोई मैनेजमेंट टीम भी आपकी रहती है?
1: जी मैं आपको बताऊंगा, और मैं श्रोताओं से भी ये कहूंगा कि जो सबसे मुश्किल या चुनौती वाला काम अगर है इलाज के साथ में, तो वो
0: जी
1: है मरीज़ के परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को समझाना। देखिए, इंसान को जब हम डील कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं तो उससे भावनात्मक जुड़ाव है, उसके परिवार वालों के लिए वो पूरी दुनिया है, वो सब कुछ। तो हम तो क्योंकि एक प्रोफेशनल के तौर पर या विशेषज्ञ के तौर पर हमारे लिए एक रूटीन काम है, परंतु जिसका मरीज है उस परिवार के लिए वो सब कुछ है। तो क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति में है, जान का भी खतरा बना हुआ है, कई बार अनफॉर्चुनेटली चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो परिवार वाले हैं या जो परिजन हैं उनसे समय समय पर पूरी जानकारी उनको दी जाए। तो इसके लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज या सिस्टमेटिक तरीका रहता है। सबसे पहले तो जो इंटेंसिविस्ट है, जो हेड ऑफ क्रिटिकल केयर है, वो डेली कम से कम एक बार और प्रेफरेबली दिन में 2 बार, जैसे मेरे आईसीयू में मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में ये श्योर करता हूँ, इंश्योर करता हूँ कि मेरी परिजन से बात हो जाए, और बेसिकली हमें ये बताना होता है कि क्या स्थिति मरीज़ की चल रही है, ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं उससे क्या सुधार आ रहा है, कितना समय अभी और लग सकता है, या आगे जा कर के हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मरीज़ के साथ में और थोड़ी सहानुभूति के साथ में,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: मरीज इंसान है तो उसको इमोशंस भी हैं, परिवार के इमोशंस भी जुड़े होते हैं। तो बहुत ही एक टीम बना करके जिसमें इंटेंसिविस्ट होता है, कई बार सोशल मेडिकल वर्कर या काउंसलर जिसको हम कहते हैं, वो काउंसलर भी अस्पताल की तरफ से रहता है, और साइकोलॉजिस्ट की जब ज़रूरत पड़ती है तो साइकोलॉजिस्ट, और कई बार जो हमारे प्राइमरी कंसल्टेंट हैं जैसे हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट को साथ में लेकर के पूरी टीम बैठ करके परिवार से बात करती है, उसको पूरी स्थिति से अवगत कराया जाता है। और पारदर्शिता के लिए अब ज़्यादातर अस्पतालों में हम जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है उसको लिख करके एक साइन ले कर रखते हैं, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और मरीज़ का भी आत्मविश्वास बना रहता है कि हमें डेली बेसिस पर हमें बताया जा रहा है कि क्या प्रोग्रेस है, या स्थिति बिगड़ रही है या स्थिर है, जो भी स्थिति है वो
0: जी।
1: बताते हैं।
0: और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, क्योंकि बाहर बैठे जो परिजन होते हैं वो बड़ी चिंता में रहते हैं, और अगर उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया जाए, ब्रीफ कर दिया जाए, तो आधी परेशानी ये दूर हो सकती है।
1: जी मैं इस पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए,
0: जी
1: लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या डॉक्टर्स तो बिल्कुल इनसेंसिटिव हो

0: जाते हैं या सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं, ये मैं बताना चाहूँगा 200% ये भ्रम है। क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, वो कोई
1: जी
0: किसान का बेटा हो सकता है, कोई व्यापारी का हो सकता है, इसी समाज से निकल के वो गया है, वो हर चीज़ को समझता है। पर अगर वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो गया या वो अगर इमोशनल होकर के अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाया तो इलाज नहीं हो सकता। तो ये उसकी मजबूरी कह लीजिए या ये उसकी ज़रूरत है कि वो इतना स्ट्रांग रहे कि अपना डिसीजन ले पाए, टाइम पर जो चीज़ें करनी है वो कर पाए। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम परिजनों के सामने बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं, पर अंदर से हर एक डॉक्टर ये चाहता है कि उसका मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो और
1: जी
0: ये ठीक हो करके घर जाए। तो लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर आदमी अपना काम कर रहा है और प्रयास हमेशा हम 100% करते हैं। कई बार परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता है, तब एक इमोशनल या भावनात्मक आवेग रहता है तो लोग कई बार इस तरह की रिएक्शन दे देते हैं, तो उसमें हमें भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जो परिजन है उनको भी समझना चाहिए कि एक लेवल के बाद में चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं, तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए,
1: और कई बार जो डिसीजंस लिए जाते हैं पेशेंट के हित में
0: हित में
1: होते हैं, इसलिए लिए जाते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और परिजन से हमेशा डिस्कशन करके हर चीज़ उनको बता करके कि हम ये कर रहे हैं और अब हम आगे ये करें।
1: तो श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र कुमार गुर्जर। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए हम रुकते हैं, वापस आकर इस विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल के साथ।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव।
6: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
7: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
8: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
7: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
8: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
7: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: 101.2 FM। हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम एक इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहे थे कि परिवारजनों का एक इमोशनली वो लोग अटैच होते हैं अपने पेशेंट के साथ, और आईसीयू में जब पेशेंट रहता है एंट्री भी वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रहती है, लोगों को मनाही होती है कि बार बार वो अंदर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन परिवार के लोगों को ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता होगा। किस तरह के खतरे जो हैं वो पेशेंट के लिए होते हैं अगर बाहर से लोग ज़्यादा मिलने के लिए पेशेंट से आते हैं तो?
1: अनिता जी, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जितने भी फैसले हैं या जो डिसीजंस हैं या जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ के हित के लिए हैं। और अगर हम आईसीयू में परिजनों की एंट्री रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका केवल और केवल एक कारण है कि मरीज़ को खतरा कम से कम रहे। जैसा आपने पूछा कि क्या क्या रिस्क रहता है, तो सबसे बड़ा रिस्क जो मरीज को है वो है इन्फेक्शन का, क्योंकि बाहर से जितना ज़्यादा कोई मिलने के लिए परिजन आएगा या अलग अलग परिजन आएंगे, उतना ही ज़्यादा रिस्क या खतरा मरीज़ को इन्फेक्शन का रहता है। और ये दोनों तरफ से, कई बार होता है कि मरीज़ की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, जो एक जनरली होता है, ज़्यादातर केसेस में होता है,

0: तो बाहर से अगर आने वाला व्यक्ति कोई साधारण वायरस या बैक्टीरिया भी लेके आया और उसने टच किया और वो इन्फेक्शन अगर हो गया, तो मरीज क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम हो रखी उस वक्त पे, तो उसको वो छोटा सा इन्फेक्शन बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा तो ये कारण है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मरीज को रिस्क बढ़ जाए। और कई बार ऐसा होता है कि मरीज के परिजन भी, किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है या कोई कैंसर का मरीज है, कीमोथेरेपी ले रहा है, वो भी अगर आईसीयू में फ्रिक्वेंटली आते हैं तो उनको भी रिस्क रहता है। तो ये दोनों तरफ से रिस्क है, मरीज़ को रिस्क ज़्यादा है। तो ये पहला तो इन्फेक्शन का रिस्क है, उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनका जो परिजनों का आना जाना है उसको थोड़ा सा नियमित करें। और दूसरा कारण होता है कि जो मरीज़ है उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, इन्फेक्शन है, अलग अलग ऑर्गन्स की कमजोरी है, वीकनेस है, और फाइट कर रहा है बहुत सी चीज़ों से, तो उसको बॉडी को हील करने के लिए रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये भी इंश्योर करना है, तो हमें एंट्री रेस्ट्रिक्ट करनी होगी। तीसरा, कई बार जो आईसीयू ऐसा स्पेस होता है पूरे अस्पताल में जहाँ सबसे ज़्यादा गंभीर मरीज होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी मरीज़ की अचानक से कंडीशन गड़बड़ हुई, उसको सीपीआर देना पड़ गया या कोई प्रोसीजर चल रहे होते हैं, बहुत से प्रोसीजर आईसीयू में होते हैं, तो उस वक्त भी स्टाफ और उसको काम करना होता है, तो वो एक डिस्टरबेंस भी वहाँ ना हो, प्लस एक प्राइवेसी रहती है, क्योंकि एक ही आईसीयू में सपोज 15 मरीज हैं तो आप बाकी मरीजों की प्राइवेसी का भी हमें रेस्पेक्ट करना होता है। तो ये कारण है कि हम मरीज की जो परिजन है उनको जो एंट्री है वो थोड़ी सी रेगुलेटेड रखते हैं, पर कम्युनिकेशन में कमी नहीं आती, क्योंकि दिन में 2 बार उनको बुलाया जाता है और सारी चीज़ें बैठ करके पूरी टीम उनको समझाती है। तो लोगों को भी थोड़ा सा ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये उनके मरीज के लिए ही हैं, और कोई भी आपके मन में सवाल है या शंका है वो आप जब मिलने का समय, जब आप अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं, इंटेंसिविस्ट से बात कर रहे हैं, उस वक्त जितने सवाल हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, सबका जवाब दिया जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो ये लोग इसको कई बार अदरवाइज लेते हैं कि साहब पता नहीं अंदर क्या कर रहे होंगे और हमें जानबूझ के बाहर भेज दिया है, हमें तो जाने नहीं दिया, हमें तो देखने दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीज़ को कोई नुकसान ना हो इसलिए आपको रोका गया है, और मरीज़ की स्थिति को समझाना एक चिकित्सक की जिम्मेदारी है, और कोई भी डॉक्टर इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, और कभी ऐसा होता भी नहीं है। कई बार ऐसा कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं या कोई मिसकॉन्सेप्शन ऐसा हो गया, किसी को कोई भ्रम हो गया, तो आप बीच में भी डॉक्टर से जा कर के बात कर सकते हो और उससे अपनी बात रख सकते हो कि हमें कोई कन्फ्यूजन है या हम इस बारे में ये जानना चाहते हैं, वो आपका अधिकार है।
1: वैसे दिन में 2 बार मिलने दिया जाता है, और जब टीम आती है तो आप, अगर आपको कुछ शंका लगती है तो आप उनसे पूछ
0: बिल्कुल
1: सकते हैं।
0: अच्छा, इसके अलावा अगर हमें ये लगता है कि मरीज की स्थिति में कोई उतार चढ़ाव आया है, तो भले ही रात के 2 बज रहे हों, हमारी टीम जो ड्यूटी पर डॉक्टर है, जो नर्सिंग स्टाफ, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो उसी वक्त उनको कॉल करके बुलाते हैं, उस स्थिति से अवगत कराते हैं, क्या परेशानी हुई, उसके लिए हमने क्या इंतजाम किए या क्या हमने स्टेप उठाए हैं, वो सब जानकारी ली जाती है। और अब क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का जमाना है तो हर चीज़ को हम साइन लेकर के समझा करके तब करते हैं, तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि कहीं अविश्वास हो, या थोड़ा सा लोगों को भी इस चीज़ को सीखना और समझना चाहिए कि ये मरीज के हित में।
1: और वैसे भी आईसीयू में पूरे टाइम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं,
0: हमेशा कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है, 24 घंटे ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाइयां ऐसी हैं जो लगातार चलती हैं इन्फ्यूजन के माध्यम से, तो उस वक्त मतलब मरीज का काम करने के लिए भी स्टाफ को समय चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं
1: जी। तो श्रोताओं, हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र लेजर, फेको सर्जरी सेंटर, फिट एंड फाइन। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य, इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं, सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर। यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, साथ ही हम आपको बता दें, आपका भी श्रोताओं इस विषय से संबंधित कोई सवाल है, कुछ आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, तो 2 फोन लाइन्स हैं जिनके ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला नंबर है 2200600, दूसरा नंबर है 2366477, जयपुर का एसटीडी कोड है 0141।
2: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आंखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफल

0: पूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
1: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र, लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले तभी इलाज करवाएं, क्योंकि

0: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाएं समाधान।
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है अब जयपुर में संभव।
2: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर टॉक फाटक टॉक रोड गांधीनगर जयपुर कॉल 2707580 और 9829017147।

0: 101.2 FM आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फीको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जयपुर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आपको, डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार सर, नमस्कार।
1: कोटा से
0: जी, भूपेंद्र जी।
1: ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती क्या कि उनको वीडियो पे दिखाया जा सके, रेस्ट रूम में, वेटिंग रूम में मरीजों को, परिजनों को, ताकि अनावश्यक भीड़ और संक्रमण से बचा सके मरीज
2: जी। मतलब आपका सवाल बड़ा ही यूनिक है और ये
1: ताकि डॉक्टर और सभी को सुविधा हो।
2: जी जी जी जी जी, पर इसमें कुछ प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, जैसे कि पेशेंट की प्राइवेसी को लेके सबसे बड़ा जो इशू रहता है ना, क्योंकि मरीज 24 घंटे आईसीयू में है, उसकी स्पंजिंग होगी, कपड़े भी चेंज होते हैं और साफ़ सफाई होती है, प्लस कई बार ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, तो ये पेशेंट की प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इसलिए ये हमेशा या 24 घंटे करना मुश्किल है। हाँ मतलब देखिए, एक तो
1: आपको जी तो देना
2: जी जी
1: करना
2: जी, मैं समझ गया आपका आपका जो सुझाव है उस पर वैसे विचार करने लायक है, और क्योंकि जहाँ तक जानकारी देने का बात सवाल है, तो जानकारी तो प्रत्यक्ष रूप से आप चिकित्सक से मिल करके बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं, और जो देखने वाली बात है तो असल में क्योंकि बाकी मरीजों की प्राइवेसी है, और अपन कोई प्रोसीजर अगर कोई डॉक्टर करता है तो उसकी पहले जानकारी दी जाती है, और इन जनरल एक सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी उसमें आईसीयू में लगा रहता है, वो हमेशा सुपरविजन में रहता है, तो कभी कोई इस तरह का कोई चेक करने वाली जब बात लगती है, कभी हमें लगता है कि उस वक्त कोई विशेष चीज़ देखनी है तो उसको हम उसमें चेक कर सकते हैं, पर क्योंकि एक प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है तो ये परिजनों को हमेशा दिखाना संभव नहीं है। आप कभी ऐसा होगा तो आपको बुला लिया जाता है कि कोई बात हुई है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी बात है तो इतना हमें थोड़ा ट्रस्ट भी रखना होगा कि मरीज हमारा सुरक्षित हाथों में, जो हो रहा है वो मरीज के हित में हो रहा है।
0: बिल्कुल, और जो इलाज चल रहा है वो परिजन पूरी तरह से देख भी नहीं पाएंगे, तो पूरे 24 घंटे अगर कैमरे के सामने पेशेंट रहेगा तो ये परिजनों के लिए भी ठीक नहीं रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर।
3: हाँ नमस्कार, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ जयपुर से।
0: नमस्कार प्रमोद जी।
3: हाँ मेरे दो तीन सवाल हैं
0: जी।
3: इसमें एक कैटेगरी भी होती है जैसे आईसीयू, सीसीयू, एचसीयू, जैसे ये कितने प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन था कि 24 घंटे और 12 महीने वार्ड आईसीयू बिजी अंगेज रहता है, तो उसके लिए हाइजीन के लिए, फ्यूमिगेशन के लिए क्या कारगर उपाय होते हैं। तीसरा क्या है, ट्राय देखा गया है कि स्टाफ की कमी रहती है हॉस्पिटल में, तो इसलिए वो जो डॉक्टर्स के अलावा पैरामेडिकल और जो साफ सफाई वाले होते हैं तो वो चिड़चिड़े भी होते हैं, और फिर उनको समय पर वो जो उद्देश्य है डॉक्टर्स का तो या हॉस्पिटल का, वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे मोशन कर दिए तो एक दो घंटे तीन घंटे लग जाते हैं कि वो वहां पर अंगेज है। प्लीज
0: जी
3: बताए
0: जी।
2: जी प्रमोद जी, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल और रियल लाइफ का जो एक्चुअल सिनेरियो होता है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, और मैं तो चाहूँगा कि ये बात सरकार तक भी पहुँचे, क्योंकि विशेष तौर पर सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें ये समस्या थोड़ी ज़्यादा

0: पड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में ये समस्या बिल्कुल भी नहीं, पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि मरीज को अच्छी से अच्छी केयर और टाइमली डिलीवरी हम एंश्योर कर पाएँ।
1: जी,
0: पर प्रमोद जी ने मेरे ख्याल से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल इनका था,
1: आईसीयू, सीसीयू और जो
0: हाँ
1: अलग अलग तरह
0: ये
1: के।
0: बहुत ज़रूरी है लोगों का समझना, लोगों को जानना। देखिए, आईसीयू वो एरिया है जहाँ सबसे क्रिटिकल मरीज को रखा जाएगा। मतलब अगर किसी अस्पताल का जो ऐसा एरिया मैं बोलूँ जो सबसे इंटेंस केयर वाला है, दैट इज़ आईसीयू। आईसीयू में जब मरीज में स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है तब उसको हम स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन के लिए हम एक एचडीयू या हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको हम कहते हैं,
1: जी
0: तो वो एक ऐसा क्षेत्र है या एरिया है जहाँ पर मॉनिटरिंग तो बराबर रहती है पर वो जो टीम है वो क्रिटिकल केयर की उतनी इंटेंसिटी वाली ना हो करके केवल ऑब्जर्वेशन या मॉनिटरिंग के लिए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज ठीक है पूरी तरह से
1: जी
0: पर उसको वार्ड में भेजने से पहले या घर भेजने से पहले, डिस्चार्ज से पहले हमें 24 घंटे 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होता है कि सब ठीक है, सब ठीक रहेगा तो हम भेज देंगे। इस तरह की स्थिति में हम एचडीयू में शिफ्ट करते हैं। सीसीयू एक कार्डियक केयर यूनिट होती है जो स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा ही रन की जाती है। उसमें इंटेंसिविस्ट का राउंड होता है। अगर लगता है कोई मरीज को मेडिकल आईसीयू या इंटेंसिविस्ट की सर्विसेज चाहिए या उसकी विजिट की ज़रूरत है तो वो एक मिलकर के देखा जाता है। पर सीसीयू जो डेडिकेटेड होती है वो कार्डियक पेशेंट के लिए होती है। इसी तरह से अगर सीटीवीएस का मरीज है, कार्डियक सर्जरी का मरीज है, उसके लिए एक अलग आईसीयू रहता है। तो वो स्पेशलाइज्ड हो गए कार्डियक पेशेंट्स के लिए। बाकी जितनी भी स्पेशलिटी हैं वो मेडिकल मैनेजमेंट में आती हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि न्यूरो आईसीयू भी अलग से बनने लग गए हैं, गैस्ट्रो आईसीयू। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उस स्पेशलिटी के कितने मरीज हैं, उसका बर्डन कितना है, क्या वो एक इंडिपेंडेंट आईसीयू बनाने की लाइक वहाँ काम है तो वहाँ अलग से आईसीयू बना दिया जाता है। तो ये तो हो गया कैटेगरी वाइज कि आईसीयू क्या होता है, एचडीयू क्या होता है। वार्ड हम सब जानते हैं कि रूम, जब मरीज जब स्टेबल होता है तो रूम में भेज दिया जाता है उसको।
1: डॉक्टर साहब, इन्होंने ये और पूछा था कि आईसीयू की जब हम बात करते हैं तो 24 घंटे 12 महीने बिल्कुल बिजी रहता है वहाँ, तो
0: जी
1: इन्फेक्शन से किस तरह से बचा जाता है?
0: बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा टेक्निकल सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रोल है या जो चैलेंज है वो ये है कि मरीज़ का इन्फेक्शन रेट कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए प्रोटोकॉल बने हुए हैं जिनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इसके लिए नियमित रूप से डेली, इनफैक्ट दिन में कई बार हम जितनी भी सरफेसेज हैं, चाहे वो फ्लोर हो, चाहे वो बेड है या दरवाजे हैं, उन सब की मॉपिंग कराई जाती है। और एक नियमित अंतराल पर, सपोज 6 महीने के अंतराल में कम से कम एक बार हम फ्यूमिगेशन करते हैं पूरे आईसीयू का। जब मरीज़ का बर्डन कम होता है तो कई बार हम कम अंतराल पर भी कर लेते हैं। और स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। मरीज़ को छूने से पहले, छूने के बाद में आपको हैंड वॉश करने हैं। इवन जो परिजन मिलने आते हैं उनको भी हम ये प्रैक्टिस कराते हैं कि आप हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाइए। स्टाफ की सेफ्टी के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन, जो पीपीई किट आती है, इक्विपमेंट्स आते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कुछ विशेष जो बीमारियां हैं, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत इन्फेक्शियस है, जैसे टीबी का कोई मरीज अगर आईसीयू में भर्ती है, तो उनके लिए अलग अलग पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर के आइसोलेशन कमरे बनाए जाते हैं जिसमें वो इन्फेक्शन को वहीं तक कंट्रोल किया जाए, वो बाहर स्प्रेड ना हो। तो जिस तरह का मरीज है उसके हिसाब से सारी व्यवस्थाएँ होती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तीसरा जो मेरे ख्याल से इनका सफाई से जुड़ा हुआ सवाल है ना, स्टाफ की जो, तो देखिए ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अभी भारत विकसित देश नहीं बना है, विकासशील देश है। हमारे देश की अपनी चुनौतियां हैं और ये सच है कि जो आइडियली अनुपात होना चाहिए आईसीयू में स्टाफ का, वो होना चाहिए 1:1 और 1:2। यानी कि जो स्टाफ वेंटिलेटर पर मरीज देख रहा है वो एक मरीज ही देखेगा, एक स्टाफ, और जो वेंटिलेटर पर नहीं है आईसीयू में वो 2 मरीज देखेगा। पर स्केयरसिटी ऑफ स्टाफ हमेशा रहती है, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं रहती है, या ये कह लीजिए कि मरीज का बर्डन उतना ज़्यादा है कि ये जो रेशियो है उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी ये नहीं होता है कि स्टाफ की कमी की वजह से केयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे जो हाउसकीपिंग या जीडीए स्टाफ है जो साफ़ सफाई का काम करते हैं, अब एक आईसीयू में अगर 12 मरीज हैं या 15 मरीज हैं तो हो सकता है कि कभी आपके मरीज को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। फिर भी कोशिश ये रहती है कि प्रायोरिटाइज करके काम को, केयर से जुड़ी हुई बात में डिले नहीं होना चाहिए। बाकी जो साफ़ सफाई है उसमें अगर कई बार आगे पीछे हो भी जाता है तो उसको मैनेज किया जाता है।
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो जयपुर।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब को, मेरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार।

0: सर,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
2: जी राकेश जी, क्या सवाल है?
1: मेरा सवाल ये है कि जैसे क्रिटिकल होती हैं, जैसे कोई दूसरा राज्य से अगर आपके पास मरीज आता है, कई बार वो उनके परिजन दूर होते हैं, तो उसकी जो है देख रेख किस किस तरह से की जाती है, जब तक जो है परिजन को खबर नहीं दी जाती है? मेरा ये प्रश्न है।
2: जी
0: बहुत ही बढ़िया राकेश जी, शिमला में मेरा नमस्कार पहुंचे और आई होप कि शिमला में मौसम बहुत अच्छा होगा।
1: जी।
0: देखिए, ये जो विशेष परिस्थिति आपने बताई, ऐसा कई बार होता है और मेरे सामने भी ये स्थिति आई है। तो इसमें तो जो हमारा अस्पताल का जो प्रशासन है या मैनेजमेंट होता है, उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहता है। तो जब तक उसके परिजन नहीं आ जाते, हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लूप में लेके रखते हैं। अगर टेलीफोनिकली या किसी तरह से उनसे कॉन्टैक्ट हो सकता है तो उनको टेलीफोनिकली अपडेट करके रखते हैं कि ये स्थिति है या हमने ये चीज़ें की हैं। और कोई भी अगर लाइफ सेविंग प्रोसीजर है या है, तो हम किसी चीज़ का वेट नहीं करते। अगर परिजन हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बताया जाएगा और साइन भी लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो लाइफ सेविंग और परिजन अगर नहीं है, तो हम किसी चीज़ का वेट नहीं है। और ये बाई लॉ है, ये नियम है, कानून ये कह रहा है कि आप कभी भी किसी की परिजन के अभाव में किसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर को, दवाई को आप होल्ड नहीं कर सकते या आप वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक कोई परिजन नहीं आएगा, तब तक पूरी टीम उसका ख्याल रखेगी और मैनेजमेंट उस चीज़ का सुपरविजन करेगा कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। और जैसे ही परिजन आएंगे, उनको सारी चीज़ें अपडेट करा दी जाए।
2: जी डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर को लेकर हम जानना चाहेंगे कि जिन मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, एक तो परिजन वैसे ही बहुत घबरा जाते हैं, तो किन
0: जी
2: पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर लिया जाता है? और कई बार ये भी सुनने में आता है कि ज़्यादा समय तक वेंटिलेटर पर अगर पेशेंट है तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
0: जी, तो मैं आपके इस सवाल को दो हिस्सों में बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो हिस्सा ये रहेगा कि वेंटिलेटर पर कब लिया जाता है और वेंटिलेटर से जुड़ा हुआ डर है ना, और दूसरा है वेंटिलेटर के नुकसान। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेंटिलेटर को कब लेना पड़ता है मरीज को वेंटिलेटर पर, तो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये कहूँगा कि वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है। वेंटिलेटर मरीज की जान बचाने वाला उपकरण है। ये ऐसी मशीन है जो मरीज को उस वक्त सांस दे रही है जब मरीज खुद से सांस लेने में असमर्थ है। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो आम आदमी के मन में होती है कि वेंटिलेटर पर ले लिया, इसका मतलब अब तो बचना मुश्किल है, अब तो जितना समय मिल जाए उतना ही समय है, इसको तो जाना है मरीज को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीज को वेंटिलेटर पर लेना पड़ गया, इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि मरीज बिना वेंटिलेटर के सरवाइव नहीं कर सकता था। मरीज की जो सांस है या जो उसका ऑक्सीजन का लेवल है या जो ब्रीदिंग पैटर्न है या जो सांस लेने की क्षमता है, वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है कि वो बिना वेंटिलेटर के अब सरवाइव नहीं कर सकता। तो वेंटिलेटर तो एक लाइफ सपोर्ट, एक जीवन रक्षक प्रणाली का हिस्सा है, एक मशीन ऐसी है जो मरीज को समय दे रही है उसको ठीक होने का, उसको हील होने का। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि श्रोता जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो ये चीज़ समझें कि वेंटिलेटर पर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मरीज़ का बचना असंभव है, ना ही वेंटिलेटर से कभी मरीज़ की डेथ होती है एज सच। हाँ, मरीज़ को वेंटिलेटर पर लिया है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, और वो भी जब लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ जाए। तो जो सबसे कॉमन और जो सबसे बड़ा जो रिस्क है वेंटिलेटर पर लंबे समय तक, उसको हम मेडिकल की भाषा में वैप यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं। तो जब मरीज़ लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहता है, तो क्योंकि डिवाइसेज कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी और बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पर होती हैं, तो उसमें वेंटिलेटर में क्योंकि हमने जो उसका एयर वे है यानी कि सांस लेने का रास्ता है, वो सीधा ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी लॉस्ट हो गई। जो नाक और मुंह से होते हुए जब सांस जाती है, तो वहाँ कई बैक्टीरिया को फिल्टर कर दिया जाता है, एक प्रोटेक्टिव रोल रहता है उसका, वो बाईपास हो जाती है, तो रिस्क बढ़ जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का। परंतु आज के समय में क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत उन्नत हो गया है, डिवाइसेज बहुत इंप्रूव हो गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं, तो इसका भी जो रेट है वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। साथ ही आज के समय में एक ट्रिकिस्टोमी, जो हम छोटा छेद करके जब हमें लगता है कि लंबे समय तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो नाक या मुंह से जो नली डली होती है लंबी नली, उसको हटा करके एक छोटी नली डाल देते हैं, उससे वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया की रिस्क कम हो जाती है। दूसरा जो लंबे समय तक वेंटिलेटर का नुकसान है, वो है कमजोरी, जिसको हम मेडिकल की भाषा में क्रिटिकल केयर इलनेस न्यूरोमायोपैथी या CIN बोलते हैं। इसमें जब मरीज़ क्योंकि वेंटिलेटर पर है तो हमें नींद की, दर्द की और कई

0: बार बेहोशी की दवाई चलानी पड़ती है, मसल रिलैक्सेंट देने होते हैं, तो
1: जी
0: लंबे समय तक कई बार उनका इस्तेमाल होने से मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, पर ये रिकवर हो जाती है जब लंबे समय में मरीज़ धीरे धीरे जब स्वस्थ होता है तो ये चीज़ रिकवरेबल है। तीसरा है एक वेंट जो ICU रिलेटेड साइकोसिस या डेलीरियम जिसको हम बोलते हैं, इसमें मरीज़ को दिन रात समय स्थान कहाँ है इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन
1: जी वो
0: गड़बड़ हो
1: सब
0: जाता
1: होने
0: है,
1: लगता है।
0: पर ये पूरी तरह से रिवर्सिबल कंडीशन है। जैसे ही मरीज अपने परिजनों के साथ या अपने घर पर जाएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो वेंटिलेटर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता है, पर वेंटिलेटर पर लेना तो इतना ज़रूरी है कि उसके बिना मरीज़ का बचना असंभव है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वेंटिलेशन या वेंटिलेटर जो है वो लाइफ सेविंग एक प्रोसीजर कह सकते हैं या एक प्रणाली या एक मशीन है, और वो हमें मरीज़ को बचाने में, स्वस्थ करने में, ठीक होने में मदद कर रही है, ना कि वेंटिलेटर की वजह से कोई जा रहा है या डेथ हो रही है।
1: जी, यहाँ एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, वापस आकर इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल के साथ।
2: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर,
3: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।

0: 101.2 FM।
1: हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं हमारा हेल्थ सेगमेंट डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मेहमान हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर। डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही व्यवहारिक चुनौती इसमें जो आती है वो है पैसा। क्रिटिकल केयर का खर्च बहुत ज़्यादा होता है और एक आम परिवार के लिए इस आर्थिक बोझ को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसका क्या समाधान है?
2: देखिए, ये समस्या केवल मैं कहूँगा मेडिकल फील्ड में नहीं है कि पैसे के अभाव में कई बार हमें जो ज़रूरी सुविधा हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो क्योंकि देखिए, आईसीयू में जब मरीज़ है इसका मतलब वो गंभीर स्थिति में, 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं, दवाइयां लगातार चल रही हैं, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की सर्विसेज ली जा रही हैं और एक बड़ा मैन पावर कंज्यूम हो रही है। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में खर्चा आता है। अस्पताल को साफ सफाई भी रखनी है, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करना है, मशीनरी भी पूरी चाहिए, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस सब में खर्चा होता है। पहले तो लोगों को ये समझना होगा, और ये मैं जब कभी मेरी समाज में किसी जगह मुलाकात लोगों से होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों तक ये मैसेज जाए। विशेषकर राजस्थान में ये प्रवृत्ति मैंने ऑब्जर्व की है कि लोगों को ये लगता है कि मेडिकल पर या हेल्थ पर जो खर्चा हो रहा है वो वेस्ट हो गया पैसा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने तो हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि पहला धन निरोगी काया। तो अपने स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होने को पहले तो पैसे की वेस्टेज या बर्बादी नहीं समझें। दूसरा, क्योंकि समय परिवर्तित है, आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो कल्चर है, उसके चलते हुए बीमारियां भी शायद नई बीमारियां आ गई हैं या दिन पर दिन नई बीमारियां आ रही हैं। कोविड जैसी समस्या भी हमने अपने जीवन काल में देखी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को कोशिश करनी चाहिए वो ले पाएँ, क्योंकि स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो ओवरऑल जो सोसाइटी पर बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, वो कम होता है। और तीसरा, इसमें जो है वो सरकार अपने लेवल पर करती है। सरकार ने कई स्कीम्स जैसी चलाई हुई हैं, जैसे राजस्थान में RGHS है, आयुष्मान भारत है, और चिरंजीवी जो केंद्र की भी कई स्कीम ऐसी चल रही हैं, तो उनसे भी कई कुछ हद तक मदद मिल जाती है। पर सबकी सीमा है, हर स्कीम की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो आप ये उम्मीद नहीं करें कि आप सरकार की ही जिम्मेदारी है या सरकार ही आपके लिए सब कुछ करेगी। आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको उसके लिए एक बजट अलोकेट करना चाहिए। कोशिश करें इंश्योरेंस लेके रखें और स्वास्थ्य पर खर्चे को लेके कभी ये धारणा नहीं बनाएं कि ये पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है, जबकि असली स्वास्थ्य ही असली धन है आपका, तो स्वास्थ्य के लिए खर्च करना सही है।
1: जी, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। प्रोग्राम का समय

0: बिल्कुल समाप्त हो चला है। चलते चलते एक छोटा सा मैसेज
1: जी
0: सभी श्रोताओं के लिए आपका क्या रहेगा?
1: जी जी अनीता जी, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ, आईसीयू स्पेशलिटी है मेरी। तो आईसीयू को लेकर के जो लोगों के मन में भ्रांति है, जो गलत धारणा है कि आईसीयू में आ गया इसका मतलब मरीज़ का बचना मुश्किल है, आईसीयू में आ गया इसका मतलब अब तो ऐसी दवाइयाँ चलाएंगे कि केवल बिल बढ़ाने के लिए दवाइयाँ चलाएंगे, या आईसीयू में अगर वेंटिलेटर पर मरीज आ गया तो इसका मतलब अब तो बचना असंभव है। यहाँ तक मैंने, क्योंकि मुझे 15 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है और मैंने सब तरह की परिस्थितियाँ भी देखी हैं, तो लोग यहाँ तक कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा मरीज जिंदा है भी या नहीं, वेंटिलेटर पर आपने लिया हुआ है। तो ये बहुत ही व्यावहारिक और कॉमन प्रॉब्लम्स है। अब हालांकि थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है धीरे धीरे, पर आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि वेंटिलेटर एक जीवन रक्षक प्रणाली है। आईसीयू में आ गया आपका मरीज, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब उसका बचना असंभव है, मुश्किल है। और जो मरीज आईसीयू में आ गया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस मरीज को आईसीयू की ज़रूरत थी और आईसीयू के बिना उसका ठीक होना मुश्किल था। अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें, आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा आपकी है, तो उसको आप सीधे चिकित्सक से बात करें। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करें जो इस फील्ड के नहीं है या जो आपको गलत जानकारी दे सकते हैं, यही कहना चाहूँगा।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में पधारे और आपने इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी क्रिटिकल केयर के विषय में दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम, श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर, सीनियर कंसल्टेंट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जो दे रहे थे हमें जानकारी क्रिटिकल केयर एवं मरीज का स्वास्थ्य इस विषय पर। हम आपको बता दें, इसके प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र कुमार मीणा, और अब अनीता शर्मा को भी इस सेगमेंट से दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर FM फिट एंड फाइन के प्रायोजक थे डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
4: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
5: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
6: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
7: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
8: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
9: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
8: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
9: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
8: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

दोस्तों, सच ही तो है, जिंदगी की रफ्तार चाहे जैसी भी हो, उसके हर पल की अपनी ही खूबसूरती होती है। हम अक्सर आने वाले कल की चिंता में आज के छोटे छोटे पलों को जीना भूल जाते हैं, जबकि खुशियां कई बार इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। हाल ही जयपुर सुन रहे हैं आप 101.2 FM पर। सवेरे के 10:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विश्व दर्पण सुनेंगे।

शुरू। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख के साथ बातचीत करेंगे। नेपाली सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक जनरल सेठ को आपसी हित के मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंध मजबूत करना है। जनरल सेठ टुंडीखेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उन्हें नेपाल के सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। 3 दिवसीय नेपाल यात्रा के दौरान सेना प्रमुख कल शिवपुरी में सेना कमान के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और प्रशिक्षकों तथा विदेशी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वे आपसी हित के मुद्दों पर नेपाल के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। जनरल धीरज सेठ बुधवार को पोखरा में पूर्व सैनिकों की रैली में शामिल होंगे। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को

0: अपमानित करेंगे। वे बुधवार को स्वदेश लौट आएंगे। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास।
1: कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कहा है कि यह बैठक ठोस चर्चा, सहमति को बढ़ावा देने और पर्यावरण सहयोग को सशक्त बनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के अंतर्गत वरीयता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। वरीयता के इन क्षेत्रों में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, जंगल की आग का प्रबंधन और आपदा लचीलापन, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा अनुकूलन शामिल है।
0: विशाखापट्टनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित हो रही हैं। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेंगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला ये नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। जिम्बाब्वे में पिछले सप्ताह करीबा झील में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। नौका में क्षमता से अधिक 153 यात्री सवार थे। पिछले सप्ताह मंगलवार को तेज लहरों के कारण नौका पलट गई। पुलिस ने बताया है कि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की संख्या पिछले दिन के 72 से बढ़कर 84 हो गई है। जिम्बाब्वे की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि 77 लोगों को बचा लिया गया है। नौका में 90 लोगों को ले जाने की अनुमति थी। करीबा झील आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शक्तिशाली जाम्बेजी नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ये 200 किलोमीटर से अधिक लंबी है और कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक चौड़ी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन प्रमुख पीट हेक्सेथ को दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भारी कटौती करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये अभ्यास बहुत खर्चीले हैं और उत्तर कोरिया को शत्रुतापूर्ण और अनुचित संदेश देते हैं। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि आज से शुरू होने वाले 11 दिन के उलुची फ्रीडम शील्ड अभ्यास को पूरी तरह रद्द करना अब संभव नहीं है। श्री ट्रंप के निर्देश के बावजूद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि नियमित ग्रीष्मकालीन अभ्यास योजना के अनुसार ही होंगे और इसमें दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण को उत्तर कोरिया अक्सर युद्ध का पूर्वाभ्यास बताकर इसकी निंदा करता है। यह अभ्यास ड्रोन हमलों से निपटने, साइबर हमलों को रोकने और GPS व्यवधान से निपटने जैसे आधुनिक सुरक्षा खतरों पर केंद्रित है। इसराइल और होंडुरास ने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। होंडुरास के एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल की इसराइल यात्रा के दौरान इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कार्ड्स और होंडुरास के रक्षा मंत्री एनरिक रोड्रिक्स बुकार्ड ने कल इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। होंडुरास के इस शिष्टमंडल में देश के आंतरिक सुरक्षा मंत्री और होंडुरास सेना के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने संयुक्त रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों तथा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। इसराइल रक्षा बलों IDF ने एक बयान में कहा है कि अबू हसन अला दीर अल जहरानी पर हुए हमले में मारा गया। ये कार्रवाई सीमा पर हुए ड्रोन हमले में इसराइली सैनिकों के घायल होने के जवाब में की गई है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में 4 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। IDF ने एक बयान में कहा कि उसने

0: दक्षिणी लेबनान में रात भर चले हमलों के दौरान हिजबुल्ला के विशिष्ट रदवान बल के कमांडर अली समीर अल हज हसन को मार गिराया। दक्षिणी गांव अंसार पर इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए, जो 2024 में युद्ध विराम होने के बाद से इसराइल के सबसे घातक हमलों में से एक है। गजा में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की नई कूटनीतिक कोशिश के अंतर्गत अमरीकी वार्ताकार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर ने कल हमास के प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की। कुशनर आज इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से भी मिलेंगे। ये बातचीत अमरीका के समर्थन वाले उस नए 15 सूत्रीय रोडमैप के लिए हो रही है, जिसके तहत हमास को गजा में हथियार छोड़ने हैं और इसराइल को युद्ध से बर्बाद हुए फलस्तीनी इलाके से पीछे हटना है। पिछले साल मिस्र में कुशनर और स्टीव विटकॉफ तथा हमास नेताओं के बीच हुई बैठक में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन हमास के हथियार छोड़ने के मुद्दे पर प्रगति नहीं हो पाई है। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड के साथ होगा। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, वहीं इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 4-1 से हराकर मजबूत शुरुआत की थी। वेल्स के खिलाफ भारत के 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही आए थे। संजय के पहले गोल के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जिससे भारत को 3 महत्वपूर्ण अंक मिले। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा, वहीं महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्वी से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच गॉल स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी 462 रन पर सिमट गई। देवदत्त पाडिकल ने 167 और KL राहुल ने 82 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में 1 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज काठमांडू में नेपाल के सेना प्रमुख से बातचीत करेंगे। जिम्बाब्वे में नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 84 हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग से दक्षिण कोरिया के साथ आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने को कहा। FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से और बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर।

0: 101.2 FM।
1: हेलो जयपुर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं अनीता शर्मा के साथ। दोस्तों, कभी कभी लगता है जैसे हमारी जिंदगी की रफ्तार ने हमसे आगे निकलने की होड़ लगा रखी है। किसी के पास रुककर सांस लेने तक का समय नहीं है। माना व्यक्ति इसलिए भाग रहा है ताकि वो जिंदगी में कुछ हासिल कर सके, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी को थोड़ा धीमा करके जीना भी अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव हो सकता है। इसका मतलब जिंदगी से रफ्तार पूरी तरह खत्म कर देना नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों के लिए वक्त निकालना है जिन्हें हम भागदौड़ में पीछे छोड़ देते हैं। परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, बिना मोबाइल के कुछ पल बिताना, प्रकृति को महसूस करना, अपने मन की सुनना, यानी जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। तो आज जरा खुद से पूछें, आखिरी बार बिना किसी जल्दी के पूरे मन से कोई खूबसूरत पल कब जिया था।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी हर लम्हा है खुशी, कर इससे दोस्ती। दोस्तों, धीमी जीवन शैली या स्लो लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे थे, तो उसका एक खूबसूरत पहलू ये भी

है कि ये हमारी जिंदगी के असली मायने फिर से याद दिलाती है। जब हम हर वक्त जल्दी में नहीं होते तो रिश्तों के लिए ज़्यादा समय निकाल पाते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त रिश्तों को मजबूत बनाता है। काम करते समय भी अगर हम एक समय में एक काम पर ध्यान दें तो हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, धीमे चलने से हम आसपास की दुनिया को ज़्यादा करीब से महसूस कर पाते हैं। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, पेड़ों की हरियाली, चाय की एक प्याली और अपनों की बातचीत, ये छोटी छोटी चीजें ही तो जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। तो आज एक छोटा सा संकल्प, हर काम को जल्दी में पूरा करने के बजाय कुछ पलों को ठहर कर जिए, क्योंकि जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं जिसमें सबसे पहले पहुंचना जरूरी हो। कभी कभी रास्ते में रुककर खूबसूरत नज़ारों को महसूस करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना मंजिल तक पहुंचना। तो चलिए आज जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं और खुद को थोड़ा सा वक्त देते हैं, क्योंकि जिंदगी लंबी हो या छोटी, खूबसूरत तभी लगती है जब हम उसे महसूस करके जीते हैं।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

हाल जयपुर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सावन की ये सुहानी सी सुबह बारिश की बूंदों से धुली हुई धरती और हवाओं में घुली मिट्टी की सौंधी खुशबू और मन में बस एक ही नाम, महादेव। मंदिरों में गूंजते भोलेनाथ के जयकारे, शिवलिंग पर चढ़ता जल और बेलपत्र और चारों तरफ दिखाई देती भक्ति की एक खूबसूरत तस्वीर। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक साथ आए हैं, यानी आज शिव आराधना और नाग देवता की पूजा का विशेष संयोग है। दोस्तों, सावन का सोमवार जब भक्त भोलेनाथ के दर पर अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और नाग पंचमी जो हमें हमारी उस परंपरा की याद दिलाती है जिसमें प्रकृति और उसके हर जीव के प्रति सम्मान का भाव रखा गया है, तो आप सभी को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं।

शुरू हो गया था जब बच्चे ठीक से दुनिया को समझना भी शुरू नहीं करते। 17 अगस्त यानी आज के दिन 1957 को मुंबई में जन्मे सचिन पिलगांवकर का रिश्ता, जिनकी की आज हम बात कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है, इनका रिश्ता गोवा के एक कोंकणी परिवार से रहा, लेकिन सिनेमा से उनका रिश्ता जुड़ा महज 4 साल की उम्र में। साल था 1962 और फिल्म थी मराठी हा माझा मार्ग एकला। एक नन्हा सा बच्चा कैमरे के सामने आया और फिर जैसे कैमरा भी उनका होकर रह गया। इस फिल्म में उनके अभिनय को इतना पसंद किया गया कि उन्हें बाल कलाकार के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से दोस्ती करते हैं, सचिन उस उम्र में कैमरे और किरदारों से दोस्ती कर चुके थे और शायद तभी तय भी हो गया था कि ये सफर बहुत लंबा चलने वाला है। तो आइए आज शैलो जयपुर में जन्मदिन के इस खास मौके पर याद करते हैं उस कलाकार को जिसने बचपन से लेकर आज तक सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा है।

गीत का ये खूबसूरत रंग, और अब लौटते हैं अपनी उसी खास कहानी की ओर। आज जन्मदिन है उस कलाकार का जिसने बचपन में कैमरे का सामना किया और फिर अपनी प्रतिभा से सिनेमा में एक लंबा सफर तय किया। जी हाँ, बात हो रही है सचिन पिलगांवकर की। दो सौ चार साल की उम्र में कैमरे के सामने आने वाला वो बच्चा आगे चलकर हिंदी और मराठी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा बन गया। सचिन पिलगांवकर ने बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम किया। मजली दीदी, ज्वेल थीफ, ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने बड़े कलाकारों और बड़े निर्देशकों से बहुत कुछ सीखा। फिर आया वो दौर जब कलाकार सचिन ने युवा अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1975 की गीत गादा चल ने उन्हें खास पहचान दिलाई। इसके बाद बालिका वधू, अखियों के झरोखों से और नदिया के पार जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी और उनका सहज अभिनय दर्शकों के दिल में बसता चला गया। और हाँ, शोले को कौन भूल सकता है। इस फिल्म में सचिन ने अहमद का किरदार निभाया था। उनकी खासियत शायद यही रही कि उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, उन्होंने हर किरदार को अपने अंदाज में जिया। बाल कलाकार से अभिनेता बनने का ये सफर बताता है कि प्रतिभा अगर मेहनत और सीखने की ललक के साथ चलती रहे तो उम्र कभी सीमा नहीं बनती।

0: जी हाँ दोस्तों, इसी प्यारे से गाने के साथ एक खूबसूरत एहसास भी जुड़ गया। वो एहसास उन यादगार किरदारों का जिन्हें सचिन पिलगांवकर ने अपनी मासूमियत और सहज अभिनय से हमारे दिलों में बसाया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बाल कलाकार से लेकर निर्देशक और निर्माता बनने तक के उनके सफर में कई दिलचस्प मोड़ हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: हेलो जयपुर, आप सुन रहे हैं 101.2 FM पर। दोस्तों, सचिन पिलगांवकर की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस कलाकार की कहानी है जिसने सिनेमा के लगभग हर रंग को छूने की कोशिश की। अभिनय के साथ उन्होंने निर्देशन और निर्माण की दुनिया में भी कदम रखा। 1982 में मराठी फिल्म माई बाप से उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की और आगे नवरी मिले नवर्याला, आशी ही बनवा बनवी और नवरा माझा नवसाचा जैसी फिल्मों में मराठी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई। टीवी पर भी उनका अंदाज दर्शकों को बहुत पसंद आया। तू तू मैं मैं जैसे लोकप्रिय शो से लेकर एंकरिंग और रियलिटी शोज तक उन्होंने मनोरंजन की दुनिया में अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज कराई। और शायद इसीलिए सचिन पिलगांवकर को सिर्फ अभिनेता कहना उनके व्यक्तित्व को छोटा कर देना होगा। अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, गायक और एक एंटरटेनर, एक ही शख्स में इतने सारे रंग। तो आज उनके जन्मदिन पर हेलो जयपुर की ओर से यही शुभकामना कि कैमरे के सामने और पीछे मनोरंजन की दुनिया में उनकी ये लंबी और खूबसूरत पारी यूं ही चलती रहे। बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद सचिन पिलगांवकर।

हाल जयपुर के इस सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हाल जयपुर आप सुन रहे हैं। सवेरे के 11 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत। तो श्रोताओं, आपकी भी अगर किसी गाने की फरमाइश है तो दो फोन लाइन्स हैं जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी गाने की पसंद बता सकते हैं। पहला नंबर है 2200600, दूसरा नंबर है 2366477, जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। तो जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में तुम बिन फिल्म का गाना

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। सबसे पहली फरमाइश हमारे पास आई है जौहरी बाजार जयपुर से नारायण पटेल और कांतिलाल पटेल की। ये सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में कैलाशपति फिल्म का गाना।
1: चले भोले बाबा हो चले शंकर बाबा।

0: मरगट के बबूत को लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में मणिमाल के बदले गले में विषधर को लटकाए, अपनी पार्वती को रिझाने को,
1: अपनी पार्वती को रिझाने।

फरमाइशी फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का गाना, बोल है आनंद बख्शी के संगीत MM करीम का है और इस गाने को सुनना चाहते हैं अलवर से कैलाश चंद सैनी।

दीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में नगीना फिल्म का गाना। बोल है आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है जबलपुर एमपी से अशोक सिंह की।

श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोटपुतली से छाजूराम नायक की। ये सुनना चाहते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में मांग भरो सजना इस फिल्म का गाना। बोल हैं आनंद बख्शी के संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है

फरमाइशी फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आज का अर्जुन इस फिल्म का गाना। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है सुजानगढ़ से दूली चंद और विमला देवी प्रजापत की।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जिला डीडवाना गांव उधास से मोहम्मद सिकंदर की। ये सुनना चाहते हैं गुलाम अली की आवाज़ में बेवफा फिल्म का गाना।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना ललकार फिल्म के गाना, बोल थे हसरत जयपुरी के संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई थी कोटा से भूपेंद्र कुमार गुप्ता की।

ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भाभी से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत चित्र गुप्ता का है। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है बाड़मेर के मीठड़ी गांव से बशीर अहमद की।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से हेलो जयपुर में आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जालौर से आफताब की। ये सुनना चाहते हैं हेमलता की आवाज़ में अखियों के झरोखों से इस फिल्म का गाना। बोल है रविंद्र जैन के, संगीत भी रविंद्र जैन का है।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत। आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में दो रास्ते फिल्म का गाना। और इस गाने की फरमाइश हमारे पास आई है महेंद्रगढ़ से राजकुमार शर्मा की।

लता मंगेशकर के गाए दो रास्ते फिल्म के इस गाने के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। साथ ही हेलो जयपुर से भी अनीता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो जयपुर। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमीय चैनल है और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध

0: मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 MHz और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। कुछ देर में कार्यक्रम रूपरेखा में आप सुनेंगे हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।
3: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
2: कार्यक्रम रूपरेखा में सुनिए जानकारी आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

कुछ देर में दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। इसमें हमारे आज के कलाकार होंगे हरीश चंद्र शर्मा एंड पार्टी। दोपहर 1:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम पणिहारी। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आज आप सुनेंगे मंजू शर्मा के गाए लोकगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम प्रसारित करेंगे दोपहर 3:30 पर।

फिल्मी गीतों से आपका मनोरंजन किया जाएगा दोपहर 12:40 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 3 बजे और शाम 4 बजे से 5 बजे तक। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवाणी हम प्रसारित करेंगे हर रोज की तरह शाम 5 बजे से। कृषि प्रशिक्षण के बारे में इस विषय पर देवीलाल कुमावत से बातचीत आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती में, समय रहेगा शाम 7 बजे।

शाम 7:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे डॉक्टर शशिकांत गोयल से बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा कृषि में वृद्धि नियामकों का प्रयोग।

रात 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और 9:30 का समय रहेगा प्रोग्राम पब्लिक स्पीक का। सभा के अंत में रात 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत और 10:30 से 11:00 तक का समय रहेगा फिल्मी गीतों का।

0: कार्यक्रम रूपरेखा में ये थी जानकारी हमारी आज की सभा में आगे प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की।
1: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
0: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं हरीश चंद्र शर्मा एंड पार्टी।

हरीशचंद्र शर्मा पार्टी के गाए लोकगीत आज आप सुन रहे थे लोक संगीत के कार्यक्रम में। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है और अब पेश है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ों में ये गाना फिल्म परदेश से। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

सोनू निगम की आवाज़ में गाना भी आप सुन रहे थे फिल्म संघर्ष से। इसे लिखा था समीर ने, संगीत दिया था जतिन ललित ने। कार्यक्रम का अगला गाना हम सुनवा रहे हैं फिल्म बाजीगर से। आवाज़ विनोद राठौड़ की है, बोल रानी मलिक के, संगीत अनु मलिक का।

0: बाजीगर फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत को देते हैं अब यहीं विराम। फिल्म संगीत आप फिर से सुन सकेंगे दोपहर 1:05 से। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जा रही है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर निगम आयुक्त ओम कासेरा भी मौजूद रहे। अन्य जिलों में भी कलेक्टर की अगुवाई में लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी 17 और 18 सितंबर को निकालना तय किया गया है। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता 12 कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान 12 और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 2,400 करोड़ रूपये के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय और अमृत संजीवनी पार्क का शुभारंभ शामिल है।

0: श्री चौहान 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी 7 मंजिला जिला अस्पताल के भवन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर है। श्री बिरला कोटा के बोरखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वे सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। द्वितीय जोधपुर चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में 8 से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। उम्मेद स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और विजेता टीमों के लिए करीब 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान की उभरती बास्केटबॉल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर देना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री तथा जोधपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आई है। हालांकि कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। इनमें चित्तौड़गढ़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और अलवर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। नागौर पुलिस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भीलवाड़ा के जहाजपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह पिछले 5 वर्षों से सक्रिय था और 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात चोरी कर चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: The news read by Valsa Williams.
2: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत में। सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म विकी डोनर से ये गाना आयुष्मान खुराना की आवाज़ में।

राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

केके और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना भी आप सुन रहे थे फिल्म जश्न से। कुमार के बोल थे शारिब तोशी का संगीत। अगले गाने में एक बार फिर से श्रेया घोषाल की आवाज़, साथ है सोनू निगम। समीर के बोल हैं राम संपत का संगीत। फिल्म का नाम है खाकी।

फिल्म एक था टाइगर से ये गाना भी आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। कौसर मुनीर ने इस गाने को लिखा था, संगीत से सजाया साजिद वाजिद ने। इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनिए फिल्म तुम मिले से। आवाज़ें हैं जावेद अली, इरफान अशरक और शादाब की, सैयद कादरी के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 MHz और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

0: पाणीहारी कार्यक्रम सुन्नुभवला सगळा श्रोताउने आपकी बेन तमार हाडाको घणो घणो राम राम छ। श्रोताओं सावण की शुरुआत हो चुकी छे और पेड़ा पे झूला भी पड़िया और झूला को आनंद भी आपा ले रहा हाँ और खेत भी अपना हरिया भरिया हो रहा छे और हरियाली देख करके मन तो बड़ो खुश हो उठे छे। वाकई श्रोताओं यो सावण को जो महीनो छे घणो ही सुहाणो होया करे छे। ई महीना में तीज त्यौहार भी आवे छे और इमें ही आपा बात करेला नागपंचमेरी। ईद अने नाग देवता री पूजा करी जावे छे और राजस्थान में ई त्यौहार ने घणा श्रद्धा और विश्वासु मनायो जावे छे। लोग घर में नाग देवता रो चित्र बना के दूध फूल हल्दी कुमकुम चढ़ावे छे और परिवार की सुख शांति और खुशहाली री कामना करे छे। नागपंचमी रो त्यौहार आपने यह सीख देवे कि आपने प्रकृति और जीव जंतु रो सम्मान करनो चावे। सांप खेता में नुकसान करने वाला जीव जंतु ने खावे जिनसो खेती ने फायदो मिले छे और ई कारण नाग देवता ने प्रकृति का रक्षक भी मान्या जावे छे। तो आओ आज आपा भी प्रण लेवा के प्रकृति की रक्षा करा और कदी भी सांपा ने या और जीवा ने नुकसान न पहुंचावा। और अब सुनला कुछ संदेश।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में

आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।

0: और श्रोताओं, अब बात कर लेवा मनसा पूजा के प्रारंभ की। मनसा माता ने नागा की देवती और लोक आस्थारित देवी मान्य जावे है। राजस्थान सहित भारत में कई हिस्सा में मनसा माता री पूजा और श्रद्धा और विश्वासों करी जावे छे। खास करके सावण और भादवरा महीना में मनसा माता री पूजा रो विशेष महत्व होवे छे। मनसा माता ने भगवान शिवरी मानस पुत्री भी मान्यो जावे छे। मान्यता छे के कोई सच्चा मन सु माता री पूजा करे छे उन्हें सर्प को भय न रहे छे और सुरक्षा मिले छे, परिवार में सुख शांति आवे और रोग दुख दूर होवे छे। श्रोताओं, मनसा माता री पूजा केवल धार्मिक परंपराएं को नहीं बल्कि प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति आदर रो भाव भी सिखावे छे। नाग प्रकृति की रक्षा करे छे, यही कारण नागा ने मारनो पाप मान्यो जावे छे। मनसा माता पूजा आपने संदेश देवे छे कि हर जीव में भगवान रो अंश छे। मनुष्य ने सब जीवों से प्रेम करनी चाहे, प्रकृति की रक्षा करनी चाहे और आज रा समय में अंधविश्वास बचनो भी जरूरी छे। यदि कोई ने सांप काट लेवे तो केवल पूजा पे ही भरोसा न करनो बल्कि तुरंत अस्पताल भी दिखाणो। मनसा माता री पूजा परिवार में एकता, प्रेम, भाईचारा और सद्भाव भी बढ़ावे छे। गांव में लोग मिलजुल करके पूजा करे छे, भजन कीर्तन और एक दूसरा ने शुभकामना दे छे। मनसा माता आपने सीख देवे छे कि जीवन में सच्चाई और दया, सेवा, विनम्रता और सदाचार अपनानो बहुत जरूरी छे। दूसरा री मदद करा, पशु पक्षियों से प्रेम करा और प्रकृति रो सम्मान करनो भी सच्ची पूजा छे। तो आओ अपन भी प्रकृति को सम्मान करा और जो जीव जंतु छे माने भी प्यार करा। और जब श्रोताओं बात चल रही है प्रकृति की और यादना बारिश भी हो रही है, मौसम भी बड़ो ही सुहानो बनी हुआ है और यादना जो घूमबा फिरबा को आनंद आपान ले भी रहा छा और बारिश का दना में अगर रसोई में कुछ नयो गर्मा गर्म चटपटो खावाने हो तो आनंद और ज़्यादा बढ़ जावे छे। और अब आ चुकी छे अपना स्टूडियो में उषा सिंगल जी, जो आपने बतावेगी कि बारिश में काई काई पकवान बनावा और कशा कशा बनावा। तो आओ सा सुना यहाँ से या जानकारी।
1: सा बहना, बरसात रो मौसम चल रही है और अब की बार खूब बारिश बरसी है। ऐसा मौसम में अपनी रसोई में तरह तरह की चीजा बना खिलावारी फरमाइश सभी घरवाला करी ले छे। चाहे बालक टाबर हुए चाहे बड़ा, सब रो मन तरह तरह की चटपटी मसालादार चीजा खावाने ललचा जावे। और अगर ना आ जावे पकौड़िया रो तो बस फिर तो बात ही कहीं है, सुनता ही सबका मुंह में पानी आ जावे। बहना, आप अपनी रसोई में तरह तरह की पकौड़िया बनाता ही रहवा छा, पर आजकल छे भुट्टा रो मौसम तो क्यों ना आप भुट्टारी पकौड़िया बना देखा। यह बनावा में तो आसान छे ही, साथ में स्वादिष्ट भी घनी लागे छे। तो तैयारी करा, सबसे पहली तो सामान इकट्ठो करा। भुट्टा की पकौड़िया खातिर आपने लेना है दो भुट्टा, ताजा ताजा भुट्टा ले लिया जिन्हें कद्दूकस करके रखना है। एक कटोरी बेसन आपने चाहे लो, तलवा के लिए तेल चाहिए, एक छोटा टुकड़ो अदरक रो आप लेकर रखा, बिना भी छील कर कद्दूकस के रख लेवा। हरो धनियो थोड़ो चाहिए बारीक काट कर रखा ही ने, हरी मिर्चा भी चाहिए, एक दो हरी मिर्च भी हुआ, नमक आप अंदाज से ले सका, लाल मिर्ची आधी चम्मच हो जाए, जीरो आधो चम्मच, इमें थोड़ो सो मीठो भी डलो करे तो पौन चम्मच के करीब चीनी भी आपने रखनी है, थोड़ी सी अजवाइन और गरम मसालो और साथ में चौथाई सौ कप दूध, ये सब चीज़ें आपने चाहिए ली। अब सारो सामान अपने पास से आ गए हो तो अब शुरुआत करा बनावारी। सबसे पहली तो जान में खयो की भी अदरक का टुकड़ा ने और भुट्टा ने बारीक कद्दूकस करके रख लेनो है। हरी मिर्च ने भी बारीक बारीक काट लेनो है क्योंकि बड़ी मिर्चा से मुँह जल जावे, और धनिया ने भी बारीक काट कर धोकर रख लिया। अब एक बर्तन में बेसन डाला और सारी चीज़ें डाल करके पकौड़ियाँ और घोल तैयार करनो है। घोल में नमक और मिर्ची आपा अपनी मर्जी से अपनी पसंद का हिसाब से कम या ज़्यादा कर सका छा। आखिर में चौथाई कप दूध भी डालकर घोल तैयार हो जाए छे। अब कढ़ाई में करा तेल गरम और गरम तेल में पकौड़ियाँ तलनी छे, पर ध्यान रख

है कि पकौड़ियाँ छोटी छोटी बनानी है। एक ही अगर आप पकौड़ियाँ बड़ी बना दे वाला तो अंदर से कच्ची रह जावेली। भुट्टा की हल्की हल्की मिठास वाली पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी लगे। धनिया की चटनी या यूं भी आपा अकेले खाली भी इन्हें खा सका। जो बिना ये ध्यान रखना है कि पकौड़ियाँ की जो आपा बना रहे हैं छोटी छोटी ही पकौड़ियाँ बनानी है और सिकाई अच्छी होनी चाहिए। अब पकौड़ियाँ की बात चली तो आलू पालक क्या भूल सका। आलू पालक री, गोभी री, प्याज री सबकी पकौड़ियाँ यूं आपा घर घर में बनावा, पर आज आलू और पालक री पकौड़ी कुछ अलग तरीका से बना देखा। जी के लिए आपा ने जो सामान चाहिए पहले तो आप भी ना लिख लो। बेसन चाहिए लो करीब करीब 250 ग्राम यानी पाव भर बेसन। उबले हुए आलू होना चाहिए 3 या 4, बड़ा हुआ तो 3 ले लो, छोटा है तो 4 ले लो। पालक की एक छोटी गड्डी जिसमें साफ साफ पत्ता वाला पालक हुआ है। नमक अपना स्वाद का हिसाब से, लाल मिर्ची 1 चम्मच और 1 चम्मच ही अमचूर, साथ में 1/2 चम्मच गरम मसालों और थोड़ा सो अजवाइन। ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर ले। और सबसे पहली तो बनावा घोल। सबसे पहले बेसन में मिर्ची, अजवाइन, नमक यह सब डालकर घोल बनाकर रख देना है। अब बनाना है आलू रो मसालो। तो जो अपना उबले हुए आलू है बिना मसल कर, और अगर मसलना को नहीं तो कद्दूकस भी कर सका, बिना बारीक कर लेना है। और इनमें नमक, मिर्ची, अमचूर और गरम मसालो अपना स्वाद का हिसाब से, आप कितनों चटपटो खावा बी का हिसाब से मिला देवा। नमक मिर्ची जो है कम ज़्यादा करी जा सके जो। अब आलू की ये जो तैयार मसाला वाला आलू है या कि छोटी छोटी लोया बनाकर यानी टिकिया बनाकर रख लेना है। अब लेवा पालक ने, जो पालक आप रखे हो अभी की डंडिया ने काट कर अलग कर दो, और पालक का दो दो साबत पत्ता के बीच में एक एक टिकिया ने रख करके हथेली सू या अगलिया से इस तरह से दबाओ कि वह भरावन पूरा पालक पर आ जावे। जाना पालक का पराठा बनावा तो बराबर करना, तो इमें पालक के ऊपर करना है। और सारी टिकियाँ बनावा के बाद में ये टिकिया ने बेसन का घोल में डुबो करके और गरम गरम तेल में तल करके पकौड़ियाँ तल लेनी चाहिए। ये पकौड़ियाँ भी टमाटर की सॉस या हरा धनिया की चटनी के साथ में बड़ी स्वाद लगे है। बहना जब आप बात कर रहा है पकौड़ियाँ री तो पुआर पकौड़ियाँ को तो बड़ो जोड़ो है, इनके बिना भोजन अधूरो सो लगे। तो पकौड़ियाँ री बात करी है तो पुआरी भी बात कर ले वहाँ। और आज बना देखा रबड़ी वाला मालपुआ जो कि घर में आसानी से बन सके और बड़ा स्वाद लगे। और यहाँ दिना में तो घर घर में पुआ बनाया भी जावे, खीर के साथ पुआ भी बनाई है, तो बहुत ही बढ़िया समय छे आपनों बनावारो और बनाकर देखवारो। इनके लिए बहुत थोड़ी सी सामग्री आपने इकट्ठी करनी छे। 2 कटोरी के करीब मैदा और 1 किलो मलाईदार दूध, यानी या कोनी की बीमे से घी मलाई निकली उड़ी है, अच्छो दूध, गाढ़ो गाढ़ो दूध लेकर बी की आपने फीकी रबड़ी या गाढ़ो दूध करके रख लेना है। 3 कटोरी चीनी चाहिए और देसी घी तलवा के लिए। उन्हें सजावा के लिए पिसौड़ी इलायची, केसर और बादाम की कतरना रख लेवा। अब सबसे पहले आपने बनानी है चाशनी। जो 3 कटोरी चीनी आप रखी है बी में 1 गिलास पानी डालकर उबालना है और बिना तार री पतली पतली चाशनी बनाकर रख लेनी है। जान गुलाब जामुन की चाशनी हुआ करे। और इन चाशनी में पिसौड़ी इलायची और केसर का धारा डालकर रख दो। अब आपकी बारी है पुआ बना वाली। तो जो गाढ़ो दूध या रबड़ी फीकी आप रख रही है बना करके बी में मैदा ने घोलना है और पतलो पकौड़ी जैसे वो घोल बनाना है। 1/2 घंटा तक ही घोल ने रख देना है। और 1/2 घंटा के बाद में जो चपटी कढ़ाइयाँ हुआ है पुआ बनावारी भी मैं चम्मच की सहायता से पुआ बनाना है। अच्छी तरह जब पुआ तल जावे तो घी में से निकालता ही गरम गरम चाशनी में डाल देना है। और जब परोसा तो परोसती वक्त बादराम की कतराना ने बुरक करके परोसा तो बस आँखें ने भी बढ़िया लागे और स्वाद तो कहीं कहना। बिना ई मौसम में जब मक्का की बात चली तो मक्का घना ही आ रहा है, तो मक्का का कटलेट भी अगर आप बनावा नाश्ता के लिए तो बहुत स्वादिष्ट लगे और आसानी से बन जावे। इनके लिए भी अपने ताज़ा भुट्टा लेना है, 2 भुट्टा ले लिया, ज़्यादा चाहिए तो फिर ज़्यादा ले लो। उबले आलू अपने 2 लेना है, अदरक को 1 टुकड़ो लेवा, हरी मिर्ची ले लेवा 2 और 1 बड़ो चम्मच जो है बेसन को लेना है। तलवा के लिए तेल लेना है, 1/2 चम्मच नमक लेना है और धनिया पाउडर यानी पिसौड़े धनिया 1 चम्मच लेना है, चुटकी भर गरम मसालो। ये सब चीज़ें अपने लेकर इकट्ठी कर लेनी है। अब बना वो शुरू करा तो सबसे पहले भुट्टा ने वही छील करके कस लेना है, कद्दूकस कर लेना है। उबला हुआ जो आलू आपने पास है वह भी छील कर कद्दूकस कर लो, और जो अदरक है और हरी मिर्च है भी ने एकदम बारीक बारीक बारीक काट लो, या काट नहीं सको तो फिर पीस लो, कोई ना टुकड़ा पसंद को नहीं तो पीस भी सके। अब कटलेट का आकार में ये टिक्की आपने बनानी है। सारा एक बर्तन में जो है सारी चीज़ें मिला करके और गोल लोई बनावा और कटलेट का आकार की टिकिया बनाकर तैयार कर देवा। अब करा कढ़ाई में तेल गरम और कटलेट तल लेना है। गरम गरम हरा धनिया की चटनी के साथ या टमाटर के सॉस के साथ परोसना है। पर ही में एक बात ध्यान रखना है कि कभी कभी जो है कटलेट तलती बखत टूट जावे। अगर आपने कटलेट टूटता लाग रहा है तो बाकी

और चुकंदर का टुकड़ा भी डाल सकें या घिचौड़ा लच्छा भी डाल सकें तो ये और भी पौष्टिक हो जावे। बिना रोज़ रोज़ तो आपा पुआ पकौड़ी खा को नहीं सका, क्योंकि स्वाद के साथ साथ अपने स्वास्थ्य भी को भी आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा तेलुड़ी चीज़ें खावा तो स्वास्थ्य में नुकसान पहुँचे है, पर मौसम है कि भाई ये चीज़ें खावा को मन तो करे ही है, तो ऐसी चीज़ भी बना के आपा दे सका परिवार में अपना कि जो पचावा में भी आसानी रहे और खावा में भी चोखी लागे। तो ई के लिए अब आजकल लौकी रो मौसम है, और लौकी आप जानो कि खावा में कितनी बढ़िया रहे, बड़ा बूढ़ा ने भी पचे और टाबर खावे को नहीं, तो ई तरीका से आपा भी ने खिला सका। हाँ, तो जो लौकी है बीका नमकीन गट्टा बनाकर अगर आपा खिलावा तो बहुत बढ़िया नाश्तो या बने। इनके ये भाप में सीखे, ज़्यादा तेल घी भी को नहीं लागे और आसानी से पच भी जावे, और लौकी जो है कितनी स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहे यह आपा सब जाना। हाँ, इनके लिए एक लौकी लेनी है आपा ने बीच का आकार की, मध्यम आकार की। एक कटोरी गेहूं को आटो लेना है मोटो वालो, जो आपा बाटी बनाते वक्त काम में लेवा, थोड़ा मोटो पिस्योड़ो। आधी कटोरी सादा आटो लेना है रोटी जैसो, आधी कटोरी बेसन लेना है, और चौथाई कटोरी लेनी है सूजी। एक चम्मच नमक, कुट्योड़ी लाल मिर्ची लेनी है आधी चम्मच, जीरो भी लेना है और चुटकी भर हल्दी भी लेनी है। सफ़ेद तेल 2 छोटा चम्मच, साबुत धनियों 2 छोटा चम्मच और राई 1 चम्मच, ये आपा ने छोंक के लिए लेनी है। आधा चम्मच या चौथाई चम्मच शक्कर आपा ले वहाँ। हींग है, गर्म मसालो है और चाट मसालो है, ये आपा अंदाज से ले लेवा। एक नींबू की में जरूरत पड़े ली और एक टुकड़ो अदरक भी होना चाहिए। हरी मिर्चा 5-6 लेनी है, हरो धनियों और कड़ी पत्ता ये भी 5-6 डंडियाँ जो के लेकर रख लेवा तो स्वाद और भी बढ़ जावे। बहना जो मिर्चा आपा ले रहा है ना, बिना 2 तरीका से काटना है। आपा 2 मिर्चा तो काट लेवा बारीक बारीक, जो कि गट्टा के अंदर आपा डाल दे वाला, और बाकी जो बचौड़ी मिर्चा है बिना पतला पतला लच्छा में गोल गोल काट लेवा तो वह छोंकती बखत आपा काम में ले वाला। इनके अलावा आपा ने लेना है बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, मीठो सोडो 1 चुटकी, मीठो तेल 2 बड़ा चम्मच। यह सारा सामान जब अपने पास आ गया है तो आपा बनावो शुरू करा गट्टा। एक परात में सब तरह का आटो, बेसन और सूजी ने मिला देवा, और जो बारीक कटोरी 2 हरी मिर्चा थी बीना डाल देवा। कद्दूकस करके रखियोड़ो अदरक नमक हल्दी शक्कर ये भी मैं मिला देवा। सारो सामान अच्छी तरह मिलाकर परात में थोड़ा फैला रख देवा। अब इन सामान में एक जगह थोड़ी सी जगह बनाकर बेकिंग पाउडर और आधो नींबू का रस डालकर रख देवा, और दूसरी जगह मीठो सोडो और 1/4 चम्मच तेल डालकर 1 मिनट के लिए रख देवा। आधा 1 मिनट के बाद में पानी डालकर ये आटा का मिश्रण ने गूंद लेनो है। आपा जो आटो गूंदा वह नरम नहीं होना चाहिए, इन्हें थोड़ा सख्त गूंदो है। जब अच्छी तरह गूंद जावे तो इनका पतला पतला गट्टा बनाकर भाप में पका लेना है। अब आपने पास खावण बनावा रो सांचो है जब तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। नहीं तो आपा कढ़ाई में पानी रख कर कर गर्म कर सका, और भी के बीच में कटोरी रख कर भी कटोरी के ऊपर जालीदार प्लेट हुए तो वाह, और नहीं तो सादा प्लेट लेकर भी मैं एक गट्टा ने रख देवा और एक बड़ी प्लेट से ऊपर से और ढक देवा। यहाँ गट्टा ने पकवा में बहना 20-1 मिनट लग जावे, तो लगभग 20-25 मिनट के बाद गट्टा ने ठंडो करके चाकू से छोटा छोटा गोल गोल टुकड़ा काट लेना है। अब गट्टा तो बनकर तैयार हो गया, पर खावा से पहले लगाना है छोंक, जो कि जब खावा तब भी लगा सका। इनके लिए एक कढ़ाई लेवा और उनमें बचोड़ो जो तेल है बिना गरम करा, और गरम तेल में राई साबुत धनियों तिल कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता जिन्हें आप मीठी नीम भी कहवा बीका पत्ता, यह सब डाल करके भून लेना है, और लच्छा वाली जो हरी मिर्च है वह भी आई बखत आप डाल देवा, और ये सब डाल करके जब ये थोड़े भून जावे तो ऊपर से कटोड़ा जो गट्टा है वह डाल देवा, और अच्छी तरह मिलाया पाछी बारीक कटोड़ो हरे धनियों और आधो नींबू को रस भी इनके ऊपर भू रख देवा, तो बहुत ही बढ़िया इनकी देखवा में भी सुंदर लगे और स्वाद तो चखर ही पतो लागे लो आपने, बहुत बढ़िया लगे। एक बार फिर सबने मिला देवा, और या ने आपा पतली पतली धनिया की चटनी या टमाटर सॉस के साथ में गरम गरम परोसकर खिला सका, ये बहुत ही स्वादिष्ट भी लगे और पौष्टिक भी हुआ। तो बहना आपा पुआ पकौड़िया री बात भी कर ली और छोला री चाट भी बना ली, और इनके साथ साथ आपा गट्टा भी बना लिया, जो कि सब तरह से आपने पौष्टिक और स्वाद के लिए बढ़िया रह वाला। अब ये बात है कि ये मौसम में नहीं नहीं करता भी आपा सब जो है थोड़ा तलियो भुनियो तो खा ही लेवा छा, और खावा में आई जाए छे और पेट है ना थोड़ा सा गड़बड़ होगा लग जावे, और आपा ये जाना कि भैया पेट में भूख अच्छी तरह लागे है, भोजन अच्छी तरह पच जावे, इनके लिए आजकल देखो सूप को प्रयोग तो आपा सभी लोग कर रहे हैं। शादी ब्याह में दावता में भी आप देखो सूप पिले ही है, घर में भी आपा बना देवा टमाटर को है, दूसरी चीज़ों को है, दाल को है, पालक को है। कोई मरीज हुआ तो बी के लिए भी डॉक्टर जो है बता देवे भाई इन्हें सूप पिलाओ, तो आपा सूप भी बनाकर देखा है मौसम में। पर आपा बनावा लौकी रो सूप, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगे, आसानी से बने और बहुत पाचन।

0: अच्छी तरह बीमारी में भी यह फायदा करे और पेट भी इसे भर जावे। इनके लिए आपा लेवा एक लौकी मध्यम आकार की, एक कटोरी आपने दही लेनो है, एकदम बारीक कटोरी गाजर छोटा छोटा टुकड़ा में, और पत्ता गोभी, और नमक भी लेना है 1 चम्मच, और साथ में काली मिर्च 1 चम्मच। अब तरीको यह है इनको कि भी सबसे पहले लौकी छीलो, टुकड़ा में काटो और कुकर में डाल करके बीने अच्छी तरह उबाल लेना है। अब सर्दियाँ को मौसम हुआ है तो बी में आपा थोड़ो दालचीनी को टुकड़ो और लौंग डाल सका, नहीं तो नमक ही काफ़ी रहे। अब जब लौकी उबल जावे तो ठंडी हुई आपा अच्छा इन्हें मिक्सी में पीसो, चाहे चम्मच से बड़ी चम्मच से दबा दबा कर इनका कुचल लेना है, इन्हें मसल देना है और एक बड़ी चलनी में से छान लेना है। छने बाद जो सामान आपने ये लौकी है इन्हें एक बर्तन में चूल्हा पर गर्म करवा रखना है, में थोड़ा पानी डालना है और जो दही आपने पास है बिना मथ करके या छान करके वह भी इन बखत ही आपने मिलाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि चम्मच से लगातार तब तक इन घोलने चलाना है जब तक कि उबाल को नहीं आ जावे। जब उबाल आ जावे तो काली मिर्च और नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा आपा कर सका, और अच्छी तरह 2-3-4 मिनट जब उबल जावे और आपा परोस वाला हाँ तो बी में पत्ता गोभी का और गाजर का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वह भी डाल देवा। तो बस ये बहुत ही पौष्टिक और बढ़िया चीज़ तैयार हो जावे, भूख भी बढ़िया लगे, पेट भी भरे और पोषण भी मिले।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा,
4: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
5: श्रोताओं, आभार आपने उषा सिंगल जिसू बारिश में बनाया जावण वाला पकवान का बारे में जानकारी ली, और इनके लिए यानी देवा धन्यवाद और धन्यवाद सारू सुना दा। एक लोकगीत तो आओ सा सुना, यो लोकगीत।

श्रोताओं, हमारा आपने यो लोकगीत सुने जो जरूर पसंद आयो लो। और अब बात कर ले वहाँ आज अमृत लाल जी नागर जी की जयंती की। श्रोताओं, आज 17 अगस्त है और आज के ही दिन आप सभी जानो जो कि अमृत लाल जो नागर जी था वहाँ की जयंती मनाई जा रही है। अमृत लाल नागर जी रो जन्म 17 अगस्त 1916 ने उत्तर प्रदेश रा आगरा शहर में हुए हो। हिंदी साहित्य रे महान उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और लेखक हा। इन्होंने आम आदमी रा जीवन, समाज और सच्चाई और भारतीय संस्कृति ने अपना लेखन में बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत करियो हो। अमृत लाल नागर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखे था। बाद में इन्हा ने साहित्य में अपनो जीवन बनायो और इन्हा री भाषा सरल, प्रभावशाली और जन जन री समझ में आवन वाली हुई। अमृत लाल नागर जी रा प्रसिद्ध उपन्यासा में से है बूंद और समुद्र, मानस सहांस, नाचो बहुत गोपाल, अमृत और विष और कई दूसरी रचनाएं भी शामिल छे। श्रोताओं, यारी रचना में समाज, इतिहास, संस्कृति और मानवीय संवेदना रो सुंदर चित्रण मिले है। अमृत लाल नागर जी केवल लेखक ही कोनी हा बल्कि भारतीय संस्कृति रा सच्चा उपासक भी था। इन्होंने लोक भाषा, लोक जीवन, लोक परंपरा और आम जनता री पीड़ा ने अपना साहित्य में स्थान दियो। इन्हीं कारण आज भी यहाँ की रचना पढ़ी जावे और श्रोताओं याने कई सम्मान भी मिलिया। इन्हा रो साहित्य आज भी विद्यार्थी, शोधकर्ता और साहित्य प्रेमियों ने प्रेरणा देवे है। यारो मानो थो कि साहित्य समाज ने दिशा देवे और मनुष्य में मानवता जागती होनी चाहे। अमृत लाल नागर जी री जयंती ने आपने या भी प्रेरणा देवे है कि खूब पढ़ो लिखो पर कदी भी अपनी भाषा और संस्कृति ने न छोड़नो, इरो सम्मान करनो और समाज भलाई और खातर के काम करनो और वहाँ के लिए ही यह श्रद्धांजलि छे। तो श्रोताओं, आज

0: football and Odisha today. In men's cricket, Sri Lanka were 184 for 5 in their first innings against India on day 3 of opening test at Galle. And BWF Badminton World Championships begin in New Delhi. India's M.R. Arjun Hariharan Amsakarunan advance to second round of men's doubles category. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन हरिहरन अमसकरुन पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
2: On the basis of a well-researched
3: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
2: And in that, the role of banks.
1: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
3: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
1: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
2: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा।
1: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
3: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
4: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या

बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरडम में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका

0: समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 MHz और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार हैं मंजू शर्मा।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मंजू शर्मा के गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म गैंगस्टर से केके की आवाज़ में ये गाना। इसे लिखा है सैयद कादरी ने, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

0: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक।
1: तेरे बिना जिया जाए ना।
2: एटीज में था डिस्को, नाइन्टीज का मूड रोमांटिक।
3: दिल है के मानता नहीं।
0: 2000s में था बदलाव पे जोर।
2: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: यू सेड वी प्लेड।
2: दिस इज 101.2 FM, जयपुर का अपना FM।
0: सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।

लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गाना भी आप सुन रहे थे फिल्म बचनाए हसीनों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनिए फिल्म रास से अलका याग्निक की आवाज़ में ये अगला गाना, समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कार्यक्रम की अगली पेशकश हम लाए हैं अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है डार्लिंग।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी और तुलसी कुमार की आवाज़ में फिल्म डार्लिंग से ये गाना। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमीर चैनल है। अब समय है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले

0: दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
2: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
3: जी दादाजी।

0: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
1: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
2: वाह क्या सफाई है, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
0: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
3: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
4: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
3: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूं? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
5: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए, लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
2: वाह क्या ठाट है बीमारों के भी, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह मैं कब बीमार पड़ूंगा।
1: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा, मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
3: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
2: दादी लगता है मुझे बुखार है।
3: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
2: दादी बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
3: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
2: अरे दादी इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
3: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
2: दादी

0: लगने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
1: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना। अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
1: अरे ये तो खांस भी रहा है। अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
2: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। ठटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
3: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
3: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
4: जी।
3: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
4: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो, दवा लो, चलो चलो गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है।
4: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
3: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ, शाबाश।
0: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए, सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई, लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
0: जी जी, अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी, दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो, दवा पी लो, चलो उठो उठो, शाबाश। पकड़ता हूँ, उठो। चलो चलो, शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी, ये नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
0: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है, अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। आहा, फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता, सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
5: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे, जब

0: रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
1: अरे सुमेश बेटा, जग गए? कुछ आराम आया बेटा? है? बोलो, ठीक है ना? अरे, अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
2: जी दादाजी।
3: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
1: बिल्कुल ठीक हो जाओगे
3: बेटा।
2: जी।
4: सोमेश जलन, गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
0: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
5: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग या तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
6: ऐसे नहीं मानेगा।
7: साहब मत करो साहब।
6: चल सिपाही।
8: यस सर।
7: साहब
6: इसको हंटर मारो।
7: साहब।
8: जी सर।
7: साहब
5: अबुआ राज अबुआ दिसुम। ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
9: '1857 के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
10: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
9: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
10: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
9: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
6: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
7: जी मेरा नाम कोड़ा है।
6: ओके, तो तुम कोड़ा हो
7: जी।
6: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
7: जी ये मेरी जमीन है।
6: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।

0: Sam!
1: Ow!
0: Sam! Sam!
1: Oh! Hey, ऐसे नहीं मानेगा.
0: Sam, मत करो, Sam.
1: चल, सिपाही.
2: Yes, sir.
0: Sam.
1: इसको हंटर मारो.
0: Sam, चलो, Sam. Sam, मत करो, Sam. मैं बर्बाद हो
3: जाऊंगा. इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी. लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा.
4: आदिवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे. महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे.
3: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे. असंतोष बढ़ता जा रहा था. कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया. कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था. विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी.
4: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते.
5: भाई कान्हू.
6: जी भैया.
5: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है.
6: हाँ, वो तो है. आज ही देखो ना क्या हुआ.
5: क्या हुआ?
6: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया.
5: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा.
6: हाँ भैया.
5: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहां विचार करेंगे कि हमें क्या करना है.
6: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा.
5: तो फिर
6: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए.
5: हाँ, ठीक कहा तुमने.
6: हाँ,
5: ऐसा ही करेंगे.
6: जी भैया.
4: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा.
3: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था. 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया. सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया. इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया.
4: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई. गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई. साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है. तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया. इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया.
3: दिन था 30 जून 1855. स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह. जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे. पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए. सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया.
7: अंग्रेजों का अत्याचार तो बढ़ता ही जा रहा है. अरे हमारी जमीन जब्त
8: कर दिया. अंग्रेजों ने तो आज तो कुछ फैसला.

0: संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
1: सही बोले।
0: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
2: हाँ, सही कहा।
0: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
1: भैया सही बात
2: कह रहा है, एकदम सही कह रहा है।
0: हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
2: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
0: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
3: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
0: अब करो या मर जाओ,
3: अब करो या मर जाओ।
0: अबुआ राज अबुआ किसुम,
3: अबुआ राज अबुआ किसुम,
0: अबुआ राज।
4: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
5: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धू कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
4: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धू और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
5: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
4: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
5: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आइए अब चलते हैं फिल्मी गीतों की ओर। सबसे पहले सुनवा रहे हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना भी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म हमारी अधूरी कहानी से ये अगला गाना।

0: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक।
1: तेरे बिना जिया जाए ना।
2: एटीज में था डिस्को, नाइन्टीज का मूड रोमांटिक।
3: दिल है के मानता नहीं।
0: 2000s में था बदलाव पे जोर।
2: और अब है पार्टी सॉन्ग।

0: सॉन्ग्स का दौर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: You said, we played.
0: This is 101.2 FM, जयपुर का अपना FM. सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए अदनान सामी और सुनीति चौहान की आवाज़ में फिल्म ऐतराज़ से। इसे लिखा है समी ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

गुरु रंधावा की आवाज़ में सुनवा रहे हैं इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है तुम्हारी सल्लू। इस गाने को लिखा है गुरु रंधावा ने और संगीत से सजाया है गुरु रंधावा ने।

0: सिक्सटीज की मेलोडीज हो या सेवेंटीज का मैजिक।
1: तेरे बिना जिया जाए ना।
2: एटीज में था डिस्को, 90s का मूड रोमांटिक।
3: दिल है के मानता नहीं।
0: 2000s में था बदलाव पे जोर।
2: और अब है पार्टी सॉन्ग्स का दौर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: यू से इट, वी प्ले इट।
2: दिस इज 101.2 FM, जयपुर का अपना FM।
5: सुनते जाओ, सुनाते जाओ, संग हमारे गुनगुनाते जाओ।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। फिल्म हाईवे से सुनिए यह अगला गाना, इशरात कामिल के बोल, आवाज़ और संगीत ए आर रहमान का।

फिल्म कल हो ना हो से अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गाना। आवाजें थी सोनू निगम, उदित नारायण, सुजाता, साधना सरगम और शंकर महादेवन की। जावेद अख्तर के बोल थे शंकर एहसान लॉय का संगीत। आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम लाए हैं मोहित चौहान और एआर रहमान की आवाज़ में। इरशाद कामिल के बोल हैं, म्यूजिक एआर रहमान का। फिल्म का नाम है रॉकस्टार।

फिल्म रॉकस्टार के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं खत्म करना चाहेंगे। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। FM बैंड 101.2 MHz और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। शाम के 5 बजने को है। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
1: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।

आप सुन रहे हैं युववाणी। आप सभी ने ट्यून इन किया है 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जयपुर केंद्र, और मैं हूं खुशी। दोस्तों, बाहर शाम ढल रही है और मुझे उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। सबसे पहले तो आज की तारीख पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज 17 अगस्त है और आज पूरे देश में नाग पंचमी मनाई जा रही है। घर घर में दूध, हल्दी और वो पारंपरिक श्रद्धा। और सोचने वाली बात यह है ना कि नाग पंचमी का असली मतलब क्या है। जी हाँ, जिस चीज से हम डरते हैं उसे समझ लेना, उसे सम्मान देना। तो आज मैं कुछ इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एक ऐसे डर की बात जो हम में से हर कोई कभी ना कभी महसूस जरूर करता है, पर बात बिल्कुल नहीं करता। तो चलिए, इस बारे में बात करने से पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।

0: दोस्तों ज़रा सोचिए, ठीक है ना। रात के करीब 11 बज रहे हैं, आप आराम से लेटे हैं, कल की पढ़ाई अभी पेंडिंग है आपकी, ओके, पर फ़ोन हाथ में है, तो आप क्या करोगे? स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, और अचानक एक फ़ोटो दिखती है, कोई दोस्त नई बाइक ले चुका है, कोई गोवा घूम रहा है, किसी ने अभी अभी अपनी इंटर्नशिप ऑफर लेटर पोस्ट कर दी है, और आप वहीं लेटे लेटे सोचते हो, यार मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा। साउंड्स फैमिलियर, राइट? मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी मेंटली इस चीज़ पर एग्री हो रहे होंगे कि हाँ यार बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। तो दोस्तों आज बात करते हैं इसी की, इस कंपैरिजन ट्रैप की। सोशल मीडिया पर हम सब एक दूसरे की हाईलाइट रील्स देखते हैं और उसे अपनी पूरी रॉ, एक अनएडिटेड बैकस्टेज लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, और ये कंपैरिजन कभी फेयर नहीं होता। किसी की सिर्फ बेस्ट तस्वीर देखकर हम अपनी पूरी स्ट्रगल को छोटा समझने लगते हैं। एक बात बताऊं, कोई भी इंसान अपनी रात की 2 बजे की चिंता, अपना रिजेक्शन लेटर, अपना वो पल जब उसे खुद पर शक हुआ था, वो सब पोस्ट बिल्कुल नहीं करता। हम सिर्फ जीत की तस्वीरें देखते हैं, हार की नहीं। तो जब आप अपनी असली स्ट्रगलिंग लाइफ को किसी और की सिर्फ विनिंग हाईलाइट से कंपेयर करते हैं ना, ये तो फेयर फाइट नहीं है, राइट? चलिए इस बारे में सोचिए, और तब तक सुनिए ये प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर।
1: पैसों की समस्या से छुटकारा,
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2026 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए।

0: ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आज की रोजगार सूचना का। हमारी आज की पहली रोजगार सूचना है इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर रिक्रूटमेंट की तरफ से, जिसमें टोटल 93 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वेरियस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स में। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 28 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है isro.gov.in। वेबसाइट मैं फिर से दोहराती हूँ, isro.gov.in। और हमारी आज की दूसरी रोजगार सूचना है RUHS मेडिकल ऑफिसर रिक्रूटमेंट। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS जयपुर ने मेडिकल ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अंडर टोटल 600 पोस्ट भर्ती की जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट है RUHSRAG.org। मैं वेबसाइट एक बार फिर दोहराती हूँ, RUHSRAG.org।

तो दोस्तों, मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद आपकी मदद करे उस कंपैरिजन वाली फीलिंग से निकलने में। पहली बात, अपना खुद का टाइमलाइन बनाइए। किसी और की उम्र में उनकी अचीवमेंट को अपनी उम्र में मेजर मत कीजिए। हर बीच का अपना मौसम होता है, कोई जल्दी जगता है, कोई जल्दी उगता है, कोई देर से, पर दोनों उगते ज़रूर हैं। दूसरी बात, जो भी अकाउंट आपको हर बार देखकर इनसिक्योर फील कराए, उसे म्यूट करने में कोई बुराई नहीं है। ये कोई र्यूडनेस नहीं है, ये आपकी मेंटल पीस की जिम्मेदारी लेना है। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखिए। आज सुबह वक्त पर उठी या आज सुबह वक्त पर उठा, ओके, वो भी एक जीत है। एक टफ टॉपिक खुद से पढ़ लेना, वो भी जीत है। हर जीत ट्रॉफी जैसी दिखनी ज़रूरी तो नहीं ना, राइट? तो दोस्तों, बात बस इतनी सी है। नागपंचमी हमें सिखाती है कि जिस चीज़ से हम डरते हैं, अगर हम उसे समझ लें तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। बस वैसे ही ये कंपैरिजन का डर भी, अगर आप उसे पहचान ले, नाम दे दें, इसकी बात कर ले, तो ये आप पर हावी कभी नहीं होगी। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी, आपकी टाइमलाइन बस आप ही की है। किसी और के साथ इसे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जहाँ है वहीं से आगे बढ़ना ही काफ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी राह खुद बनाइए और किसी से कंपेयर मत कीजिए। मिलते हैं फिर अगली बार इसी वक्त इसी जगह युववाणी पर। नमस्कार।

वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन पा रहे हैं। अब समय है फिल्म संगीत का।

0: 1942 अ लव स्टोरी। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ थी कुमार सानू की।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: और अब अगला गीत सुनिए, अखियों के झरोखों से फिल्म से, आवाज़ हेमलता की है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: श्रोताओं, आपने सुना हेमलता और उससे पहले मोहम्मद रफ़ी को आप तो ऐसे ना थे फिल्म में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है।
1: खुले पैसों की समस्या से छुटकारा।
2: भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के संयुक्त तत्वाधान में मेगा सिक्का वितरण व नोट विनिमय मेला दिनांक 19 अगस्त 2024 को SBI की सभी शाखाओं में आयोजित किया जा रहा है। सुविधा का लाभ लेने के लिए निकटतम SBI शाखा या सिक्का वितरण केंद्र पर संपर्क करें।
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रमों की रूपरेखा में सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आज शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम भारती, जिसमें आप सुनेंगे बातचीत कृषि प्रशिक्षण के बारे में। ये बातचीत होगी देवीलाल कुमावत से। कार्यक्रम में लोकगीत सुनवाए जाएंगे, साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों के लिए ही शाम 7:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि में वृद्धि नियामकों का प्रयोग, इस विषय पर डॉक्टर शशिकांत गोयल से की गई बातचीत। इस कार्यक्रम में भी आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे।

श्रोताओं, आज सोमवार है और हमारा साप्ताहिक खेल जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। इस कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर अरुंधति चौधरी से बातचीत। ये बातचीत हमारे आकाशवाणी के कोटा केंद्र का अंशदान होगा और खेल जगत कार्यक्रम में आप एक अन्य बातचीत सुनेंगे पैराशूटर राहुल कुमार शर्मा से। इनसे बातचीत करेंगे हमारे साथी जितेंद्र वर्मा। ये कार्यक्रम खेल जगत आप सुनेंगे रात 10 बजे।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात 10:30 पर, रात 8:00, शाम 6:05 पर। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जिसमें रात 8:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर आप पब्लिक स्पीक प्रोग्राम सुनेंगे। इन्हें हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुँच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस प्रोग्राम का पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में सुनिए। फिल्म का नाम है अनुराग।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: श्रोताओं, आपने इससे पहले गीत सुना अपना देश फिल्म से। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। और अब अगला गीत अनोखी अदा फिल्म से सुनिए, आवाज़ एक बार फिर किशोर कुमार की।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहू की आवाज़ फिल्म का ये गीत।

0: आप सुन रहे थे बहू की आवाज़ फिल्म का ये दो गाना, और इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी प्रसारित होगी, और फिर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। पहले सुनिए ये संदेश।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारे नाम।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
5: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी, आपके नाम?
8: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
7: क्या
8: आरबीआई कहता है?
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बारा में कहा, राजस्थान में वीबीजी रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के लिए 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,000 पक्के मकान बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज बारा में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे।
1: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत आरकेबी बाई और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340,59,00,000 रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उन्नत योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 340,59,00,000 रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। श्री चौहान ने ये भी कहा कि राजस्थान में 16,00,000 लखपति दीदी बन चुकी है, अब 32,00,000 और बनाई जाएंगी। मिलावटी कीटनाशक बनाने वालों पर लगाम लगाने के लिए अगले संसद सत्र में नया कानून लाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस साल वीबीजी रामजी के तहत गांवों में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
1: अब ये विकसित भारत जी रामजी योजना आई है और उस योजना में राजस्थान के भाइयों और बहनों, इस साल मार्च तक 7 महीने के लिए हमने 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में।
0: श्री चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बारा और झालावाड़ जिले को 1,258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं प्रदेश के 5,00,000 पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए की राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। साथ ही सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण और बारा में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। इसके साथ ही 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में वर्गवार आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। इसमें SC वर्ग को 20, ST को 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 30 वार्ड मिले हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 31, OBC महिलाओं को 10, SC महिलाओं को 7 और ST महिलाओं को 2 वार्ड मिले हैं। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, डीग, अलवर, नागौर, फलौदी, करौली, भीलवाड़ा और पाली सहित अन्य जिलों में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही अब संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज का नैतिक उत्तरदायित्व है। श्री बिरला आज कोटा में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को समाज के विकास का मुख्य आधार बताया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं पूरी आज़ादी के साथ आगे बढ़ सकें, इसके लिए सभी को मिलकर सुरक्षित

0: वातावरण तैयार करना होगा।
1: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहां महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करें। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक और शिक्षक की अनुमति लेकर मीडिया विद्यार्थियों से बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य की अनुमति के बिना स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को लेकर ये आदेश जारी किया गया है।
2: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं, फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय संस्था प्रमुख है उसकी। और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। वे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है। उन्होंने भरोसा जताया कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार बैंकिंग क्षेत्र को और गति देने में सक्षम होगी। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक घोषणा की। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीएल संतोष पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पोस्ट में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि एक गोदाम से करीब 4 लाख से ज़्यादा टैबलेट और नशीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के सप्लाई नेटवर्क की जाँच की जा रही है।
3: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी जिसमें करीब 4 लाख से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो 2 गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। इतने भी लोग शामिल हैं अनुसंधान में, उन तक हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
0: और अब मौसम। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान

0: के जोधपुर संभाग में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है, किंतु बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 19 से 21 अगस्त के दौरान मॉनसूनी गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने के आसार हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा और डीग सहित 8 जिलों में कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 7 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है, 20 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 39 लबालब हैं, वहीं 446 आंशिक रूप से भरे हुए हैं। प्रदेश भर में सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार पर आस्थामय माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्ति की भीड़ उमड़ी और जलाभिषेक किया गया, साथ ही भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले के घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अमरेश्वर और सोलेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाड़मेर के चौहटन स्थित कपालेश्वर मंदिर और जसदेर स्थित शिव शक्ति धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। उधर सलुम्बर में आज 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू के BDK अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहने और मिलावटी चीज़ों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को बिना पर्ची के मिलने वाली OTC दवाइयों की सैंपलिंग को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाइयों की नियमित जांच कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 में कहा, राजस्थान में VBG रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डो के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। जोधपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उम्मीद राजकीय स्टेडियम में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। RAC प्रथम मंडोर रोड ने मार्च पास्ट प्रतियोगिता जीती। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 77 प्रतिभाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन किया और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत और सिल्वर जुबली समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि ऐसा खुला मंच होना चाहिए जहां हर नागरिक को न्याय और सुनवाई मिल सके। समारोह में UG, PG और PhD के 176 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 24 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने युवा न्यायविदों से न्याय व्यवस्था को सुलभ और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं की शुरुआत हुई। पहली उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट और स्वागत किट देकर रवाना किया। यात्रियों का राजस्थानी परंपरा, पुष्पगुच्छ, बैंड और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया। श्री शेखावत ने कहा कि 12 वर्षों के प्रयासों से एयरपोर्ट आधुनिकीकरण का काम पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2014 की तुलना में यात्रियों और विमान परिचालन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी जी

0: आई टैग मिल गया है। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया। करीब 200 वर्ष पुराने मोजड़ी उद्योग का घरेलू कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए और निर्यात करीब 10 करोड़ रुपए है। जीआई टैग से निर्यात और कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इससे कारीगरों को बेहतर कीमत, फर्जी उत्पादों पर रोक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में मदद मिलेगी। ट्रेनों में बेड रोल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जोधपुर की लॉन्ड्री में लागू व्यवस्था के तहत धुलाई के बाद AI कैमरे, बेडशीट, पिलो कवर और अन्य लिनन की गुणवत्ता जांचेंगे। दाग या खराब गुणवत्ता वाला लिनन अलग होगा। बेडशीट का डिजिटल उपयोग और धुलाई रिकॉर्ड भी तैयार होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने हाल ही में ट्रेन समय पालन में भारतीय रेलवे के सभी मंडलों में पहला स्थान हासिल किया। मंडल ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% और समग्र रूप से 99.07% समय पालन दर्ज किया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इसे टीम वर्क, ट्रेन प्रबंधन और परिचालन दक्षता का परिणाम बताया। उपलब्धि में परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल, दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने अचानक होने वाली घटनाओं के दौरान मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया से जुड़े विशेष नेटवर्क और ब्रेन वेव्स की पहचान की है। शोध से पता चला कि मस्तिष्क जरूरी संकेतों को गैर जरूरी सूचनाओं से अलग कर तत्काल प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। अध्ययन के निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहायक तकनीकों में भी उपयोगी होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 9 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित प्रयोगशाला में 6 आधुनिक मशीनों से आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांची जाएगी। इनमें एलोपैथिक दवाओं की मिलावट और सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। शुरुआत में किडनी, लिवर, हड्डियों और पाचन तंत्र से संबंधित दवाओं की जाँच होगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मई कहो राजस्थान में VBG रामजीरा तहत ई साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। प्रदेश में 309 निकायों रा वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जारी समिति बनावेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का में चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी, आवता 4-5 दिन में उगनी और उत्तराद हल्का में छिटपुट बिरखा रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रातेत 3,473 करोड़ रुपया रा खर्चों 2,89,000 पक्का मकान बनावन रो ऐलान की नो है। वे आज 12 मई ओ ऐलान की नो
2: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत RKB और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं।
1: श्री चौहान कहो कि राजस्थान में 16 लाख लखपति दीदियां बन चुकी है और 32 लाख और बनाई जावेला। वे कहो कि कीड़ा मारण री मिलावटी दवाइयां बनावन वाला माथे लगाम लगावन सारू संसद रा आवता सत्र माए नुओ बिल लायो जावेला। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि राजस्थान रा गांवा माए ई साल VBG

0: आज 12 और झालावाड़ जिला ने विकास राव 1258 करोड़ रुपया खर्च वाला 98 कामारी सौगात दिनी व राज्य 5 लाख पशुपालका रा खाता में 280 करोड़ रुपया रकम ये भेजी। इस आगे सखी योजना रा तहत स्कूटी दीरी जी और 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट जनता ने सौंपीचियो। प्रदेश रा 309 स्थानीय निकायों में वार्डों रा आरक्षण री लॉटरी आज निकाली जी। इस आगे 10 नगर निगम 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में वर्गवार आरक्षण री तस्वीर साफ की है। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्डों सारू जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा री मौजूदगी में लॉटरी निकाली जी। इनमें अनुसूचित जाति तबका सारू 20, अनुसूचित जनजाति तबका सारू 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सारू 30 वार्ड आरक्षित करी चिया है। सामान्य वर्ग री महिलावां सारू 31, अन्य पिछड़ा वर्ग री महिलावां सारू 10, अनुसूचित जाति री महिलावां सारू 7 और अनुसूचित जनजाति री महिलावां सारू 2 वार्ड राखी चिया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, अजमेर, चूरू, बाड़मेर, डीग, अलवर, फलौदी, भीलवाड़ा और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला में जिला कलेक्टर री मौजूदगी में लॉटरी निकाली जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि महिलावां और टाबरियां री हिफाजत तय करनो समाज री नैतिक जिम्मेदारी है। वे आज कोटा में राखी जिया राज्य स्तर रा महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र में बोल रहा है। श्री बिरला महिलावां ने मजबूत बनावण ने समाज रा विकास री बुनियाद बतायो। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि महिलावां और टाबरियां रो पूरी आजादी आगे बढ़वो तय करण सारू सगला ने मिलर सुरक्षित वातावरण तैयार करनो वेला।
1: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहां महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी कर रही है। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अखबार, टीवी और रेडियो वाला रे दाखिल वेवण माथे कोई रोक नहीं लगाई ची है। वह कहो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कानून जारी करी जिया हुक्म ने गलत तरीकों बतायो जा रो है। शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों रमायता और अध्यापकों की मंजूरी लेर मीडिया विद्यार्थियों सागे बातचीत कर सके है। वह कहो कि शाला प्रधान री मंजूरी बगैर स्कूल में बाहर रा लोग दाखिल नहीं वह सकेला।
2: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं फोटो लेना, कोई भी कार से माइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्था में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय संस्था प्रमुख है उसकी। और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं, उनका अधिकारों को हनन न हो, बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसकी लिखित अनुमति लेगी।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्र सरकार विकसित भारत बनावण रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे विचार बाबत बेगी आला दर्जारी समिति बनावेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में आ जानकारी दीनी। वे सरकारी बैंकों रा 2 दिन रा सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र रे मौके बोल रही है। वित्त मंत्री कहो कि भारत रा बैंक मौजूदा दौर में मजबूत हालत में है। राज्य री पहली वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई ची है, जबकि राज्यसभा सदस्य डॉ. सतीश पूनिया ने पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव बनाई चिया है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी री नुवी राष्ट्रीय टीम रो आधिकारिक ऐलान कीनो। उदयपुर रा सांसद मन्ना लाल रावत ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा रा अध्यक्ष

0: राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी रिची है। इस आगे राजेश मंगल ने राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाई चिया है। पहली वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय महामंत्री री जिम्मेदारी सौंपी ची है, जबकि बी एल संतोष पार्टी रा संगठन महामंत्री बनया रह वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी रा नुआ ओहदादारा ने सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बधाई और शुभकामनावां दीनी है। हनुमानगढ़ में पुलिस नशीली और रोक लगायोड़ी दवाइयां री मोटी खेप बरामद कीनी है। एसपी बी आदित्य बतायो कि एक गोदाम 4,32,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त करी चिया। ई मामला में 3 जना ने गिरफ्तार करी चिया है, जहां पूछताछ रे जरिए आगे री जांच करी जा रही है।
1: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी, जिसमें करीब 4,00,000 से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो 2 गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। इतने भी लोग शामिल हैं अनुसंधान में, उन तक हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
0: अरब मौसम। राज्य में चौमासा री बिरखा फिलहाल कम पड़ की है, हालांकि कच्छे कच्छे हल्क्यू मझला दर्जा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 4-5 दिन प्रदेश रा उगनी और उत्तराद उगनी हल्का में छांटा छिड़कारा आसार है। राज्य रा आतुनी हल्का रा जोधपुर संभाग में चौमासा री बिरखा कम पड़ की है, हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का में 19-21 अगस्त बीच बिरखा में ओजू तेजी आवण री संभावना है। ये बीच अलवर भरतपुर दौसा और डीग समेत 8 जिला में काल बारिश रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जल संसाधन विभाग ने मुजब प्रदेश में हाल तय 7 जिला में चोखो में बरसियो है, जबकि 20 जिला में सामान्य और 14 जिला में सामान्य कम बिरखा भी है। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा मायू 39 पूरा भर गया है, जबकि 446 थोड़ा घना भरिया है। प्रदेश में सावन महीना रा तीजा सोमवार ने आज आस्था सागे नाग पंचमी रो त्यौहार ही मनायो जा रियो है। ई मौके शिवजी रा मिंद्रा माए मोटी तादाद माए भगत पूग्या और भगवान रे जल और बील रा पत्ता चढ़ाया। सवाई माधोपुर जिला रा घुष्मेश्वर महादेव, अरणेश्वर, अमरेश्वर और सोलेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए जातरुआ रो तांतो लाग्योड़ो है। बाड़मेर जिला माए चौहटन रा कपालेश्वर मिंदर और जसदेर रा शिव शक्ति धाम मा थई हर हर महादेव रा जयकारा गूंज रिया है। सलूम्बर माए आज 3 दिन री कावड़ यात्रा पूरी भी। सुख्या सोमवार रे मौके उदयपुर रा गुलाब बाग माए खास मेलो भरियो। ई बीच झुंझुनू जिला रा उदयपुर वाटी हल्का माए जातरुआ री एक पिकअप बेकाबू फेर पलट जावणु 1 जना री मौत वेगी, जबकि 20 जना जख्मी फेंक्या। घना जख्मी लोगा ने झुंझुनू रा BDK अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मई कहो राजस्थान में VBG रामजी रहते इन साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। प्रदेश में 309 निकायों रा वार्डन रा आरक्षण री लॉटरी निकाली जी। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जा री समिति बनावेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का माए चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी। हिस्सा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: राम भारती सुनवा वाला सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा। और अभिलेषा जी आपने भी घना घना राम राम सा।
1: घनी घनी राम राम अनीता बहन, आपने भी कार्यक्रम सुन रहा सगला किसान साथिया ने भी मारी और सुने भरी राम राम सा। तो देखो अनीता बहन, राम राम तो आपा कर लिया, पर अब जब आप अपना किसान बहन भाई के लिए कार्यक्रम में बात करा छा, तो देखो फसला है वहाँ की सार संभाल है, सिंचाई है, बीज है, उर्वरक है, बहुत सारा ऐसा काम छे जो बाकी खेती बाड़ी के तानी बहुत ही महत्वपूर्ण होवे छे
0: जी।
1: पर वहाँ सब काम में एक काम और महत्वपूर्ण छे कि भाई अपना किसान खेती बाड़ी करे छे, घणो पैसो लागे छे। और देखो कई किसान साथी तो ऐसा छे कि सामर्थ्य छे, पर कई किसान साथी ऐसा छे कि जो अपनी खेती बाड़ी में पूरो पीसो कौन लगा सके
0: जी।
1: वाने फसल उगाता समय बोता समय कोई को मुंडो देखना पड़े।
0: बिल्कुल।
1: तो देखो साहब, बहुत सारा ऐसा काम होवे छे कि जहाँ से यदि आप ध्यान लगा वहाँ में सब समझ राख सूझबूझ के साथ यदि करा तो अपनी जो खेती बाड़ी है वो कम लागत में ही आपने ज्यादा फल दे ली।
0: बिल्कुल छा, आप बिल्कुल सही कह रहे छो। और आपको मतलब यही छे भाई, खेती में अनावश्यक खर्च न अपना किसान भाई कम किया कर सके
1: जी
0: छे। भाई किसान के सामने केवल उत्पादन बढ़ावा की ही चुनौती कौन है, बल्कि जो आप बढ़ी हुई लागत छे वह भी एक बड़ी चिंता छे। बीज खाद कीटनाशक सिंचाई डीजल मजदूरी और कृषि मशीनरी पर भी बहुत बड़ो लगातार खर्च आज का जमाना में देखो बढ़तो ही जा रहे छे। इसलिए किसाना को जिया आप बता रहे हो कि भाई बहुत ही समझदारी से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जी, जिससे कि उनको खर्चों भी कम है वह और उनकी लागत भी बढ़े और उत्पादन भी चौका होवे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होवे
1: जी सर।
0: तो इसके लिए अपना किसान भाई बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कर सके चाहे जो अनावश्यक न कम कर खर्च न कम कर और उनकी लागत बढ़ा सके छे। जी मिट्टी की जांच करवा वो जरूरी छे भाई, बिना जांच के बार बार खाद और उर्वरक डालवा से खर्च बढ़े छे। मिट्टी में जी पोषक तत्व की जरूरत होवे उनके हिसाब से ही अपना किसान भाई खाद को प्रयोग करवा से लगातार लागत छे ने उन्हें नियंत्रित कर सके छे।
1: बिल्कुल सर।
0: और दूसरी बात, प्रमाणित बीज ले सके छे। सस्तो बीज खरीदवो हमेशा ही बजट कौन रहे बल्कि बीज की गुणवत्ता खराब और उत्पादन कम हो जावे
1: जी। और इसके साथ साथ देखो जब आप बात कर रहा खाद की, तो यदि जैविक खाद अपना किसान साथी काम में लेवे चे तो देखो उनसे भी अपनी फसल एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अपने लिए उपयोगी रहेली और अपनी जो लागत है वह भी कमावली
0: जी।
1: जया की आप देखा जा कि यदि जैविक खाद काम में लेवा छा वही जगह यदि आपने रासायनिक उर्वरक लेवे चे वहाँ पे यदि निर्भरता घटार जी अपने गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है या फिर हरी खाद को प्रयोग करा तो देखो यो अपने दोहरो फायदो देवेली।
0: और देखो साहब, पानी को और सिंचाई को सही प्रबंधन भी बहुत जरूरी छे। आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई बिजली और डीजल को खर्च बढ़ा देव छे, फसल ने भी नुकसान हो छे। तो जंड तक हो सके ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी जल बचत तकनीका ने काम में ले सके छे।
1: जी और सिंचाई की यदि आप बात करा तो बाढ़ विधि से यदि अपना किसान साथी सिंचाई करे तो उसे देखो पानी भी बचे, बिजली भी बचे और अपने डीजल भी बचे
0: जी,
1: तो यहाँ की बर्बादी कम होवे। और इनकी जगह यदि ड्रिप या फव्वारा सिंचाई अपनावे तो देखो अपनी फसल भी बढ़िया खेता में लहलाएली और इनसे अपनी जो किसान की जो लागत है वह भी कम होवेली
0: जी। और देखो सर, कीटनाशका और दवाया पर हुबा वालो खर्च भी अनावश्यक हो सके छे, उन भी अपना किसान भाई एक हद तक कम कर सके छे
1: जी।
0: खेत में कीट अगर कोई दिखाई देवे तो दवा डालबा की बजाय पहले उनकी पहचान करे, वास्तव में कशो कीट छे या बीमारी छे और उनको काई उपचार जरूरी छे। सही समय पर सही दवाई और सही मात्रा में इस्तेमाल करवा से खर्च भी कम होलो और फसल भी सुरक्षित रहेली। इसके अलावा मजदूरी और मशीनरी को खर्च भी कम करवा के लिए किसान सामूहिक रूप से कृषि यंत्र छे वह किराया पर ले सके छे। छोटा किसान मिलर मशीना को काम में लेर उपयोग कर सके छे तो

0: किसान ने अलग से महंगी मशीन खरीदबा की जरूरत कौन पड़े ली। ई तरीका से खेत की योजना बना और काम कर वो भी बचत को एक बहुत महत्वपूर्ण तरीको छे।
1: जी तो सा देखो ये छोटी छोटी बात छे पर आपने घना काम की छे कि यदि आप याने काम में लेवा तो आपनी खेती बाड़ी भी बढ़िया होली और आपनी जो लागत है वह भी कम लगेली।
0: जी तो सा अब जानकारी तो होगी, मनोरंजन की ओर चला
1: तो सुन लेवा एक बढ़िया सो गीत।
0: जी

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं, क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: जी सा, देखो सावन को मौसम चल रहे छे और चारों मेर प्रकृति और फूल फूल ही खिल रहे छे चारों मेर। ही कैसे सुहावनो मौसम
3: और देखो सा, जो ये हरियाली दिखे है ना नी तमे अपन ने, इन्हें देखकर कोई भी को कि जो को मन अइया न रहे कि भी प्रफुल्लित हुए बिना रह जावे। तो देखो सा, आपा ई हरियाली को आनंद भी ले लिया, गजरो भी गूंथ लिया है ना, और इनके साथ साथ आपा सावन की फुहारा में भी भीगता भीगता आप कार्यक्रम ने आगे ले चला। तो सा काई काई व्यवस्था कर रखी आप जानकारी की?
2: जी सा, आप देखो सा देवीलाल कुमावा जी आगा छे कार्यक्रम,
3: तो दिराओ सा जानकारी।
2: श्रोतावा, कार्यक्रम में आज अपनी साथ छे देवीलाल कुमावत, सहायक निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर में आप विराजे छे। देवीलाल जी, आपको कार्यक्रम में खूब खूब स्वागत छे। राम राम सा।
4: राम राम सा।
2: ये आज आपने जानकारी देवला कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का बारे में। तो सर देवीलाल जी, सबसे पहले आप यही बात करा भाई, कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम छे काई?
4: जो सभी प्रकार की जो नई कृषि तकनीकी जानकारी होती है या नई कृषि जो सूचना होती है, वो विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों में जैसे प्रशिक्षण है, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में जैसे खेतीरी बाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, दूरदर्शन, किसान कॉल सेंटर या मोबाइल के माध्यम से, इसके अतिरिक्त जैसे कृषक भ्रमण है, कृषक मेले हैं, उनसे या प्रदर्शनियों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करवाई जाती है। इनमें से जो कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी को कृषकों तक पहुंचने का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है।
2: जी सर, तो कसी कसी विभागीय योजनाओं के तहत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जावे छे?
4: राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है जिसे अपन NFSM कहते हैं, उसके अंतर्गत फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा जो राज्य योजना है उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर एक दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भी जो विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके भी प्रशिक्षण का आयोजन है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 2 दिवसीय संस्थागत कृषक और महिला कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन भी किया जाता है।
2: जी सर, देवीलाल जी, जी अभी आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिन्हें NFSM का नाम से भी जाना छे, तो यो कार्यक्रम का अंतर्गत फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण काई छे, इसके बारे में जानकारी दो सर।
4: देखो, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके अंतर्गत अन्न वाली जो फसलें हैं वो और जो दाल वाली फसलें हैं वो, उनका क्षेत्रफल, उत्पादन, उत्पादकता एवं इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु जो फसल प्रदर्शन जो आयोजित किए जाते हैं, तो ये फसल प्रदर्शन है जो फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन होते हैं, और इन प्रदर्शनों के ऊपर जो प्रशिक्षण आयोजन किए जाते हैं कृषकों के, वो प्रशिक्षण है जो फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण कहलाते हैं। तो इन प्रदर्शनों के ऊपर जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं वो एक प्रशिक्षण है, उसके 4 सत्र होते हैं। उसमें जो पहला सत्र होता है वो खरीफ से पहले होता है, दूसरा सत्र जो होता है वो खरीफ के मध्य में होता है, तीसरा सत्र रबी फसल से पहले होता है, और चौथा सत्र है जो रबी फसल के बीच में होता है। तो ये तो एक सत्र है जो इसके जो 4 सत्र होते हैं पूरे प्रशिक्षण के, उसमें से ये अलग अलग टाइम पे काश्तकारों की सुविधाओं के अनुसार और सही समय पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये प्रशिक्षण जो आयोजित किए जाते हैं वो सहायक निदेशक उद्यान उप जिला के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, और वो इन प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए एक सहायक कृषि अधिकारी स्तर का एक अधिकारी जो है नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं, और इन प्रशिक्षणों में लगभग 30 काश्तकार है वो भाग लेते हैं, और वो जो 30 काश्तकार होते हैं वो वही काश्तकार होते हैं जिनके यहाँ पे प्रदर्शन लगाया गया है, और उनमें से भी जो प्राथमिकता दी जाती है उसमें जैसे लघु काश्तकार हैं, सीमांत काश्तकार हैं, और जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, इसके अलावा भी जो स्वयं सहायता समूह है या जो महिला कृषक है, तो उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है।
2: एक प्रशिक्षण जो प्राप्त करवो चाहो तो उनके लिए कहीं योग्यता भी हो वो जरूरी है?
4: इसमें योग्यता यही है जैसे मैंने अभी बताया कि जिन काश्तकारों के यहाँ पे प्रदर्शन

0: लगाया है।
1: अच्छा।
0: तो वो चयनित काश्तकार हैं
1: जी।
0: और उनके अलावा भी जो दूसरे काश्तकार जो रुचि रखते हैं तो वो काश्तकार है इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन एक जो प्रशिक्षण होगा उसमें 30 काश्तकार ही भाग लेंगे और वो 30 काश्तकार है वो सेम ही 30 काश्तकार चारों सत्रों के अंदर भाग लेंगे।
1: जी सर, तो जी कि आप बताया कि भाई 30 जो निश्चित रहो वन ही या मैं प्रशिक्षण दियो जाओ छे, तो कहीं दूसरा विभाग का प्रतिनिधि जन प्रतिनिधियां या दूसरी महिलाओं कार्यकर्ता ने भी बुलाया जाओ छे?
0: बिल्कुल, जे इस जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं तो इन प्रशिक्षणों में जो क्षेत्र के जो कृषि अधिकारी होते हैं, सहायक कृषि अधिकारी होते हैं और कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, इन तीनों के समन्वय से ही ये प्रशिक्षण है, सम्मिलित प्रयासों से ही आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। इसमें जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग के पंचायत समिति स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय जो ग्राम पंचायत होती है उसके जो महिला कार्यकर्ता होते हैं उनको भी बुलाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रगतिशील काश्तकार है जिन्होंने खेती में कोई विशेष कार्य किया है तो उन काश्तकारों को भी अतिथि व्याख्याता के रूप में बुलाया जाता है और जिससे कि उनके अनुभव का लाभ जो प्रदर्शन लगाने वाले जो काश्तकार हैं उन भाइयों को भी मिल सके।
1: जी सर, जो भी भाई या जो भी बहन प्रशिक्षण लेवे छे, किसान हो या किसान महिला हो या किसान साथी हो, तो जो प्रशिक्षण लेवे छे वहाँ की रुचि और बढ़ावा के लिए और ज्यादा सीख बाकी क्षमता होवे उनके लिए कहीं करो जाओ।
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि काश्तकार भाई तभी आएंगे जब उस प्रशिक्षण में उनकी रुचि हो या उनकी रुचि का कोई विषय है वो, तो जो प्रशिक्षण है वो जब उसको टाइम टेबल उसका सेट करते हैं तो उस समय उस प्रशिक्षण के जो जानकारी है वो सभी काश्तकारों को दी जाती है और जिस समय जानकारी दी जाती है उस समय ये भी बताया जाता है कि जैसे ही ये प्रशिक्षण होगा तो प्रशिक्षण के उपरांत है उनका ज्ञानार्जन टेस्ट है वो लिया जाएगा, यानी एक परीक्षा आयोजित की जाती है छोटी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद में इनके ज्ञानार्जन जो टेस्ट लिया जाता है उसके रिजल्ट के आधार के ऊपर जो काश्तकार विजेता होता है उन काश्तकारों को इनाम या पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ये सारी जानकारी प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही काश्तकार भाइयों को दी जाती है जिससे कि काश्तकारों की इस प्रशिक्षण में रुचि बनी रहे और वो काश्तकार है जो ध्यान लगा के और जो प्रशिक्षण है उसको मतलब प्रशिक्षण में अच्छी चीजें ग्रहण करे और अपनी समस्याओं का समाधान भी करते रहे।
1: बिल्कुल सही बात है, देखो काई बात में भी रुचि होली ना और उमे इनाम भी अगर मिल रहे ना तो और ज्यादा रुचि ये जावे छे और सीख बाकी क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जावे छे। तो ई तरीका से काश्तकार भाई जब प्रशिक्षण लेवे छे, प्रशिक्षण के दौरान इतनी सारी चोखी चोखी बात होवे, उत्साह वर्धन होवे ना, तो हर कोई आगे बढ़े छे।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ प्रदर्शना में कितनी राशि को प्रावधान करे गए छे?
0: जो फसल पद्धति आधारित जो प्रशिक्षण होते हैं तो इन एक प्रशिक्षण के लिए 14,000 रुपए की राशि का प्रावधान है और इसमें चूंकि 4 सत्र होते हैं इसलिए प्प्रत्येक जो सत्र होता है उसमें 3,500 रुपए का प्रावधान होता है। इसमें मुख्यतया जो काश्तकार भाई जो प्रशिक्षण में भाग लेते हैं उनके लिए चाय नाश्ते का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा जो काश्तकार भाई थोड़ा दूर से आते हैं, जैसे 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं, तो उन काश्तकारों के लिए किराए की भी व्यवस्था इसके अंदर होती है और जो अतिथि व्याख्याता अपन बाहर से बुलाते हैं चाहे तो वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से बुलाएं या कृषि अनुसंधान केंद्र से बुलाएं या किसी दूसरे संबद्ध विभाग से बुलाएं, तो उन काश्तकारों के लिए उन अतिथि व्याख्याताओं के लिए मानदेय भत्ता भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा स्टेशनरी वगैरह और जो प्रशिक्षण सामग्री और पुरस्कार की राशि भी इसमें प्रावधान रखा जाता है।
1: जी सर, तो कृषि प्रशिक्षण जो दिए जावे छे तो उनके लिए विषय विशेषज्ञ कोड़ा से बुलाया जावे छे?
0: जैसा मैंने अभी बताया कृषि विज्ञान केंद्र है पास के, या कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि महाविद्यालय है, या कृषि विश्वविद्यालय है, या दूसरे जो संबद्ध जो विभाग हैं उन विभागों से विषय विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित किया जाता है जो किसानों की सभी फसलों एवं अन्य संबंधित समस्याओं का समाधान है वो करते हैं।
1: जी सर, तो जो भी अपना काश्तकार भाई प्रशिक्षण लेवे छे उनका बाद में जो रिपोर्ट में सम्मिलित करया जावा वाला मुख्य बिंदु छे ना वह काई काई हो छे जो कि आगे के प्रशिक्षण में भी और रोचक और प्रभावी बनावा के लिए और मूल्यांकन करवा में वहाँ के लिए लाभदायक हो?
0: ये जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं तो इन प्रशिक्षणों के उपरांत एक रिपोर्ट है वो आगे भेजी जाती है और उस रिपोर्ट में जो बिंदु शामिल किए जाते हैं उसमें ये है कि जैसे प्रशिक्षण का दिनांक क्या था, प्रशिक्षण स्थल है वो कहाँ था, प्रदर्शन के पास में ही होना चाहिए, इसके अलावा जो भाग लेने वाले जो काश्तकार थे उनकी संख्या कितनी थी और उस प्रशिक्षण के अंदर जो विभागीय जो अधिकारी है वो जो कार्मिक है उनके नाम और पद की जानकारी भी उसमें होनी चाहिए, प्रशिक्षण

0: देने वालों के नाम एवं पद, जिसमें जो विशेषज्ञ बाहर से बुलाए हैं
1: जी
0: उनका नाम एवं पद है वो भी उसमें होना चाहिए। जिस विषय पर प्रशिक्षण दिया गया है वो विषय उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और जैसा अभी अपन बात कर रहे थे कि जो ज्ञानार्जन टेस्ट जो लिया जाता है, तो उस प्रश्न पत्र एवं उसके उत्तर के बारे में भी, उनके उत्तरों के बारे में भी टिप्पणी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जो अपना जो कार्यक्रम था प्रस्तावित, उस पूरे कार्यक्रम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो कृषकों की रुचि है, काश्तकारों ने इसमें कितनी रुचि ली, क्या प्रश्न पूछे, क्या काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज इसके अंदर मतलब सम्मिलित की जाती है। इसके अतिरिक्त भी जो अपने जो प्रशिक्षक जो विशेषज्ञ अपने बुलाए हैं उसके उनके ज्ञान के बारे में भी टिप्पणी है जो होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इस प्रशिक्षण के बारे में जो काश्तकार जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनका फीडबैक क्या है, उनकी रुचि कैसे रही, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, आगे भी ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे या उनकी क्या आवश्यकता है, वो सारी चीजें इसमें अपन सम्मिलित करते हैं।
1: जी सर, देवीलाल जी, जो काश्तकार भाई प्रशिक्षण में कृषका ने जो भी विषय विशेषज्ञ आवच है, तो आपने काश्तकार भाइयों ने कई कई जानकारियां या प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा दी जाओ।
0: देखो, इसमें जो फसल पद्धति आधारित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो अपन ने फसल प्रदर्शन पे जो आयोजित किया है, तो उस फसल प्रदर्शन के बारे में तो पूरी जानकारी दी ही जाएगी, किस प्रकार से अपन फसल की जो क्षेत्रफल है वो उसके उत्पादन और उसका उत्पादकता और उसके गुणवत्ता इसमें वृद्धि कैसे करें, वो सारी चीज तो बताई जाती है। इसके अतिरिक्त जो विभागीय जो योजनाएं जो चल रही है विभाग द्वारा, जो काश्तकारों के फायदे के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाती है, उसमें क्या क्या अनुदान मिलता है वो जानकारी दी जाती है, और इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए, उस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र है जो किस प्रकार से भरा जाता है ऑनलाइन, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो अन्य जो जानकारियां हैं उसमें है जो प्रमाणित बीज है उसका अधिकाधिक उपयोग कैसे करें
1: जी।
0: बीज प्रतिस्थापन दर है उसको कैसे बढ़ाएं, विभिन्न फसलों की जो उन्नत किस्में हैं उनकी जानकारी है, फसल अवशेष है उनका प्रबंधन कैसे करें, जैसे कि फसल की कटाई उपरांत जो काफी सारे जो फसल अवशेष रह जाते हैं, अगर उनका प्रबंधन नहीं करेंगे तो वो दीमक के लिए एक तरह से बना बनाया भोजन होगा, दीमक काफी बढ़ेगी, इसलिए फसल जो अवशेष है उनका प्रबंधन कैसे हो इसकी जानकारी दी जाती है। मृदा परीक्षण के आधार पे खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कैसे करें अपन, वो जानकारी दी जाती है। मृदा परीक्षण के आधार पे खाद एवं उर्वरक की जानकारी के साथ ही जो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है वो कैसे करें उसकी जानकारी है। और इसके अतिरिक्त जैसे जिप्सम का उपयोग, जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो उर्वरक है जैसे यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी, ये जानकारी तो लगभग काश्तकारों को रहती है और ये देते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी आजकल सल्फर जो मुख्य पोषक तत्व है इसकी भी कमी है जो होती है, इसलिए जिप्सम का उपयोग इस कैसे करें और कितना करें इसकी जानकारी दी जाती है। जो अपनी ऊसर भूमि है या क्षारीय भूमि है उसका सुधार कैसे करें इसकी जानकारी भी दी जाती है। फसलों की विभिन्न जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है सिंचाई के लिए, जहां पर सिंचाई करना अति आवश्यक है, वो जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे फव्वारा सिंचाई है, बूंद बूंद सिंचाई है, जैविक खेती है या उन्नत बीज उत्पादन है, इनकी जानकारियां भी काश्तकार भाइयों को विभिन्न सत्रों में उपलब्ध करवाई जाती है।
1: जी, तो जी, या तो आपने काश्तकार भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी होगी कि वहां में कसी कसी जानकारी आपने किसान भाइयों ने दी जाओ छे, तो कहीं महिला किसाना के लिए भी कोई कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित कराया जाओ छे, उनके बारे में बताओ सर।
0: बिल्कुल, जो महिला काश्तकार हैं उनके लिए भी राज्य योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय एक दिवसीय कृषक महिला प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। और ये प्रशिक्षण जो आयोजित किए जाते हैं उनका दायित्व भी सहायक निदेशक उद्यान, जो सहायक निदेशक जो विस्तार है उपजिला, उनके द्वारा किया जाता है। और वो नोडल अधिकारी के रूप में सहायक कृषि अधिकारी को नियुक्त करते हैं और उसमें 30 कृषक महिलाएं जो है वो भाग लेती है, और उनमें भी उनका जो सिलेक्शन का या उनका चयन का जो क्राइटेरिया है वही रहेगा। इसमें यह लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्वयं सहायता जो समूह की जो कृषक महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो प्रशिक्षण है वो ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे प्रशिक्षण है वहां पे आयोजित नहीं किए गए हों, यानी दोहराव नहीं होना चाहिए, हमेशा नई जो महिला कृषक है उन्हीं को ये प्रशिक्षण है वो दिया जाना चाहिए। और इन प्रशिक्षणों के लिए लगभग 3,000 रुपए की राशि है वो उसका प्रावधान, खर्च करने का प्रावधान है वो रखा गया है।
1: जी सर, तो ये महिला कृषक ने प्रशिक्षण देवा और करवाबा का लाभ कहीं छे, वहाँ के बारे में बताओ।
0: देखो, खेती के अंदर 50% से ज्यादा योगदान है जो महिला कृषकों का रहता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: जो पुरुष काश्तकार हैं वो तो मुख्य मुख्य काम करते हैं, इसके अलावा एक बार फसल लगाने के बाद में चाहे तो

0: उसके अंदर खरपतवार निकालने का काम हो, पानी पिलाने का काम हो, या और पशुओं के लिए जो मतलब चारा काटने का काम हो, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो महिलाएं करती है, 50% से ज्यादा काम उनके पास में रहता है। तो जो नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी है वो महिला काश्तकारों को होना अति आवश्यक है। तो इन प्रशिक्षणों के माध्यम से महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाती है, और उनकी कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान विषय विशेषज्ञों के द्वारा करवाया जाता है,
1: जिससे कि वे नई तकनीक से, नई जागरूकता से, नया नया जो कई संसाधन आ रहा है वहां के द्वारा और भी ज्यादा बेहतर तरीका से काम कर सके। कई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी कृषि प्रशिक्षण की व्यवस्था करी गई है।
0: बिल्कुल साहब, ये जो अपने जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, चाहे तो वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में हो, वहाँ पर नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी है वो लगातार विकसित करी जाती है। तो इस कृषि तकनीकी जानकारी को अपने जो कृषि विस्तार कार्य करता है उन तक पहुंचाने के लिए जो अपना स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करके और उनके पास में ये कृषि तकनीकी जानकारी पहुंचाते हैं
1: जी।
0: तो इन कृषि तकनीकी जानकारी को पहुंचाने के लिए एक तो विभाग के अंदर मंथली टेक्निकल वर्कशॉप होती है, तो उसके माध्यम से पहुंचाते हैं, जर्क मीटिंग होती है उसके माध्यम से पहुंचाते हैं, और इसके अलावा जो प्रति माह जो मासिक क्लस्टर बैठक होती है उसके माध्यम से पहुंचाते हैं। तो जब अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के पास में नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी पहुंच जाती है, तो फिर वो जैसे ही फील्ड में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो काश्तकारों को वो नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी है, चाहे तो वो कृषि प्रशिक्षण के माध्यम से हो, चाहे वो भ्रमण के माध्यम से हो, चाहे कृषि मेलों के माध्यम से हो, चाहे वो कृषि प्रदर्शनों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से हो, वो उन तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार से काश्तकार है नवीनतम कृषि तकनीकी जानकारी है वो प्राप्त करके अपने फसलों की उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है भाई, जब नई नई जानकारी होली, नई तकनीका के बारे में जाना ला और नई पद्धति से अगर आपा खेती किसानी करा ला ने, तो आपने जितनी मेहनत आपा करा चाहे उस दुगुनो मुनाफो आपने जरूर मिले लो। और ये सब चीजा आपने काश्तकार भाइयों के लिए जान वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपा दिन और रात अपना खेती किसानी में लगे रहना चाह, तो जितनी मेहनत आपा करा उतनो मुनाफो आपने मिलनो भी चाहिए। देवीलाल कुमावत, सहायक निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर में आप विराजे छे। कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का बारे में आपने इतनी बेहतर और उपयोगी जानकारी किसाना तक पहुंचाई, इसके लिए आपको घनो घनो धन्यवाद।
2: तो देखो अनीता मैन, कितनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी अपना देवीलाल जी बताया कि की तरीका से प्रशिक्षण लेर आपा अपनी जो खेती किसानी है भी में अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सका छा
1: जी।
2: तो देखो साहब, प्रशिक्षण की बात तो यहाँ छे कि कहवे छे कि ज्ञान जितो आपा खर्च करा उतनो ही बढ़े चे
1: जी।
2: तो इनलिए आपने या यदि आपने गांव से या अपने आसपास से दो किसान भी यदि कोई प्रशिक्षण लेबा जा रहा चे, तो वह और किसानों ने भी जागरूक करे कि भाई देखो ये तरीका से जो नया नवाचार चे वाके तानी प्रशिक्षण यदि आप ले वाला, तो अपनी जो खेती किसानी है वो आपने अधिक से अधिक मुनाफो देवेली, और अपनी जो लागत लाग रही है बीमे अभी को भी पूरा पूरा फायदा देवेली।
1: और देखो साथ समय समय पर ये ऐसा जो प्रशिक्षण हो बच है वहाँ को लाभ अपने किसान भाइयों ने जरूर लेने लेती रहनी चाहिए जी, क्योंकि समय के साथ साथ नई चीज़ा बदलती रहते हैं, नई नई चीज़ा आती रहते है, तो यहाँ नई चीज़ा की जानकारी है वाली जदी तो अपना किसान भाई और ज़्यादा मुनाफो और बढ़िया काम कर सके चे खेती में
2: जी। तो साथ देखो ये बात के साथ ही कार्यक्रम ग्राम भारती को टेम भी पूरा होते चालू है, तो कार्यक्रम ने देवा आठे ही विराम आज्ञा दो अभिलाषा
1: और अनीता ने
2: चाला और करा
1: राम राम सा।

अभी किसान भाई सुन रहे थे ग्राम भारती कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब किसान भाइयों के लिए ही प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
3: खेतीवाड़ी सुनवा वाला सभी किसान बहन है अनीता की घनी घनी राम राम सा। और अभिलाषा जी आपने भी घना घना राम राम।
4: घनी घनी राम राम अनीता बहन, आपने भी कार्यक्रम सुन रहे सगला किसान साथियों ने भी घनी घनी राम राम सा।
3: अभिलाषा जी।
4: जी सर।
3: देखो सा सावन को महीनो चल रहे, चारों मेर खूब बारिश हरी छे। और देखो सा सावन को महीनो कदे कदे तो सूखो निकल जाओ छे, कदे कम बारिश तो कदे ज्यादा बारिश होगी, पर ई को असर भी अपना खेती किसानी पर पूरो होवे छे
4: सर।
3: क्योंकि देखो अपनी खेती काफी हद तक मौसम पर निर्भर करे छे। कदे बारिश समय पर कौन हो है, तो कदे अचानक ही बहुत ज्यादा बारिश है जाओ छे, तो दोनों ही स्थिति में फसल ने नुकसान हो सके
4: छे। बिल्कुल।
3: किसान भाई के लिए जरूरी छे कि वे बारिश के अनुसार खेती की योजना और खेत को प्रबंधन कर रखनी चाहिए, जिससे कि वहाँ में कम बारिश में भी नुकसान न हो और अगर खेती में ज्यादा बारिश पड़ जावे तो उसे भी नुकसान न है।
4: जी। और अनिता बहन देखो, यदि आप देख रहे हैं कि आप यदि बरसात कम हो रही है तो अपना किसान ने अच्छी फसलें काम में लेनी चाहिए जो कि सूखा रोधी होवे, जिया की बाजरो छे, ज्वार है, मूंग है, और इनके साथ साथ टपका सिंचाई या फिर मल्चिंग अपनानी चाहिए। और अधिक बारिश या जल भराव हुए तो वहां से खेतों से तुरंत पानी निकाल बाके तानी उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए।
3: जी। और देखो साहब, भारी बारिश के बाद खेतों में जार फसल को निरीक्षण करें, जो मिट्टी बहगी चे ऊ जगह मेड़ और मिट्टी दोनों ने साथ से सही करनी चाहिए। साथ ही ज्यादा नमी के कारण होबा वाला रोग और कीटा पर भी नजर रखनी चाहिए।
4: जी।
3: और सा देखो, बारिश से पहले किसान भाई कहीं तैयारी कर सके छे, भाई खेत की मेड़ और जल निकास नाड़ा ने जांच ले, जिससे कि कोई अवरुद्ध कोई रुकावट ना हो। खेत में पानी रोकबा की जरूरत पड़े निकालबा की भी व्यवस्था रखे। मौसम की जानकारी नियमित रूप से लेता रहे।
4: जी।
3: बीज और फसल को चुनाव स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ही करनी चाहिए। भाई अपनी कसी मौसम रहे छे, अपनी जगह पे ज्यादा बारिश हो छे, कम बारिश हो छे, कसी स्थिति रहे छे, उनके हिसाब से ही आपकी फसल को चुनाव करनी चाहिए।
4: अरे देखो नीता बहन, कि अपनी जो खेती किसानी छे वो भी अशु काम छे कि जी में चौकन न रहबा की बहुत जरूरत छे।
3: बिल्कुल,
4: यदि आप थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उनको नुकसान आपने जरूर उठानो पड़े लो।
3: अभिलाषा जी देखो, बारिश अपने हाथ में कौन है, पर बारिश के पानी को प्रबंधन अपने हाथ में छे।
4: जी।
3: कम बारिश में पानी बचाबो और ज्यादा बारिश में पानी निकालबो, दोनों ही किसान की फसल बचावा के लिए महत्वपूर्ण उपाय छे।
4: और देखो सर, जब आप बात कर रहा कि यदि कम बरसात की ही यदि आप बात कर रहा चाह, तो देखो आप बात करी कि भाई कम पानी वाली फसल अपन ने काम में लेनी है। इनके साथ साथ आपने जो मिक्स क्रॉपिंग हो बेचे, यानी कि सह फसल हो बेचे, तो एक साथ आप दो फसल बो सका चाह, ताकि एक का खराब होगा पर दूसरी से आपने सहारो मिल सके।
3: जी।
4: इनके साथ साथ खेत में नमी बनाए रखबा के तानी पलवार या फिर कंटूर खेती आपने करनी चाहिए। नलकूप या बोरवेल के पानी को भी आप कुशल उपयोग कर सका चा।
3: देखो सा, मूल रूप से बात यही चाहिए, भाई किसाना ने मौसम की जानकारी के साथ पहले से ही तैयारी और खेत को उचित प्रबंधन रखना चाहिए, जिससे कि अनियमित बारिश से होबा वाला नुकसान ने काफी हद तक कम करो जा सके।
4: बिल्कुल। तो देखो सा, आप भी यही चाहवा चाह कि अपना जो किसान साथी है वो खेती बाड़ी कर रहे छे, उमें पूरी मेहनत भी लगाओ छे, लागत भी लगाओ छे।
3: जी।
4: तो एक छोटी सी चूक के कारण बाकी जो फसल आ है वे खराब ना हो जावे।
3: तो बस ई चूक से ही अपना किसान भाई ने बचनो छे और हर वक्त चौकन्ना रहनो छे, जिससे कि नुकसान से अपना किसान भाई बच सके। तो सा, अब जानकारी तो ले लिया और अब थोड़ा सा गीत संगीत सुन लिया।
4: बिल्कुल सा।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: देखो सब भाई, गीत संगीत तो सुन लिया और एक ही साथ ही अब कार्यक्रम में अपना डॉक्टर शशिकांत गोयल जी भी आगा छे। तो अभिलाषा जी,
3: जी सा
2: भाई, अब आपकी बारी छे जानकारी दिलावा की।
3: बिल्कुल, तो सा दिलावाना जानकारी तो जाना की कहीं जानकारी दे रहे है।
4: किसान साथियों, कार्यक्रम में जानकारी देवा खातिर अपने साथ हैं डॉक्टर शशिकांत गोयल, सहायक प्राध्यापक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर से। और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रेवेलो कृषि में वृद्धि नियामकों को प्रयोग। तो डॉक्टर साहब, आपको कार्यक्रम में गुण गुण स्वागत, राम राम साहब। तो सर, यहाँ की आप सब बात कर रहे हैं, अपनो विषय ये की कृषि में वृद्धि नियामकों को प्रयोग। तो जो आपने किसान साथी सुन रहा है, माने सबों पहले यूँ ही बताओ की जो वृद्धि नियामक हो चे वे कैवे काइने है।
5: नमस्कार, कार्यक्रम में को सुनने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं, किसानों का प्रमुख उद्देश्य खेती में उत्पादकता व उत्पादन को बढ़ाना है, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके।
3: जी,
5: खेती में खेत की तैयारी से लेकर के उन्नत बीज, उसका बीजोपचार, सही तरीके से खाद, उर्वरक, रोग व कीट नियंत्रण क्रियाओं के अतिरिक्त हम कुछ ऐसे वृद्धि नियामकों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे उत्पादन व उत्पादकता दोनों बढ़ेंगी।
3: जी।
5: और जैसे आप पूछ रहे हैं कि वृद्धि नियामक किसे कहते हैं, तो पौधों में ही कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी स्रावित होने से पौधे की सभी शरीर क्रियात्मक गतिविधियाँ अत्यधिक प्रभावित होती हैं, और इन्हीं कृषि रसायनों को पादप वृद्धि नियामक कहते हैं।
3: जी।
5: और इन्हें कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जा सकता है।
3: जी साहब। तो डॉक्टर साहब, आप यो कहा कि भाई जो प्राकृतिक रूप से पौधा में पाया जाओ चाहे, तो फिर यानी कृत्रिम रूप से प्रयोग क्यों करो जाओ चाहे?
5: आपका प्रश्न वाजिब है। उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि जो है, पौधों की उचित बढ़वार, सही समय पर फूलों व फलों के लगने तथा झड़ने की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास केवल जड़ों द्वारा शोषित खाद्य पदार्थों तथा पत्तियों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त नहीं होता, इसके लिए वृद्धि नियामकों का उचित मात्रा में स्त्रावित होना भी आवश्यक है।
3: जी।
5: जिस प्रकार किसी पोषक तत्व की कमी से रोग या संक्रमण होने पर दवा द्वारा उपचार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पोषक तत्व की कमी या वातावरण के प्रभाव के कारण पौधों में वृद्धि नियामक का कृत्रिम रूप से स्त्रवण में कमी हो जाती है।
3: जी।
5: जिसके कारण पौधों की वृद्धि में रुकावट आना, पत्तियों का गिरना, फूलों का समय पर न लगना, फूलों का झड़ना या फलों का झड़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
3: जी।
5: तथा इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए कृषि में कृत्रिम रूप से वृद्धि नियामकों का प्रयोग किया जाता है।
3: जी साहब। तो साहब, आप अब यो बताओ कि भाई जो विभिन्न प्रकार का वृद्धि नियामक होवे छे वे कौन कौन सा होवे छे?
5: प्रकृति में मुख्य रूप से

0: ये पांच तरह के पादप वृद्धि नियामक पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन व एब्सिसिक अम्ल हैं। इनमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पौधों के कार्यकारी प्रक्रम को उत्तेजित करके बढ़ाता है,
1: जी
0: जबकि जो दो दूसरे इथाइलिन व एब्सिसिक जो अम्ल हैं वो कार्यकारी प्रक्रम को निरोधित करते हैं। जैसे पौधे को छोटा करना हो या मान लो जल्दी पकाना हो, तब हम इन दोनों को काम में लेते हैं। इसके अलावा भी कई नए पादप हार्मोन भी खोजे गए हैं इन पांचों ग्रुप के अलावा भी, जिसमें ब्रेस्टिनोटेरॉइड, जैस्मोनेट, ट्राइकोंटेनॉल, सेलिसिलिक अम्ल, टर्गोरिन, कई तरह के नए नियामक भी हैं।
1: जी सर, तो सर आप जो अलग अलग प्रकार का जो वृद्धि नियामक बताया जो, तो प्रत्येक को कृषि में बागवानी में कई उपयोग अपना किसान साथी कर सके छे।
0: मैंने आपको बताया कि ये पांच तरह के वृद्धि नियामक पाए जाते हैं, तो हम एक एक करके इनकी बात करेंगे।
1: जी
0: तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है प्राकृतिक रूप से तनों व जड़ों के ऊपरी सिरों में पाया जाता है। ये कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, जड़ व तनों का विकास करता है, शीर्षस्थ कलिका जो होती है पौधे की उसका विकास करता है, कलम से शीघ्र जड़ें निकालने हेतु इसको काम में लिया जाता है, फल विकास, बीज रहित फल के लिए भी हम इसे काम में लेते हैं, फलों के गिरने को रोकता है वे पतझड़ को रोकता है
1: जी सर,
0: तथा पुष्पन को प्रेरित करता है। जब हम इसकी ज़्यादा मात्रा काम में लेते हैं तो ये खरपतवारों को भी नष्ट करता है। प्राकृतिक रूप से पौधों में पाया जाने वाला ऑक्सिन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, जिसे हम IAA कहते हैं, जबकि कृत्रिम रूप से तैयार जो ऑक्सिन तैयार किए गए हैं उसमें इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसे IBA कहते हैं, नेप्थलिन एसिटिक एसिड जिसे NAA कहते हैं, 2,4-D 2,4-5-T इंडोल प्रोपेनिक एसिड, ये कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। अब इसमें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी अलग अलग मात्रा किस किस रूप में काम में ली जाती हैं। जैसे IAA 200 ppm, ppm एक सॉल्यूशन का सांद्रता है कि एक लीटर पानी के अंदर हम कितने मिलीग्राम डालें,
1: जी
0: तो
1: सर
0: उसे हम ppm कहते हैं। 200 ppm, 200 मिलीग्राम एक लीटर पानी में डालने पे 200 ppm सॉल्यूशन बनेगा। तो IAA 200 ppm नींबू में कलम से जड़ें निकालने के लिए काम में लेते हैं, अंगूर में भी ये काम में लिया जाता है, पर अंगूर में इसकी मात्रा 4,000 ppm की ली जाती है, जबकि लीची में वही कलम से जड़ें निकालने हैं तो 50 से 100-150 ppm हम काम में लेते हैं।
1: जी
0: जबकि भिंडी के जल्दी बीजा जर्मिनेट हो जाए, बीजा अंकुरण हो जाए, उसके लिए हम केवल 20 ppm के घोल में बीज को उपचारित करते हैं।
1: जी
0: इसी तरह ये 2,4-D 2,4-D 10 ppm में लेते हैं तो नींबू, आम और अंगूर में फल गिरने से रुकते हैं, और जबकि इसे ज़्यादा मात्रा में हम काम में लेते हैं जैसे 1,000 ppm की मात्रा में काम में लेते हैं तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में काम आता है।
1: जी सर,
0: तो 2,4-D का ही अगर हम केवल 2 से 4 ppm का घोल बना करके टमाटर और बैंगन के बीज का उपचार करें तो पुष्पन शीघ्र होता है और फूल जल्दी आते हैं, फल भी जल्दी आते हैं। और 2,4-D का संतरा में जो हम प्रयोग करते हैं तो 16 ppm के घोल से हम यदि उपचारित करें, स्प्रे करें, तो फलों को देरी से पकता है उससे। तो ये जो वृद्धि नियामक हैं इसमें मुख्य बात यही है कि आप इसकी कितनी मात्रा किसकी कब काम में ले रहे हैं। इसी तरह नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA ये कई झाड़ियों के अंदर कलम से जड़े निकालने हैं तो 1,000 से 2,000 ppm का हम घोल काम में लेते हैं, जबकि आम के जो गुच्छा विकार रोग है उसके लिए हम 200 ppm का छिड़काव करते हैं, मिर्च के अंदर 20 ppm NAA का स्प्रे करने से फल बढ़ते हैं व फल झड़ने से रुकते हैं। इसी तरह लौकी तोरई के अंदर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए हम केवल 25 से 100 ppm के लिए इस घोल को काम में लेते हैं।
1: जी सर,
0: ये तो हुई ऑक्सिन की बात। अब हम बात करें जिब्रेलिन की।
1: जी सर,
0: जिब्रेलिन प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों, जड़ों के ऊपरी सिरों व अपरिपक्व बीजों में बनता है। इसका प्रयोग पौधे की लंबाई बढ़ाने और फलों की लंबाई बढ़ाने वे बोनेपन को रोकने और जो बीज सुसुप्तावस्था में रहते हैं उसको तोड़ने, पुष्पन बढ़ाने व अंकुरण बढ़ाने के काम आता है। इसका भी हम कृषि के अंदर जो बहुत अच्छा प्रयोग है पपीता और अंगूर में हम इसे काम में लेते हैं। पपीता के अंदर 100 ppm जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करने से बिना निषेचन के फल तैयार होते हैं जिसमें बीज नहीं होता, और GA का 45 ppm का जब हम अंगूर के काम में लेते हैं, अंगूर या कद्दू वर्गीय फसलों में, तो मादा पुष्पों की संख्या उसमें बढ़ती है। इसी तरह 50 ppm का जब हम बना के मिर्च और आलू में डालते हैं तो आलू की तो सुषुप्तावस्था टूटती है जबकि मिर्च के अंदर पुष्पन में फलन में वृद्धि होती है। ये जिब्रेलिन के बाद हम बात करें साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन ये प्राकृतिक रूप से जड़ों के ऊपरी सिरों पर वे विकासशील बीजों और पौधों के कैम्बियम उत्कों में बनता है।
1: जी,
0: ये कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है, ऊतक संवर्धन हेतु सुषुप्तावस्था को तोड़ने के काम आता है। कई सारे साइटोकाइनिन के जो रसायन हैं वो साइटोकाइनिन जिएटिन, साइटोकाइनिन काइनेटिन,

0: का 600 ppm का सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो कद्दू के अंदर जब हम छिड़कते हैं तो कद्दू में केवल मादा फूल आते हैं, जिससे कद्दू के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है। इथेफोन का ही 500-600 ppm जब केला व सेब को हम पकाने में काम में लेते हैं। और इसी के अंदर एक और आता है साइकोसेल। साइकोसेल 50 ppm मटर की फसल के अंदर यदि हम छिड़कते हैं तो सूखे के प्रति सहनशीलता को बढ़ाता है।
1: जी सर।
0: अंतिम है आपका एफसीसिक अम्ल। एफसीसिक अम्ल ये भी एक प्राकृतिक वृद्धि नियामक है, परिपक्व पत्तियों में मुख्यतः पाया जाता है। ये पादप वृद्धि को रोकता है, बीज अंकुरण को रोकता है, प्रसुप्तावस्था बढ़ाने में कोशिका विभाजन वृद्धि को रोकता है। इसके अंदर मेलिक हाइड्रेजाइड है, जिसे हम आलू और प्याज में 2000 ppm के रूप में काम में लेते हैं। ये आलू प्याज की भंडारण में संग्रहण क्षमता बढ़ाता है, जिससे कि वो वहाँ स्फुटन नहीं होता उनके अंदर और उनका भंडारण सही तरीके से होता है। इसके अलावा अन्य वृद्धि नियामक कई हैं, ट्राइकोंटेनॉल, सैलिसिलिक एसिड, जैस्मोनिक एसिड व ब्रेसिनो स्टेरॉइड।
1: वाह साहब, बहुत बढ़िया, विस्तार से वृद्धि नियामक का बारे में बताया, पर अब आप यहाँ का प्रयोग की विधि भी बताओ सर।
0: पादप वृद्धि नियामक जो भी हैं उनका मुख्य रूप से हम 4 प्रकार से प्रयोग करते हैं, पाउडर के रूप में, द्रव रूप में, लेई के रूप में और वाष्प तथा एरोसोल के रूप में। पाउडर के रूप में सेरेडेक्स पाउडर में मिश्रित करके इसको काम में लेते हैं, जिससे कि कलम वगैरह इसे हम उपचारित करते हैं। द्रव रूप में ppm वे प्रतिशत रसायन घोल बना करके, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ppm का मतलब है जितने ppm का हमें सॉल्यूशन बनाना है
1: जी,
0: उतने मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है। इसमें जिससे क्या होता है 1,000,000वां भाग होता है ppm का मतलब।
1: अच्छा सर।
0: 1 लीटर के अंदर 1,000,000वां भाग, तो मिलीग्राम 1 लीटर का 1,000,000वां भाग होता है। तो
1: देखो, आपने साथ हैं डॉक्टर शशिकांत गोयल जी और ये आपने कितनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी दिया कि जो अपनी खेती बाड़ी है बीमे वृद्धि नियामका को प्रयोग कर आपा की तरीका से फायदो उठा सका जा। तो देखो, ई जानकारी के खातिर तो याने देवा गणो गुणो धन्यवाद और अनिता बहन धन्यवाद कोरो कोरो आपा कौन देवा। तो समझ गया आप भाई मैं कहीं के पूछा,
2: बिल्कुल समझ गया। और देखो सा, गीत संगीत तो सुनाई ला, अपना पावना ना भी सुना ला, पर बीसू पहली सुना ला विज्ञापन।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक, CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

0: हाँ तो किसान साथियों, ये मीठा मीठा गीत के साथ ही कार्यक्रम खेती बाड़ी ने देवा अठे ही विराम चाला और करा राम राम सा।
1: खेती बाड़ी।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का पहला गीत, बदलते रिश्ते फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे बाजार फिल्म की ये गीत रचना। आवाजें थी जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा की।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ गीत सुनिए, बंदिश फिल्म से।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।

0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार और सपना की आवाज में जांबाज फिल्म से।

श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अगला गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। फिल्म का नाम है बगावत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत बगावत फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 8:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। 8:30 पर आप प्रोग्राम सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन। उसके बाद 8:45 पर समाचार संध्या होगी। 9:00 न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर आप उर्दू में समाचार सुनेंगे। उसके बाद 9:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम पब्लिक स्पीक। इन कार्यक्रमों के लिए और प्रसारण के लिए कीजिए बस कुछ पल इंतज़ार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। हम एक बार फिर मौजूद हैं लेकर के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज इस कार्यक्रम में बात की जाएगी BWF विश्व चैंपियनशिप की, जो बैडमिंटन की ये विशाल प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो चुकी है। और आज पहले ही दिन PV सिंधु, आयुष शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद और उनके साथ साथ MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह अपनी पक्की कर ली है अपने मुकाबले जीतते हुए। आज कार्यक्रम में इसके बाद बात होगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने श्रीलंका के खिलाफ गोल में खेले जा रहे दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में अपनी पकड़ कुछ और मजबूत कर ली है मैच पर, और पहली पारी के बाद भारत ने कुल 178 रन की बढ़त अपने हिस्से में हासिल कर ली है। और कार्यक्रम में बात होगी FIH हॉकी विश्व कप की, जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर लेकर के आया, जहां भारत को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोलों से हार का सामना करना पड़ा।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की दुनिया के साथ, जहां BWF विश्व चैंपियनशिप का आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ हो गया। आज पहला दिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद खास नजर आया, जहां भारतीय खिलाड़ी घरेलू समर्थकों के बीच अपने प्रदर्शन में एक शानदार निखार दर्ज करते हुए नजर आए। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स और आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स में अपने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला डबल्स में त्रिशा जौली गायत्री गोपी चंद की जोड़ी और अब से कुछ देर पहले सिमरन सिंह और कविप्रिया सेल्वम की जोड़ी ने दूसरे दौर में जगह बना ली है। इससे पहले दिन की पहली जीत भारत के लिए MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी लेकर के आई, जिसने दूसरे दौर में जगह बनाई। और इस प्रतियोगिता को कवर कर रहे हमारे संवाददाता भानु इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से सीधा। भानु, पहला दिन भारत के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आया, इतना बड़ा आयोजन और उस पे इतनी सारी जीत, सोने पे सुहागा।
1: जी शक्ति, आपने एकदम सही कहा, भारत के लिए आज का पहला दिन विश्व चैंपियनशिप में बहुत ही बेहतरीन रहा। हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा। आज के दिन की जो हाईलाइट आयुष शेट्टी की जीत रही, जहां उन्होंने वर्ल्ड नंबर वन और डिफेंडिंग चैंपियन CUG को 21-14, 13-21 और 21-19 से हरा दिया। वहीं हमारे बाकी खिलाड़ियों के लिए भी जीत उनके लिए बहुत आसान रही, उन्होंने स्ट्रेट गेम्स में सारे अपने गेम्स जीते और आज का दिन जैसा कि आपने कहा बहुत ही अच्छा रहा भारतीय खिलाड़ियों के लिए।
0: जी बिल्कुल, आपने आयुष शेट्टी की जीत का जिक्र किया कि किस तरह विश्व नंबर एक खिलाड़ी को पहले ही दौर में चित किया इन्होंने और काफ़ी हद तक आगे के दौर के लिए अपनी चुनौतियों को काफ़ी सरल कर दिया है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुकाबला, सबसे कठिन जो है ड्रॉ आयुष को मिला था। अब PV सिंधु के मुकाबले के बारे में भी अगर भानु आप हमको बताएं, क्योंकि भारत की स्टार खिलाड़ी हैं, जब भी कोर्ट पर उतरती हैं भारतीय खेल प्रेमियों की नज़रें रहती हैं PV सिंधु पर कि वो किस तरह से अपने आगे की इस टूर्नामेंट को बिल्ड करते हुए नजर आएंगी।
1: जी बिल्कुल शक्ति, आज स्टेडियम का भी कुछ वैसा ही हाल रहा। स्टेडियम में सब लोग आज सिंधु को देखने आए थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनको एक बार भी ऐसे नहीं लगा कि वे मैच से कंट्रोल में बाहर थी। उन्होंने पहला गेम 21-7 से जीता और दूसरा गेम उन्होंने 21-11 से जीता। दोनों मैच में वो कंट्रोल में दिखाई दी, उन्होंने अपने बेहतरीन अटैक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, उनके स्मैशेस बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज थे और ओवरऑल उनका गेम आज बहुत ही अच्छा रहा।
0: जी बिल्कुल, आयरलैंड की सोफिया नोबल पर जो जीत दर्ज की, पूरा कंट्रोल जिसको कहते हैं कंप्लीट कंट्रोल मैच, जहां आपका हर शॉट शायद वहीं जा रहा था जहां पे सिंधु चाहती थी। उन्होंने मैच के बाद अपने अनुभव भी कुछ इसी तरह साझा किए। डबल्स में भी भारत का दिन आज के लिए काफ़ी लकी रहा, भारत की मिक्स डबल्स की एक जोड़ी और पुरुष डबल्स की एक जोड़ी पहले ही बाई पा के अगले दौर में पहुँच चुकी थी, लेकिन जब तक हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं भारतीय महिला डबल्स की दोनों जोड़ियां, जिसमें त्रिशा जौली और गायत्री हैं, साथ ही साथ सिमरन की जोड़ी है जो पहुंच चुकी है अगले दौर में, और पुरुष डबल्स में MR अर्जुन ने भारत की जीत का खाता खोला था हरिहरन के साथ। डबल्स की परफॉर्मेंस पे कुछ कहना चाहेंगे भानु?
1: जी बिल्कुल, डबल्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही और स्ट्रेट गेम्स में जैसा कि आपने बताया त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने पॉला लोपेज और लुसिया रोड्रिगेज की जोड़ी को हराया। पहले गेम में वे थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों में दिखाई दी, लेकिन उन्होंने पहला गेम सिंगल डिजिट में ही खत्म कर दिया और दूसरा गेम उन्होंने 13 पे खत्म किया। और अगर बात करें हमारे पुरुष युगल जोड़ी की, तो उन्होंने पहला गेम बहुत ही आसानी से 21-16 से जीत लिया था। दूसरे गेम में उन्हें चोट, उनकी जो ओपोनेंट प्लेयर थी उनको चोट के कारण विड्रॉ करना पड़ा।
0: जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत भारतीय खिलाड़ियों के लिए जिस तरह का आज का पहला दिन गुजरा, और ये खिलाड़ी इसी लय को बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में शायद भारत को इस प्रतियोगिता के इतिहास का सबसे बेहतरीन एक अनुभव दे के जाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद भानु। और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से इस स्टेडियम में खेलना उनके लिए एक नया अनुभव रहा। PV सिंधु ने कहा कि घरेलू मैदान पे खेलना हमेशा से एक अलग अनुभव जैसा है।
2: Playing first time here, first match here, it was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out it's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but sometimes, you know, when you actually get on the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
0: जी बिल्कुल, अपनी नब्ज पे किस तरह संतुलन रखना है यही सिंधु का अनुभव बताता है। और सिंधु ने अपने पहले मुकाबले को लेकर के स्पोर्ट्स कैन की टीम से क्या कहा ये भी सुनते हैं।
2: Yeah, of course I'm playing with her for the first time.

0: And I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. And I think more than anything, I mean, I was excited to get onto the court happening here in India. So it was really good to, you know, get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. And I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best.
1: और दिन में भारत के लिए पहली जीत दर्ज करने वाले हरिहरन और अर्जुन की जोड़ी ने भी अपने अनुभव साझा किए। अर्जुन ने बताया कि किस तरह मैदान में भारतीय प्रशंसकों का प्रोत्साहन देखने को मिला।
2: First round into the world championship, we didn't actually expect so many people come out and support, but as soon as we entered the main arena, we heard a lot of cheering when our names were announced, and that actually gave us an extra boost and extra energy, definitely helped. I mean, conditions, I feel it's at par with the all other tournaments, be it the last year's world championship, I think he had played, I think, in Paris. I mean, we are at par with the level and the conditions that you're provided, but to play at home is obviously, everybody asks the same question, but again, I feel every athlete would give the same answer because it's an added advantage.
1: जी बिल्कुल, एक शानदार एडवांटेज कह सकते हैं। और उनके जोड़ीदार और इस जीत में उनके सहभागी हरिहरन ने क्या कहा है ये भी सुनते हैं।
3: Dan coach asked me to try with Arjun because our game style was, both game style was like fast. Dan coach saying was try for four tournaments. I said okay, I will try. So we played all four tournaments, continue the throw. Now it's world championship year. We searched for Asian games as well. I said thanks to coach first and thanks to my senior also.
1: जी बिल्कुल, एक अच्छा अनुभव अब साथ खेलते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को हो चुका है। और इसी तरह का अनुभव गायत्री गोपी चंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने भी साझा किया, जिन्होंने घरेलू मैदान पर इस जीत को बेहद खास बताया।
4: बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है। आई थिंक द कोर्ट कंडीशंस आर प्रीटी गुड, इट्स अ ह्यूज स्टेडियम। या आई थिंक दिस इट्स अ लिटिल स्लो समटाइम्स फास्ट, बट आई थिंक वी हैव अडैप्टेड वेल, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट।
1: बैडमिंटन के कोर्ट पर इस बेहतरीन दिन के बाद अब बात की जाए क्रिकेट के मैदान की, जहां गोल में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाए थे। अब श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। आइए सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
5: अपनी पहली पारी में 462 रन बनाने के बाद भारत ने श्रीलंकाई टीम को सिर्फ 284 रन पर समेटकर 178 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंकाई पारी समाप्त होने के बाद खराब मौसम के चलते आगे का खेल नहीं हो सका। पहली पारी में भारत के लिए पर्डिक्कल ने सर्वाधिक 167 रन बनाए, जबकि ध्रुव जुरेल ने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। मेजबान टीम की तरफ से प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका को दूसरी गेंद पर निशान फर्नांडो के रूप में शुरुआती झटका लगा और विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। महज 90 के स्कोर तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। इसके बाद सोनल दिनुशा ने निरोशन डिकवेला के साथ छठे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी करते हुए पारी को संभाला। निरोशन 80 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि सोनल ने 100 रन का योगदान दिया। भारतीय खेमे से मानव सुथार ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट निकाले। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो दूसरे दिन का जब खेल समाप्त हुआ तो भारत की पकड़ मजबूत थी, लेकिन आज कह सकते हैं कि शिकंजा और कसा है। और इस पूरे मैच पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, आज का जिस तरह का खेल गया है, अब दो दिन का खेल बचा है और रणनीति पे तो बात होगी ही होगी, लेकिन अब तक कह सकते हैं कि कितनी पकड़ भारत की नजर आ रही है?
6: ये शक्ति अभी श्रीलंका को 178 रन की जो है, भारत को 178 रन की बढ़त हासिल है। और इसी के साथ भारत जो है कल जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरेगी तो कोशिश करेगी कि 170 या 200 रन बनाकर एक जल्दी टारगेट को डिक्लेयर करने के लिए देखेगी, जहां 350 से 400 रन का टारगेट दबाव बनाने के लिए काफ़ी होगा श्रीलंका पर। और भारत इसलिए भी कल जल्दबाजी करता नजर आएगा क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है, कितने सत्र खेले जाएंगे, कितने सत्र धुल जाएंगे, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि क्या ये कहना गलत होगा कि आज का दिन भारतीय गेंदबाजों का दिन रहा? जिस तरह से शुरुआत में श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई थी, एक वक्त पे लगा कि शायद कहीं मामला 150 को भी ना पार कर पाए।
6: जी बिल्कुल, शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बिल्कुल मजबूत रखी। 90 रन पर 5 विकेट गिरा दिए थे श्रीलंका के, लेकिन उसके बाद उनकी एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, जहां सोनल दिनुशा ने बेहतरीन शतक जमाया और उसके अलावा

0: डिकवेला जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने भी 115 गेंदों पर 80 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी की बात करें तो युवा मानव सुथार ने 4 विकेट लेकर भारत को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिलाया। उसके अलावा रविंद्र जडेजा ने आज 3 विकेट लेकर अपना 350 विकेट का कीर्तिमान जो है वो हासिल कर लिया, और इसी के साथ वो बाएं हाथ के सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में, और 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं ओवरऑल जिन्होंने 350 विकेट का आंकड़ा जो है छुआ है। ऑलराउंड प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए, चौथे ऐसे ऑलराउंडर बन गए जिन्होंने 4000 रन और 350 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट क्रिकेट में।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। और वो अफगानिस्तान का मुकाबला जहां मानव सुथार ने अपना डेब्यू किया था और पहला ही मैच 6 विकेट, आज दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और 4 विकेट, तो काफ़ी संभावनाएँ इस खिलाड़ी में हमेशा से नज़र आती हैं और कह सकते हैं कि टेस्ट में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में खुद को एस्टेब्लिश किया है। और अब आगे भारत, जैसा आपने बताया कि कल नज़र होगी कि किस तरीके से मैच पे अपनी पकड़ मजबूत की जाए, कम से कम समय में जो है अपने एक अच्छा टारगेट स्कोर बोर्ड पे चढ़ाया जाए मेहमान टीम के लिए। और अब और क्या इस मैच से कुछ खास निकलता हुआ नज़र आ रहा है भारत के लिए?
0: अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में जरूर सबसे थोड़ा ऊपर जाएगी, और साथ ही साथ इसके साथ वो सीरीज़ भी जीतने के लिए देखेंगे क्योंकि अभी वो 5वें स्थान पर हैं, और ये दोनों मुकाबलों में जीत भारत को एक बहुत ही अच्छा बूस्ट प्रदान करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनज़र।
1: जी बिल्कुल, जैसा हमने कल भी बताया था कि इसके बाद अब अगली श्रृंखला जो है भारत की वो न्यूजीलैंड से है जो 19 नवंबर को वेलिंगटन में खेली जानी है, तो टीम चाहेगी कि जितने भी मुकाबले हैं उनको जीता जाए और WTC की फाइनल की दौड़ को और मजबूत तरीके से पकड़ में रखा जाए। और अब बात की जाए FIH हॉकी विश्व कप की, जहां आज का दिन भारत के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा। भारतीय टीम को अपने पूल डी के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से 2-4 गोल से हार का सामना करना पड़ा। विशेष जिस तरह की पहले मैच में जीत थी वेल्स पर, भारत ने 3-1 से एक बेहतरीन जीत दर्ज की थी, लेकिन आज एक अच्छी शुरुआत 2-1 की, लेकिन कह सकते हैं कि हरमनप्रीत एंड कंपनी थोड़ी सी अनलक्की रही।
0: ये शक्ति बिल्कुल, भारत को पिछले मुकाबले से अपना काफ़ी आत्मविश्वास था और मैच की पहली सफलता से ही मतलब इंग्लैंड ने जो है दबाव बनाना भारत पे शुरू कर दिया, जहां निकोलस बंदरूक ने 14वें मिनट में भारत को गोल करके बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद मुकाबला जो है 2-1 से आगे भारत ने बढ़त दी, लेकिन चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।
1: जी बिल्कुल, भारत ने एक बार करारा जवाब दिया जब पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किया, फिर दिलप्रीत का गोल आया, लेकिन एक वक्त पे लगा कि भारत एक बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बाद मैच का वो तीसरा क्वार्टर जहां बैक टू बैक 5 मिनट के अंदर पहले स्टुअर्ट रश्मेयर का गोल आया 40वें मिनट में, और 43वें मिनट में आपने जिस गोल की बात की क्रॉफ्ट हेनरी के, जिसने काफ़ी हद तक भारतीय टीम के मनोबल को तोड़ा और उस बढ़त को जो भारत के हिस्से में थी इंग्लैंड की तरफ लाए, और आखिरी में निकोलस जिन्होंने पहला गोल किया था दूसरा गोल करते हुए इस मैच में भारत के लिए तमाम संभावनाओं को बंद कर दिया। हालांकि इंग्लैंड शीर्ष में पहुंच चुका है ग्रुप में, भारत अपना दूसरा मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से बुधवार को खेलेगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका

0: पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम

0: की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
1: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के पांचवें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़ककर 77,700

0: 28 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंद्र भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network destroyed ahead of Independence Day, says Home Minister Amit Shah. Over 200 operatives held. Government approves 31 new proposals worth nearly 7,900 crore rupees under Electronics Components Manufacturing Scheme. Education Minister Prahlad Joshi holds meeting with senior officials on examination reforms. Directs National Testing Agency to conduct thorough audit of all exam processes. BJP announces new team of national office bearers, Piyush Goyal, Smriti Irani and Vasundhara Raja Sindhya among key names. Indians in Qatar can now send money home through UPI from post offices. And in men's cricket, India take 178-run lead after restricting Sri Lanka to 284 in first innings of Gaul's test. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has informed that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi destroyed the ISI-backed terror group Shehzad Bhatti network ahead of Independence Day. He informed that the government also thwarted its plans for subversive attacks by arresting more than 200 operatives. In a social media post, he said that security forces ripped apart the network by launching coordinated operations across different locations in 14 states, upholding a brilliant example of India's zero tolerance towards terrorism. More from our correspondent.
4: The security agencies launched a coordinated multi-state operation on 12th of this month using a real-time intelligence sharing system with state police forces to counter Sahajad Bhatti network-linked disruptions planned around Independence Day. The operation led to the detention

0: ना करने के भारत के अज़्म की उम्दा मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस महीने की 12 तारीख को रियासती पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर कई रियासतों में तालमेल पर मबनी ऑपरेशन के जरिए हकीकी वक्त पर मबनी इंटेलिजेंस इश्तराक की बिना पर शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी है। ये नेटवर्क यौम आज़ादी के आसपास खलल डालने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन के दौरान 14 रियासतों से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 अफराद शामिल हैं। ISI की माली एयानत वाले इस ग्रुप से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये नेटवर्क मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में मुकीम ISI की हिमायत वाला दहशतगर्द ग्रुप है, जो भारत में ग्रेनेड, IED, पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड किलिंग्स में मुलव्वस था। शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस, दिफाई तनसीबात और मजहबी मकामात की रेखी के लिए मुकामी कारिंदों को रकम अदा करता था ताकि वो जासूसी के लिए CCTV कैमरे नसब कर सकें। शहजाद भट्टी नेटवर्क मामले में अब तक 80 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: हर घर तिरंगा मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। हर घर तिरंगा मुहिम के पांचवें साल ने एक तरफ जहां तिरंगे को लाखों भारतीयों के दिलों से जोड़ा, वहीं सरहद पार भारतीय भी तिरंगा लहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए यकजा हुए। मुल्कगीर पैमाने पर मनाई गई इस मुहिम ने शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को जगाया, कौमी यकजहती को मुस्तहकम किया और भारत के सकाफती विरसे को फरोग दिया। साल 2022 में शुरू हुई हर घर तिरंगा मुहिम अवामी शमूलियत वाली मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक के तौर पर उभरी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हर घर तिरंगा मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील से मंसूब रही। इस मुहिम ने हुब्बुल वतनी के मुनफरिद इम्तजाज के तहत कौमी परचम और कौमी गीत को यकजा किया। इस साल की मुहिम की खासियत लोगों का इसमें नित नए तरीकों से शामिल होना था। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों, सकाफती जुलूसों, स्कूल और कॉलेज प्रोग्रामों और बिरादरियों के जश्न में हर घर तिरंगा का जज्बा साफ नजर आ रहा था। स्कूलों और कॉलेजों ने कौमी परचम और वंदे मातरम के बारे में जानने के लिए नौजवान लोगों की हौसला अफजाई की। ये मुहिम हर साल लोगों को तिरंगे से जोड़ने के नए तरीके लाती है और साल 2026 में भी इस मुहिम को मनाने का दायरा काफ़ी वसी रहा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: हुकूमत ने 7,877 करोड़ रुपए की तखमीना जाति सरमायाकारी वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के तहत 31 मजीद दरख्वास्तों को मंजूरी दी है। इन मंजूरियों से 9,500 से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ये दरख्वास्तें 10 रियासतों से मौसूल हुई हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7 और महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 दरख्वास्तें शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी नामे सौंपे। ये दरख्वास्तें एसिटाइलिन ब्लैक स्पीकर्स और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल कैपेसिटर्स, ट्रांसीवर्स और कॉयल्स जैसी मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि इन 31 मंजूरियों के साथ ही इस स्कीम के तहत कंपनियों की मंजूर की गई दरख्वास्तों की मजमूई तादाद 106 हो गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि हुकूमत ने 59,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी रागिब करने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन अब हुकूमत अपने हदफ से आगे बढ़ गई है और 69,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल कर चुकी है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और

0: ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
1: वजीर तालीम जनाब प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में आला तालीम के महकमे के सेक्रेटरी, इम्तहाना से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और दीगर आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। वजीर मौसूफ ने इम्तहाना से मुतालिक जाब्तों पर सख्ती से अमलावरी किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने राजदाराना अमली सरगर्मियों, अलग थलग कमरों, एयर गैप सिस्टम्स यानी बाहरी नेटवर्क से मुनकता निज़ाम, डिवाइस जमा करवाने जैसे जाब्तों पर जंगी पैमाने पर अमल किए जाने की तलकीन की। NTA से कहा गया है कि वो सभी इम्तहानात के अमल की तफसीली जांच करे और उसे दुरुस्त करने के लिए किए गए मुतालिका इकदाम के बारे में रिपोर्ट दाखिल करे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने आज पार्टी के कौमी ओहदेदारों की नई टीम का ऐलान किया। जनाब नबीन ने 13 कौमी नायब सुदूर का तकरर किया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजंत जयपांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा शामिल हैं, जबकि जनाब पीयूष गोयल को पार्टी का कौमी खजांची मुकर्रर किया गया है। नीज BL संतोष को तंजीमी कौमी जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। जनाब नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव समेत पार्टी के 8 लीडरों को कौमी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। पार्टी ने मुख्तलिफ मोर्चों के लिए भी नए सरबराहों के नामों का ऐलान किया है। इनमें डॉक्टर हेमंग जोशी को बतौर युवा मोर्चा सदर, रूप कुमार चौधरी को महिला मोर्चा सदर और बंसीलाल गुजर को किसान मोर्चा का सदर के तौर पर तकरर किया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के ओहदेदारों की नई टीम को मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात और नफसियात पर असरअंदाज होने वाले मादों की रोकथाम से मुतालिक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मुलव्वस गैर मुल्की शहरियों के लिए जमानत की शराइत सख्त कर दी है। ये फैसला फर्जी जमानत के खदशात के मद्देनजर किया गया है। इस सिलसिले में मुतादिद हिदायत जारी करते हुए जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि जमानत पर रिहा होने वाले गैर मुल्की शहरियों को अपने पासपोर्ट मुतालिक अदालत में जमा कराने होंगे और उन्हें पेशगी इजाजत के बगैर भारत से बाहर सफर करने के मजाज नहीं होंगे। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसे मुलजिमान को रिहाई के एक हफ्ते के अंदर गैर मुल्कियों के इंदराज के इलाकाई दफ्तर FRRO में अपना इंदराज कराना होगा। अदालत ने हिदायत दी कि आमतौर पर मुलजिम की जमानती मचलके की रकम के मसावी 2 जमानतें भी जमा करानी होंगी। इसके अलावा अगर तफ्तीश के दौरान मुलजिम के भारत में रिहायशी पते और राबते की मालूमात की तस्दीक हो चुकी हो तब भी जमानत के हुक्म के 3 दिन के अंदर इन मालूमात की दोबारा बजाते खुद पेश होने पर तस्दीक की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 2 नामालूम अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में खुफिया मालूमात मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उधमपुर के जंगलाती इलाके रामनगर में नाकाबंदी और तलाशी की वसी मुश्तरका कार्रवाई की। जम्मू के हमारे नामानिगार के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के खसूसी कार्रवाई ग्रुप SOG, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम ने जोफर इलाके की नाकाबंदी की और मुश्तबा अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी की कार्रवाई की। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कार्रवाई में गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। इलाके में कई मकामात पर यह कार्रवाई जारी है। इंतजामिया ने मकामी लोगों से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तावुन करने की अपील की है। उधमपुर जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकसी बरत रहे हैं और अमन और सलामती को लाख किसी भी खतरे से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन तुहीन कांता पांडे ने कहा है कि 3 अगस्त से शुरू किया गया नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जारी रखा जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के इफ्तिताह के मौके पर बात करते हुए जनाब पांडे ने कहा कि बोर्ड इदारे की जानिब से मौसूल होने वाली तजावीज पर गौर करेगा और जरूरत के मुताबिक तब्दीली भी लाएगा। सेबी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सेबी की जानिब से मुतारिफ कराया गया 3:15 से 3:35 तक 20 मिनट का नीलामी सेशन है। इसका मकसद F&O सेक्शन में शामिल स्टॉक्स की सरकारी अख्तितामी कीमत तय करना है, जिसके लिए ऑर्डर जमा किए जाते हैं और उन्हें एक वाहिद मुतवाजन कीमत पर मैच किया जाता है। अब कतर से भारत रकम की मुंतकीली के लिए UPI से मुंसलिक पोस्ट ट्रांसफर सर्विस दस्तियाब है। इस सर्विस के तहत कतर में मौजूद सारिफिन कतर पोस्ट के मराकज के जरिए बराह रास्त भारत में UPI से मुंसलिक बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल कर सकते हैं। मवासला

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के समय में उपभोक्ताओं के लिए अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी हो गया है। बाजार में लगातार नए नए उत्पाद आ रहे हैं और अब ये उत्पाद सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपभोक्ताओं तक पहुँच रहे हैं। भ्रामक लेबलिंग और गलत जानकारी से बचने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता होना बेहद जरूरी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापारिक गतिविधियों, भ्रामक प्रचार और हानिकारक उत्पादों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता कार्य विभाग कई जागरूकता अभियान चलाता है। इनमें जागो ग्राहक जागो एक प्रमुख अभियान है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA की स्थापना 24 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना है। तो पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता यानी मिसलीडिंग लेबलिंग एंड कंज्यूमर राइट्स अवेयरनेस। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी आपकी जो है फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481

0: 2371 7117, 2371 7106 और 2331 4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करके अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो अनुपम जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल जानना चाहेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्या आप हमें आसान भाषा में समझा सकते हैं इस कानून की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये कानून उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है?
1: मुकेश जी और सभी श्रोतागण, हम सभी लोग पिछले दशक में जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस में जो वृद्धि हुई है उससे भली भांति परिचित हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: इस वृद्धि ने जहां एक ओर हमारे जीवन को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, वहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कई नए चैलेंजेस को खड़ा किया है। उन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए 2019 में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लाया गया। ये 1986 के एक्ट को रिपील करके आया था। इसमें कई विशेषताएं हैं, कई इसमें खूबियां हैं, पर आज मैं 4 विशेषताओं को आपके दर्शकों को, श्रोताओं को बताना चाहूँगा। जिनने पहला है कि इसमें उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA की स्थापना की है। इसका मुख्य कार्य है कि कंज्यूमर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके विषय में क्लास एक्शन ले जाए, मतलब हर एक कंज्यूमर को अपनी ग्रीवांसेस से खुद ना जाना पड़े कोर्ट में, कचहरी में, या CCPA उनका स्वयं संज्ञान लेता है और क्लास एक्शन लेता है। दूसरी विशेषता है कि इसमें ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केट प्लेस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दायरे में लाया गया। तीसरा इसमें जो विशेषता थी कि जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का क्लॉज, कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसका सेलर, यदि उसके प्रोडक्ट में कोई दोष पाया जाता है तो उसके उसके लिए लाइबल बनाया जाता है। और चौथी जो सबसे अच्छी विशेषता है, ऑनलाइन केस फाइलिंग की, कंज्यूमर कमीशंस में अपनी ग्रीवांसेस को ऑनलाइन कहीं भी फाइल कर सकता है।
0: जी बहुत बहुत आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। कविता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे भ्रामक लेबलिंग से क्या मतलब हो सकता है, आप आम उपभोक्ता इसे रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
3: मुकेश जी, अब दोबारा पूछ लीजिए, कैन यू शेयर इन इंग्लिश प्लीज।
0: जी, ये जो क्या कहते हैं आपका भ्रामक लेबलिंग, यानी कि जो मिसलीडिंग लेबलिंग है, इसकी मतलब इसको किस तरह से देखते हैं, इसका मतलब क्या है और उपभोक्ता जो है रोजमर्रा में कहां कहां देखता है?
3: अच्छा, हमारा एक रेगुलेशन है एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स के ऊपर, उसमें हमने अच्छा तरह डिस्क्राइब किया कैसे कैसे FBO क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हैं करके। उसमें हेल्थ क्लेम्स है, न्यूट्रिशन क्लेम्स है, कंडीशनल क्लेम्स है, इक्वलेंस क्लेम्स है, मतलब इस तरीके से बहुत प्रोविजन है FBO को क्लेम्स प्रोडक्ट के ऊपर लेने का। उसमें हम बता रहे वो ट्रूथफुल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका साइंटिफिक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि एक क्लेम प्रोडक्ट को ऐसे नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट खाने में वो मील का रिप्लेसमेंट होगा, हमारा बैलेंस डाइट को वो फुलफिल करेगा, और मतलब वो क्लेम इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो प्रोडक्ट एक्सेस खाएगा। तो कुछ चीज हम उसको मिसलीडिंग क्लेम, प्रोहिबिटेड क्लेम करके रखा है। मतलब वो अगर उस प्रोडक्ट से वो बेनिफिट नहीं आ रहे, से इम्यूनिटी बूस्टर और कुछ टॉल क्लेम्स बोलते हैं हम, वो प्रोडक्ट का बिल्कुल फॉल्स क्लेम, उस तरीके से नहीं होना चाहिए हमारा। उसका पेनालिटी प्रोविजन भी है अगर कोई मिसलीडिंग क्लेम ले रहा है इन प्रिंटेड मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। हमारा एक पोर्टल है फोर्सकास्ट करके, उधर अगर कोई भी एनी स्टेक होल्डर अगर कहीं भी मिसलीडिंग क्लेम्स है वो लोग उसको डाल सकते हैं। हम सुओ मोटो उसको एग्जामिन कर रहे हैं एंड हम उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं FBO को उस तरीके से क्लेम्स को बदलने का।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी। रमा

0: जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
1: जी नमस्कार।
0: जी। बताएं क्या सवाल है आपका।
1: हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो भ्रामक लेविल है, जैसे दवाइयों के यूज में आता मगर इसको नशे में भी परिवर्तित कर देते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये नशा है या दवाई है?
0: जी कविता मैम, बताएं क्या क्या जवाब देना चाहेंगे इसका।
2: दवाई के लिए मतलब हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल करके एक रेगुलेशन है, फंक्शनल फूड्स, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, मेडिकल यूज करके। उसमें हमने कैसे क्लेम होना है करके भी क्लियरली दे रखा है। अगर वो क्लेम कुछ प्रिवेंशन तरह नहीं होना चाहिए, मतलब डिसीज को क्यूर करेगा, डिसीज को दूर रखेगा करके नहीं होना चाहिए। उसका मतलब डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब सपोर्ट हेल्थ करके कर सकते हैं। से अगर हम कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं, वो ऑस्टियोपोरोसिस को मतलब प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क को रिड्यूस करने का सपोर्ट करेगा करके ले सकते हैं। अगर सोडियम तक बहुत कम प्रयोग होने में बीपी नहीं आएगा, उस तरीके से हम क्लेम्स ले सकते हैं। वेरस हम ये डिसीज को पूरा बंद करेगा करके नहीं हो पाएगा। वो भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डॉक्टर रिकमेंडेड है। उस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स मतलब फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए हम बता देते हैं, वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे लेना चाहिए करके।
0: जी बिल्कुल। और अनुपम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि सीसीपीए यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भूमिका क्या है? पिछले एक साल में सीसीपीए ने कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की हैं?
3: सीसीपीए की स्थापना जुलाई 2020 में हुई थी। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने इसने करीब 500 से ज्यादा नोटिसेज इशू किए हैं।
0: बहुत बड़ी कार्रवाई।
3: और ये जो नोटिसेज हैं, विशेष रूप से जहां भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स पाया गया है, उन क्षेत्रों में ये नोटिसेज दिए गए हैं जहाँ कंज्यूमर्स का एज ए क्लास उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी था। कुछ जो बड़ी कार्यवाही हुई है वो है, सबसे बड़ी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, हम सब जानते होंगे बहुत ही मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आता था हमारे इंस्टीट्यूट से 500, 600, 300
0: बैनर लगे होते थे।
3: इनफैक्ट यदि आप सारे को जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट करते थे, यदि आप उनके छात्रों की संख्या ऐड कर ले तो यूपीएससी के सिलेक्शन से भी कई बार ज्यादा हो जाती थी। तो इनको करीब 50 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक्शन लिया गया, जिसमें कई बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। दूसरा जो बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है पिछले वर्षों में, वह है डार्क पैटर्न को लेकर। डार्क पैटर्न ये है कि जब हम किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो जो चीज़ हम ना करना चाहें, हमें लगता है कि जब हम उस प्लेटफॉर्म से बाहर होते हैं वो चीज़ हमसे अनायास भूलवश हो जाती है
0: जी।
3: तो उनको डार्क पैटर्न कहा जाता है कि इस तरह प्लेटफॉर्म की डिज़ाइन की जाती है। तो कई जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें जेप्टो है, इंडिगो है, बुक माई शो, स्पाइस जेट, इनमें इन डार्क पैटर्न को चिन्हित किया गया, उन पर कार्यवाही की गई है। एक जो और बड़ी कार्यवाही सीसीपी ने की है, वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो बैंड प्रोडक्ट्स थे, जैसे वॉकी टॉकीज, ड्रोन जैमर्स, एक्सप्लोजिव जो बेचे जा रहे थे, इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसे नामी प्लेटफॉर्म्स थे, उन सब पर भी कार्यवाही की गई है। तो कुछ बड़ी कार्यवाही है जो सीसीपी ने पिछले वर्षों की है।
0: और एक और श्रोता हमारे साथ बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं, अमित आंचल। अमित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
4: जी। नमस्कार, मेरे ये सवाल था सर कि जैसे भारत में इतना उत्पादन हिसाब से, खपत के हिसाब से, जैसे कि दूध जो है पेय पदार्थ, इसका उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और खपत उससे भी दुगना होता है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो सही है या गलत है? ऐसे इसमें ना बहुत लोगों पर हानिकारक, स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, इसको कैसा आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अभी एक शोध हुआ था, न्यूज पेपर में प्रकाशित हुआ था
0: जी,
4: इस पर थोड़ा सा आप इसका बता दें
0: जी। कविता मैम, आपसे सवाल है ये
2: जी, बताइए प्लीज इसको।
0: ये दूध, इनका कहना ये है कि दूध की बात ये कर रहे हैं कि उत्पादन जितना है खपत उससे ज्यादा है, तो उत्पादन और खपत का जो ये गड़बड़ी है, किस तरह से ये पूर्ति हो पाती है, ये कहना चाह रहे हैं।

0: अच्छा, दूध के ऊपर मिलावट उसका कैसे करना है
1: जी,
0: करके?
1: जी जी जी एफएसएसआई का।
0: हाँ जी, देखिए हमारे पास दूध का प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एफबीओ उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास भी पूरा टेस्टिंग मैकेनिज्म भी है, हम सर्विलेंस सैंपल उठाते हैं उसमें एफबीओ को पीनलाइज नहीं करते, उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं। अगर लीगल सैंपल हम लेते तो उसमें कुछ सबस्टैंडर्ड निकल के आ रहा है, मतलब उसका क्वालिटी पैरामीटर में कॉम्प्रोमाइज है, फिर हम उनको पेनाल्टी देते हैं। अगर कुछ अनसेफ निकल के आ रहा है, मतलब कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ डिटर्जेंट है, कुछ हैजार्डस सब्सटेंस, मतलब हमारा शरीर को बिल्कुल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करने वाला, उसको हम प्रोसिक्यूशन करेंगे। इस तरीके से हाई रिस्क कमोडिटी बोलते हैं हम, दूध तरह हाई रिस्क कमोडिटी को हम पूरा स्टेट्स को दे रखा है। सैंपल उठाना जरूरी है, हमको रिपोर्ट एनुअली दो बार जमा करना है। फूड बिजनेस ऑपरेटर, पूरा फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेसिग्नेटेड ऑफिसर को भी हम टारगेट दे रखे हैं। हम चार बार मिलते हैं सारे फूड सेफ्टी कमिश्नर्स हेडक्वार्टर में आते हैं रिपोर्ट देने का। उसमें इस तरीके से उन्होंने कैसे सर्विलेंस एक्टिविटी किया, कैसे एडल्ट्रेशन को हॉटस्पॉट किधरे करके कैसे पकड़ा, कितना एनफोर्समेंट सैम्पलिंग किया है करके वो लोग हमको शेयर करना चाहिए। इसके अलावा भी हम अवेयरनेस भी बहुत दे रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स फार्मर्स को भी नहीं पता होता है किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया में भी ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, वो सारा नॉट पॉसिबल है। मतलब दोनों तरीके से भी है, एक तरफ बहुत डरने का जरूरत भी नहीं है। ऑल्सो हमारा दूध बहुत प्रोड्यूसिंग कंट्री, इंडिया वन ऑफ द टॉपेस्ट, तो ज्यादा मिलावट का भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आधा नेगेटिव न्यूज है, आधा में हम बहुत आगे वॉट एवर वे में हमको प्रिवेंट कर सकते हैं, वी आर डूइंग दैट एट द फुलेस्ट पॉसिबल।
1: जी बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता पर चर्चा कर रहे हैं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के में साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामासामी। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, ई जागृति की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को हुई थी और ये उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया है। तो ई जागृति ने उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने और उसका समाधान पाने की प्रक्रिया को किस तरह से आसान बनाया
2: है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है
1: जी।
2: और ई जागृति ने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण एवं आधारभूत सुधार किए हैं। अब ई जागृति के माध्यम से कोई भी कंज्यूमर कहीं से भी बिना कंज्यूमर कमीशन ने फिजिकली जाए हुए अपने घर बैठे अपना केस दाखिल कर सकते हैं,
1: बहुत बड़ी सुविधा,
2: उसका पेमेंट कर सकते हैं और हर एक स्टेज पर उनके केस की क्या प्रगति हो रही है, कब वो लिस्ट हो रहा है, कब उस पर ऑर्डर आ रहा है, उसमें समन इशू किए जा रहे हैं, सारी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। और बिना कमीशन गए हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कंज्यूमर कमीशन में अपना पक्ष भी रख सकते हैं और न्याय भी पा सकते हैं। इस व्यवस्था में जब से हमने इसको जनवरी 2025 से लागू किया है, 5 लाख से ज़्यादा नए हमारे साथ इसमें कंज्यूमर्स जुड़े हैं, इसमें करीब 4000 से ज़्यादा NRIs हैं। अब इसमें जो VC फैसिलिटी दी गई है उसके माध्यम से विदेशों में भी जो बाहर, मतलब NRI जो बाहर से इंडिया आए, सामान खरीदे और बाहर गए, उनका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो USA, चाइना, दुबई, कई ऐसे देश हैं जो हमारे VC के माध्यम से न्याय प्राप्त कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ई जागृति के माध्यम से जो कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर हैं उनकी लोकल लैंग्वेज में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें कंज्यूमर्स को दिए जाते हैं।
1: ये बहुत बड़ी पहल है। और एक और श्रोता हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रोता जुड़े हैं, श्रीकांत जाखड़े। श्रीकांत जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: हेलो, नमस्कार
1: जी। श्रीकांत जी, श्रीकांत जी,
3: श्रीकांत जाखड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से
1: जी।
3: तो मेरा सवाल ये है कि

0: जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज वगैरह खरीदते हैं तो वो फ्रेश है या फिर सेकंड हैंड है,
1: जी
0: तो ऊपर से तो लेबल सेम रहता है, तो इसके समाधान का क्या मतलब, तरीका क्या है मतलब? हाँ
1: कविता मैम, आपसे सवाल है ये।
2: जी, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, मतलब कुछ सामान खरीदने में वो फ्रेश है
1: जी
2: और
1: बिल्कुल,
2: ड्यूरेशन को ऊपर हो गया, वही वही उनका
1: जी
2: सवाल है ना?
1: जी जी
2: हाँ
1: बिल्कुल,
2: जी, मतलब ये नहीं, प्रोडक्ट मतलब शेल्फ लाइफ हम अथॉरिटी डिटरमाइन नहीं करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर में या रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में कितना दिन रहेगा, 1 साल और 6 मंथ, वो FBO टेस्ट करके वो प्रोडक्ट का नेचर के हिसाब से वो एक्सपायरी डेट देता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी देना जरूरी है, मैंडेटरी है, सेम वे डेट ऑफ एक्सपायरी भी देना जरूरत है। वो शेल्फ में मतलब वो रिटेलर भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई भी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, हमारा नोटिस पे आ रहा तो उनका मतलब प्रोसिक्यूशन विल बी इन प्लेस। ये कंज्यूमर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लेबल नहीं देखते जनरली। अगर इंडिया में ये प्रैक्टिस है, मतलब हम लेबल में इतना ध्यान नहीं करते, तो हम भी चेक करना पड़ेगा एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है करके। इसीलिए सेकेंड हैंड प्रोडक्ट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि एक पैकेज प्री पैकेज्ड फूड का लेबल का वो है, कुछ टैम्पर बिना टैम्परिंग का कंटेंट बदल नहीं सकते, इसीलिए रीपैकिंग ऑल ये सारा पॉसिबल नहीं है, इसका पनिशमेंट भी है।
1: जी अनुपम जी, क्या मंत्रालय की ओर से उपभोक्ताओं के लिए कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध है?
3: जितने भी उपभोक्ता हैं उनका ये अधिकार है कि उनकी जी किसी भी वस्तु से, किसी भी सेवा से जो खरीदते हैं कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का निवारण करवाना।
1: जी
3: इसके लिए उपभोक्ता मंत्रालय विभाग एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो कि 1915-1915 है, ये टोल फ्री है,
1: जी
3: इसमें आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। यह 17 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: जी
3: इसके साथ ही साथ ये हमारे पोर्टल पर और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। व्हाट्सएप नंबर है 8800191588 00 1915। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एक प्री लिटिगेशन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। हम सलाह ये देते हैं कि यदि आपकी कोई शिकायत है तो सबसे पहले आप उस कंपनी से शिकायत करें, यदि वहाँ डिले होता है या जो उसका जो समाधान है आपके अनुरूप नहीं है तब आप NCH में आकर शिकायत कर सकते हैं। और ये व्यवस्था पूर्णतया निःशुल्क है और पिछले 1 वर्षों में NCS के माध्यम से करीब 90 करोड़ रुपए का लोगों को रिफंड भी किया गया है।
1: जी और व्हाट्सएप पर हमें एक सवाल मिला है राजेश नेमा सिंहपुर बेड़ा से, उन्होंने सवाल किया है नकली घी और नकली पनीर की समस्या, जो मार्केट में इतना नकली पनीर जो है वो उपलब्ध हो रहा है उसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं? तो कविता जी आपसे सवाल ये रहेगा।
2: हाँ जी, नकली घी करके बहुत मतलब रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम घी में कुछ मिलावट करने के, अगर वनस्पति मिलावट हो रहा है, वनस्पति में जरूर तिल का तेल थोड़ा सा रहना चाहिए क्योंकि उसका फ्लेवर एविडेंट होगा, इसीलिए घी में वनस्पति मिलावट होता तो इजीली पकड़ सकते हैं। फिर हमारे पास एक अच्छा टेस्ट मेथड भी है, अगर कुछ वेजिटेबल फैट घी में ऐड हो रहा है बीटा सिटोसरल करके, उसका प्रेसेंस के थ्रू हम अडल्ट्रेशन को पकड़ सकते हैं, मतलब घी में मिलावट हुआ करके वो इजीली पता कर सकते हैं हम। उसके अलावा हम अभी रिसेंटली फैटी एसिड कॉम्पोजिशन बोलते हैं, वो यूनिक होता है, वो भी घी के लिए हमने नोटिफाई किया, वो और अच्छा है, मतलब मिलावट को अच्छी तरह पकड़ सकते हैं। इसीलिए इतना इजी नहीं है घी में मिलावट करने का। एनालॉग पनीर को मैं बता देता हूँ, पनीर का हमारे पास स्टैंडर्ड है, कैसे इमिटेशन चॉकलेट तरह होता है, मतलब कोकोवा कम होता है उसमें चीनी ज्यादा होता है, इमिटेशन चॉकलेट भी ग्लोबली अवेलेबल है, सेम तरीके

0: अगर लोगों लैक्टोस इंटॉलरेंस हम बोलते हैं, मतलब वो लोग मिल्क रिलेटेड स्टफ को नहीं लेते, उन लोगों का अच्छा है एनालॉग. फिर भी बहुत कंप्लेंट्स भी आया हमको, क्योंकि टेस्टिंग मेथोडोलॉजी नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा रिविजिट कर रहे हैं इस तरीके से एनालॉग को.
1: अनुपम जी, हम अक्सर उत्पादों और विशेष रूप से सोने के आभूषणों पर BIS हॉलमार्क देखते हैं। ये हॉलमार्क क्या होता है और ये किस बात की पुष्टि करता है?
2: BIS का जो हॉलमार्क है, ये सोने की शुद्धता की गारंटी देता है।
1: जी,
2: इसमें बेसिकली तीन निशान हैं। एक है BIS का लोगो, जो एक तिकोना सा चिन्ह होता है, जो शुद्ध करता बताता है कि इस आभूषण की शुद्धता प्रमाणित है। दूसरा जो होता है वो गोल्ड का कितना कैरेट है, ये बताता है। तीसरा एक उसमें 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ये हर एक आभूषण का यूनिक कोड होता है और ये उसकी शुद्धता बताता है। और आप चाहें तो ये जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ये BIS के ऐप, जो एक BIS के ऐप में है, उसमें यदि आप डालेंगे तो उसके सारे डिटेल्स ही आपको दे देगा।
1: जी,
2: तो जब भी आप सोने की कोई भी चीज़ खरीदें, हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे,
1: जी,
2: वो BIS का हॉलमार्क जरूर देखें, ये शुद्धता का प्रमाण देता है।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला से राकेश। राकेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: जी सवाल पूछिए।
3: जी मेरा एक सवाल ये है कि जैसे हम कंपनी में से शिकायत करते हैं, क्या हमें लिखित में क्या बोलते कंप्लेंट करनी पड़ती है या फोन पे जो है, जो MSC पे हम क्या बोलते कंप्लेंट करते हैं, या हमें लिख के देना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
1: जी अनुपम जी, पूछिए।
2: जी, आप बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है राकेश जी। आपकी कोई भी शिकायत है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर फोन करके कर सकते हैं। आपको उसे राइटिंग में देने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे पहले आप अपनी कंपनी से शिकायत कीजिए। यदि कंपनी में भी आप फोन नंबर है, उनके कस्टमर केयर नंबर दिए होते हैं, वहाँ कीजिए। वहाँ आप लगता है कि आपकी शिकायत का सही निवारण नहीं हुआ, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जो कि प्री लिटिगेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी में जाने से पहले की एक व्यवस्था है, आप वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ एक फ़ोन पर और अपनी भाषा में, हिंदी में आप दर्ज कर सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिकायत सुविधा दी गई है। और कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे, हर्बल दवा के नाम पर शीशी बेची जा रही हैं जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इसकी शिकायत कहाँ पे की जाए?
0: इसका हमारा एक कंज्यूमर ग्रीवेंस पोर्टल भी है, उसमें अगर इस तरीके से प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, आप फोटो के साथ हमको भेज सकते हैं। और मैंने बोला लाइसेंसिंग अप्लाई करने का हमारा फॉस्कॉफ पोर्टल भी है, उसमें भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल दिस इज मिसलीडिंग मिसब्रांडिंग रिलेटेड, अगर ये, क्योंकि एक्सपायरी मैंडेटरी देना चाहिए, इस तरीके से नहीं है तो ये मतलब पनिशेबल ऑफेंस है। इसको आप ग्रीवेंस पोर्टल के थ्रू हमको अप्रोच कर सकते हैं और फोस्कॉफ पोर्टल में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को आप कर सकते हैं, हेडक्वार्टर को लिख सकते हैं। अगर ये कंप्लेंट मतलब लाइसेंस कुछ स्टेट में दिया है और सेंट्रल में दिया है, वो स्टेट कोड के हिसाब से कंसर्न डेसिग्नेटर ऑफिसर और कंसर्न फूड सेफ्टी कमिश्नर को अप्रोच करके दे सकते हैं आप। हम उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को हम लिखेंगे करेक्टिव एक्शन के ऊपर, अगर नहीं ले रहे तो उसके बाद हम फर्दर एक्शन लेंगे।
1: अनुपम जी, पैकेज पर कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए, कानूनी रूप से जरूरी है? और जैसे एक्सपायरी, बैच नंबर, निर्माता का पता, अगर ये ना हो तो उपभोक्ता क्या करे?
2: पैकेज पर कई, एक तो फूड सेफ्टी एक्ट में पैकेज पर कई डिटेल्स फूड रिलेटेड देने की अनिवार्यता है, उसके साथ साथ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज कमोडिटी रूल्स में भी कई डिक्लेरेशंस देने जरूरी होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है MRP, उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है, कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर्स नेम एंड एड्रेस, नेट क्वांटिटी 1 किलो है, वजन उसका कितना है, डेट ऑफ मैनुफैक्चर और उसके कस्टमर केयर डिटेल। इनफैक्ट यदि जो उपभोक्ता है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके पैकेज पर दिए हुए सारे डिटेल्स यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कई जानकारियां उनको मिल सकती हैं।
1: और अंत में जानना चाहेंगे कि एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या है?
2: एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है कि पहला, पैकेज कमोडिटी में दिए गए

0: सारे डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ता है,
1: जी
0: नंबर एक। नंबर दो, कोई भी सामान खरीदने से पहले उसका बिल लेता है। तीसरा, यदि उसके कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए शिकायत करता है अपने
1: जी
0: ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू। ये तीन जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान है।
1: कविता जी, आपके अनुसार एक जागरूक उपभोक्ता की सबसे बड़ी पहचान क्या हो सकती है?
2: जी, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होने का, लेबलिंग को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर के तरफ से, क्योंकि रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स दे देगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या कंप्लाई करना है वो लोग कंप्लाई करेंगे, कुछ इनएडवर्टेंटली भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि फूड सेफ्टी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलेटर, फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल है लेबल में क्या दिया है। हम बहुत कुछ चीज में सर्विंग साइज मिस कर देते हैं आजकल, हम बताते हैं मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देखना हमारा आदत है, वो छोड़ के कौन सा इंग्रेडिएंट्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है, अगर फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है,
1: जी
2: मतलब
1: कविता जी,
2: ये सारा
1: जी
2: कॉमन मैन को समझ आना चाहिए।
1: बिल्कुल
2: सर्विंग साइज, एक पैकेट में चिप्स में चार सर्विंग है तो हम पूरा पैकेट नहीं लेना चाहिए। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हेल्थ के हिसाब से। अगर कुछ कंप्लेन भी उधर हम मतलब कुछ इश्यूज है, कुछ टॉल क्लेम्स है, कंज्यूमर कैसे
1: जी
2: अप्रोच
1: कविता
2: करना
1: जी,
2: वो भी जानने
1: समय
2: चाहिए।
1: समय अब समाप्त हो रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लिया जाए। तो हमारे साथ आज जो भी श्रोता जुड़े, और उपभोक्ता कार्य विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की साइंस स्टैंडर्ड की संयुक्त निदेशक डॉक्टर कविता रामास्वामी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का पब्लिक स्पीक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुकेश कुमार को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

खेल जगत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे दो भेंट वार्ताएं। उससे पहले हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के शानदार प्रदर्शन पे। राष्ट्रमंडल खेल विश्व के प्रमुख बहु खेल आयोजनों में से एक है, जहां राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का प्रदर्शन करते हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। इन खेलों में 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत ने इन खेलों में एक बार फिर अपनी खेल प्रतिभा का शानदार परिचय दिया। भारतीय दल में 124 खिलाड़ी शामिल थे, जिनमें 78 पुरुष और 46 महिला खिलाड़ी थी। सीमित खेलों के कार्यक्रम के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों के लिए भारतोलन और एथलेटिक्स विशेष रूप से सफल रहे। भारतोलन में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों में खिताब हासिल किया। एथलेटिक्स में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में रजत पदक हासिल किया। पैरा एथलेटिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भारत के लिए स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते। मुक्केबाजी और

0: में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। महिला मुक्केबाजों और पुरुष मुक्केबाजों ने पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जूडो में भी भारत ने स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए। ये प्रदर्शन बताता है कि भारत में पारंपरिक खेलों के साथ साथ अन्य खेलों में भी प्रतिभाएं तेजी से उभर रही हैं। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि खेलों के कार्यक्रम में पहले की तुलना में काफी बदलाव किया गया था। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और टेबल टेनिस जैसे खेल इस संस्करण में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद भारत ने 39 पदक जीतकर अपनी मजबूत खेल क्षमता का परिचय दिया। भारतीय खिलाड़ियों का ये प्रदर्शन देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। खिलाड़ियों की सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, प्रशिक्षण और परिवार तथा प्रशिक्षकों का सहयोग रहा। इन उपलब्धियों से देश में खेलों के प्रति रुचि और बढ़ने की उम्मीद है। विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों की सफलता भारत के लिए गर्व का विषय है। ये साबित करता है कि उचित अवसर, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलने पर हर खिलाड़ी देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सकता है। इसी भावना को जाहिर करते हुए आज की पहली भेंट वार्ता हम आपको सुनवाते हैं कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी कोटा का अंशदान है।
1: श्रोताओं नमस्कार। कोटा की ही एक हमारी एक बालिका ने एक राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग के फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाली अरुंधति चौधरी की। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि अरुंधति चौधरी हमारे साथ हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं से बात कर रही हैं। अरुंधति, बहुत स्वागत है आपका।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहली बात तो ये आपसे पूछना कि कैसा लग रहा है, ये तो एक अलग बात होगी क्योंकि आपके चेहरे से झलक रही है खुशी। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा का और पूरे देश का नाम रोशन किया है आपने, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और अगर अब बात की जाए आपकी इस उपलब्धि के बारे में तो एक बार हमारे श्रोताओं को बताएं आप कि आपकी उपलब्धि बॉक्सिंग के क्षेत्र में है, किस भार वर्ग में आपने मेडल जीता है और किस तरह से आपने मेडल जीता, ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है 70 कैटेगरी में और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये मेडल लिया है। और अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े कंपटीशन में मेडल ले पाई हूँ।
1: जी बहुत अच्छी बात है ये। और जैसा कि लगातार हम आपके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इसके पहले भी आप आकाशवाणी आई हैं, आपने इंटरव्यू दिया था, तो अब दोबारा आप आकाशवाणी से बात कर रही हैं, तो जब आप उस समय आकाशवाणी आई थी तो क्या आपको लगा था कि भाई मैं आगे इस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगी?
2: नहीं, मैं जब से बॉक्सिंग स्टार्ट करी तब से टारगेट तो फिक्स है कि कहां तक पहुंचना है। और जब मैं आई थी तब भी मुझे भरोसा था कि मैं ओलंपिक्स तक तो जरूर जाऊंगी और कॉमनवेल्थ गेम्स तो हालांकि एक स्टेप है, आगे और भी कॉम्पिटिशन है जिसमें अच्छा परफॉर्म करना है।
1: बहुत अच्छा। आपकी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि आपने बॉक्सिंग कब से शुरू की, किस तरह से आपने ये खेल खेला और बॉक्सिंग ही आपने क्यों चुना? कई जगह हमने पढ़ा है कि आपके गुस्सेल स्वभाव था इसलिए आपने बॉक्सिंग चुना, लेकिन अभी आपके साथ बैठे हैं तो आपकी जो मुस्कान देख के लग नहीं रहा कि आपको कभी गुस्सा भी आता होगा, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे आपने शुरू की बॉक्सिंग, क्या आपकी यात्रा रही, किससे आपको प्रेरणा मिली, इस बारे में थोड़ा बताएं।
2: हाँ, लड़ाकू तो थी मैं शुरू से, गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही था तो, बट वही है कि तराशा मुझे मेरे फादर ने और उन्होंने मेरे गुस्से और मेरे जो ये लड़ाकू नेचर है इसको एक अच्छी जगह पे इम्प्लीमेंट किया और हमने बॉक्सिंग इसीलिए चूज किया। और इसमें आने के बाद काफ़ी अप डाउन तो रहे बैक टू बैक, मतलब कहीं इंजरीज ऐसी हुई जिसके बीच में ऐसा मन भी किया कि अब क्या हो पाएगा, इंजरी हो गई इतनी बड़ी बड़ी, बट फिर भी कंटिन्यू रखा है और अभी तो अच्छा हो ही गया है।
1: ये बहुत अच्छा हुआ है। और शुरुआत से हम बात करें तो आपने किस उम्र से शुरू की बॉक्सिंग करना?
2: मैंने 2016 में स्टार्ट करी थी बॉक्सिंग जब मैं 14 साल की थी।
1: जी, और कौन आपके प्रेरणा के स्रोत रहे, आपके गुरु कौन रहे और किसने आपको प्रेरित किया स्पेशली बॉक्सिंग के फील्ड में ही आने के लिए?
2: बॉक्सिंग के फील्ड में आने के लिए तो मुझे प्रेरित सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने ही किया क्योंकि मैंने उनको खुद स्ट्रगल करते हुए और सैक्रिफाइस करते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि जिनको मैं आंखों से देख रही हूँ इतने दुख में भी लड़ते हुए, मैं उन्हीं को ही अपनी इंस्पिरेशन बना सकती हूँ। और मेरे जो कोच हैं वो अशोक गौतम सर हैं जो नयापुरा में महाबली स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं।
1: जी, अगर शुरुआत की बात की जाए तो जब आपने बॉक्सिंग शुरू की उसके बाद कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से आपने उन इवेंट्स को जीता, कौन कौन से कॉमनवेल्थ से पहले कौन कौन से मेडल आपको मिले?
2: कॉमनवेल्थ के अभी थोड़े टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले अप्रैल में मैंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। उसके पहले 2025 में मैंने नवम्बर में वर्ल्ड कप जीता है और यूथ वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल है। एशियन चैंपियनशिप में यूथ में ब्रोंज है। 7 बैक टू बैक इन्विटेशनल टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल में गोल्ड है और 7 नेशनल में गोल्ड है, 3 खेलो इंडिया में गोल्ड है।
1: अच्छा, आपके जो परिवारजन हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब आपने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता?
2: सबकी आंखें भरी हुई थी खुशियों से क्योंकि इतने

0: ज्यादा खुश थे कि परिवार से पहली बच्ची और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके गोल्ड मेडल लेकर आई है, और वो भी कोटा जैसी जगह जहाँ पे अभी भी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत खुश थे सब लोग और बहुत प्राउड है सब लोगों को।
1: और आपके परिवार में आपके अलावा और भी कोई हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं?
0: अभी तक तो कोई नहीं था, लेकिन अभी मेरी छोटी बहन ने स्टार्ट किया है, मेरे मामा की बेटी ने, तो मैं यही करूंगी कि आगे वो भी बहुत अच्छा करे।
1: जी बिल्कुल, आपको देख के लगातार प्रेरणा मिल रही होगी
0: हाँ
1: आपके।
0: जी,
1: और आपके जो मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में?
0: वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब बाहर का तो कोई नहीं है स्पोर्ट्स फील्ड से मेरे ऐसे फ्रेंड, बट बॉक्सिंग मतलब जो मैं जहाँ से स्कूलिंग करी है वहाँ के फ्रेंड्स थे, तो वो लोग बोलते हैं कि अरुंधति हमें यकीन नहीं हो रहा, जिस बच्ची के साथ हम बैठ के पढ़ाई करते थे आज वो एक स्टार बन गई है। तो बहुत खुश होती, खुशी मिलती है मतलब उन लोगों से बात करके ऐसे।
1: जी, तो आपने जब राष्ट्रमंडल खेलों में जब आप शामिल हुई और आपका जो पहला मैच था, तो उस समय आपको कैसा रहा, क्या मैच रहा? और जब आपने लगातार बॉक्सिंग के जो मैच खेले, तो आपको कहीं लगा ऐसा कि हाँ बहुत टफ कंपटीशन है, मैं किस क्या आपकी रणनीति क्या रही गोल्ड मेडल जीतने की?
0: टफ मैच तो काफ़ी थे सर, क्योंकि कॉमनवेल्थ कोई छोटी बात तो नहीं है, बहुत ज़्यादा
1: बहुत
0: अच्छी
1: बड़ी
0: अच्छी
1: बात।
0: कंट्रीज आती हैं वहाँ पर। और मेरे तीन मुकाबले हुए, पहला नीदरलैंड से, दूसरा वेल्स से और तीसरा इंग्लैंड से। तो शुरू के दो मैच मेरे लिए ज़्यादा टफ थे, क्योंकि वो दोनों का गेम थोड़ा मेरे गेम से अलग था और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला उनका गेम था, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। मैं बोलूँगी 100 से भी ज़्यादा जोर लगाया मैंने, और उन्हीं दोनों को मैं थोड़ा टफ बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना पड़ा उनमें। बाकी जो फाइनल मैच था इंग्लैंड के साथ, वो काफ़ी टेक्निकल बॉक्सर थी और मेरा गेम भी टेक्निकल है, तो मुझे उनके साथ खेल के काफ़ी अच्छा लगा और वन साइडेड स्कोर आया।
1: जी बिल्कुल। अच्छा, आपने खेल जब आपका फाइनल मैच था, तो आपको पता था कि भाई मेरा सिल्वर तो पक्का हो चुका है, अब गोल्ड के लिए मुझे ये मैच खेलना है, तो आप नर्वस तो रही होंगी उस गेम से पहले। किस तरह से आपने उस चीज़ों को काबू पाया और खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया?
0: नर्वस तो नहीं थी सर, बस ये था कि आज बस 9 मिनट खुल के खेलना है, एक तरफा खेलना है, और 9 मिनट बाद मुझे सब कुछ अचीव हो जाएगा, वो सब कुछ जो मैं इतने टाइम से जिसका मैं सपना देख रही थी। तो मैंने अपना पूरा जोर लगाया 9 मिनट में और अच्छा रिजल्ट आया फिर।
1: जी, फाइनल में आपने किस तरह से पराजित किया आपके प्रतिद्वंदी को, क्या कितने अंकों से, क्या राउंड रहे, इस बारे में थोड़ा बताएं।
0: राउंड एक तरफा थे सर, तीनों राउंड 5-0 थे, और वो खुद बहुत अच्छी बॉक्सर है, पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका ब्रोंज है और वो फोर्थ नंबर रैंक्ड हैं बॉक्सर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि उनके ऊपर भी प्रेशर था क्योंकि मेरी वर्ल्ड रैंक 2 है, और एक वर्ल्ड रैंक 2 और वर्ल्ड रैंक 4 के बीच में ये मुकाबला था। उन्होंने भी काफ़ी जोर लगाया अपना, पर शायद उस दिन उनका दिन नहीं था, तो रिजल्ट मेरे
1: फिर
0: फेवर
1: उस
0: में
1: दिन तो
0: आया।
1: पूरा दिन आपका था, और अब लगातार यही हमें उम्मीद कर रहे हैं, हर दिन आपका है।
0: जी
1: अगर बात की जाए आपकी दिनचर्या की, तो दिनचर्या आपकी कैसे रही?
0: सर, दिनचर्या तो हम मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की यही है कि सुबह शाम उनको ट्रेनिंग करनी रहती है, बाकी उनका रिकवरी फेज रहता है, और अगर कभी कभी लगता है कि अभी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो दिन में 3 बार ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, सुबह,
1: जी
0: दोपहर में और शाम को, और बाकी रिकवरी पीरियड है पूरा।
1: जी अच्छा, हमारे जो खासकर लड़कियां हैं, हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं, हमारे देश की लड़कियां हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़कियों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और अपने सामने आने वाली हर तरह की बाधा को लड़कियां किस तरह पार करें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बस पहली बात तो उन्हें यही कहूंगी कि अगर वो सपने देखती हैं तो उन्हें सच करने की हिम्मत रखें, अपने लिए स्टैंड जरूर लें, क्योंकि जो इंसान अपने लिए स्टैंड ले सकता है वो सब कुछ अचीव कर सकता है। तो पहला स्टेप तो स्टैंड लेना ही है, और खुद पे भरोसा जरूर रखिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है फैमिली को मनाना ये सब करना, बट ये एक समय की फिर कहानी रह जाती है। मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, पर जब कोशिश करी और आज पूरी फैमिली सपोर्ट में है, पूरा कोटा सपोर्ट में, और तो और जो मेरा स्वागत हुआ है राजस्थान में, वो भी देख रही हूँ मैं कि कैसे राजस्थान में गेम्स को इम्पोर्टेंस मिल रही है, और जिस स्टेट के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर लड़कियों पे बहुत बंदिश है, आज वो स्टेट मेरा इस तरीके से स्वागत कर रहा है। तो मैं भी एक नॉर्मल थी कि मुझे कोई अलाउ नहीं कर रहा था, कोई मेरे खेलने से खुश नहीं था, पर आज सब लोग मिलकर मेरा स्वागत कर रहे हैं, तो ये
1: बिल्कुल,
0: चेंजेस आ सकते हैं अगर आप अपने आप पर भरोसा रखें तो।
1: बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने कि आपको खुद पे सबसे पहले भरोसा रखना होगा। अगर बात करें बॉक्सिंग खेल की, तो देखा जाता है कि हरियाणा और इन राज्यों का बॉक्सिंग में काफ़ी एक मुकाम हासिल किया है इन राज्यों ने, और राजस्थान से जब बॉक्सिंग में, खासकर एक हमारी बालिका जब बॉक्सिंग में आगे बढ़ती है, तो एक बहुत ही अच्छी खुशी की बात होती है। क्या आपको किसी ने ऐसा कहा कि भाई राजस्थान में होके हम बॉक्सिंग खेल खेलेंगे, इसका कुछ मतलब स्कोप क्या है, इस बारे में कभी आपको लगा कुछ?
0: हाँ सर, मतलब फैमिली से तो सुना ही था, बाकी बाहर जब जाती थी तो हरियाणा का दबदबा ज़्यादा रहता था। मैं देखती थी कि कैसे हरियाणा के बच्चों से बहुत डर रहे हैं कि हमारी हरियाणा से फाइट ना आ जाने तो हम हार जाएंगे ऐसा, पर राजस्थान से किसी को डर ही नहीं था। फिर धीरे धीरे जब मेरे बैक टू बैक मेडल आए, मैं सबको हराती गई, तो फिर हो गया कि राजस्थान की एक लड़की तो बहुत खराब है, ये बार बार आके मार देती है। तो ये धीरे धीरे चेंज होगी सर, जरूर चेंज होगी, कि आज राजस्थान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अब धीरे धीरे

0: हो रही है, और मैं खुद से भी जितना होगा उतनी कोशिश करूंगी कि हमारे स्टेट से भी स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे आगे निकले और बहुत अच्छे अचीवमेंट लेकर आए।
1: जी बहुत अच्छी बात है। अब आगे आपने क्या सोचा है? हालांकि हमें पूरा यकीन है अब अगला ओलंपिक मेडल कोटा को ही मिलेगा, वो भी गोल्ड मेडल मिलेगा। आपकी क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आगे, और ओलंपिक कब खेलना है, किस तरह से आप उसके लिए प्रिपेयर हैं?
0: अगला तो अभी सर बहुत ज्यादा इस साल कॉम्पिटिशन थे बैक टू बैक, तो अभी हफ्ता भर तो काफी अच्छा रिकवरी लेना है घर पे, उसके बाद वापस मैं अपना नेशनल कैंप ज्वाइन करूंगी और नवम्बर में हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसकी तैयारी करूंगी। और मेन टारगेट तो 2028 का ओलंपिक्स है, बाकी उससे पहले काफी अभी छोटे छोटे ऐसे कॉम्पिटिशन है जो खेल के मुझे अपने आप को तैयार करना है, तो उनके लिए मैं तैयारी करूंगी।
1: जी कोटा के क्षेत्र की जनता, जो हमारे बच्चे खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनके लिए ये कहूंगी कि निरंतर मेहनत करें, हार जीत कुछ मैटर नहीं करती है, हार से तो आपको ज्यादा सीखने को ही मिलेगा, तो बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और खूब हार्डवर्क करिए, क्योंकि हार्डवर्क करने पर ही रिजल्ट मिलता है।
1: जी अरुणा जी, आपने गोल्ड मेडल जीता, देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, और उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि अब आगे जो भी आपके कंपटीशन होंगे, वर्ल्ड कप जैसे आपने बताया, ओलंपिक आपने बताया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी और फिर एक गोल्ड मेडल के साथ आप हमारे कोटा में होंगी।
0: जी जी जरूर, बिल्कुल होगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके इनसे बात करना।
1: आकाशवाणी कोटा को अपना समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक विजेता अरुंधति चौधरी से की गई बातचीत। यह आकाशवाणी कोटा का अंशदान था। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं पैराशूटर राहुल शर्मा से जितेंद्र वर्मा की गई बातचीत।
3: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम समय समय पर विभिन्न खिलाड़ियों से जो कि अपना एथलेटिक्स में या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना एक मुकाम हासिल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ राहुल शर्मा जी हैं। आप शूटिंग चैंपियन हैं और पिस्टल शूटिंग आप करते हैं, आप पैरा एथलीट हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे पैरा एथलीट राहुल शर्मा जी स्टूडियो में आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार
4: जी। बहुत बहुत धन्यवाद
3: राहुल जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप पिस्टल शूटिंग का गेम खेलते हैं और आप एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो ये पिस्टल शूटिंग में जाने का आपको कब और कैसे लगा कि हमें पिस्टल शूटिंग में जाना चाहिए, शूटिंग में अपना करियर बनाना चाहिए?
4: सर, मैं 2023 में एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, उससे मुझे पता चला कि गेमों में भी करियर बनाया जा सकता है, तो सर मैंने वहीं से शुरुआत की। तो मैंने शूटिंग के बारे में जानना चाहा कि भाई शूटिंग में कैसे जाया जाए, तो सर मुझे पता चला कि से वहाँ जाकर पता चला कि पैरा और स्पोर्ट्स अलग से होते हैं, कि पैरा जो खिलाड़ी होते हैं उनके गेम अलग से आयोजित किए जाते हैं। सर वहाँ जाकर पता चला कि सर मुझे लेफ्ट और राइट हैंड पिस्टल अलग अलग होती है, क्योंकि सर मैं लेफ्टी हूँ, तो सर मुझे इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो मोस्टली जो एथलीट्स हैं वो राइट हैंड ही राइट हैंड से ही यूज़ करते हैं। तो सर उसमें सर मेरे जो कोच हैं श्री सचिन सिंह शेखावत जी, सर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड पिस्टल से सर लेफ्ट हैंड से शूटिंग करवाई
3: जी,
4: जो कि सर एक बहुत ही टिपिकल टास्क है। उससे सर मैंने स्टेट और जोनल क्वालिफाई किया था राइट हैंड की पिस्टल को लेफ्ट हैंड से पकड़कर। तो उसके बाद धीरे धीरे सर ये जर्नी स्टार्ट हुई, मैं नेशनल खेला, उसमें मैं सिर्फ क्वालिफाई हो पाया, मेडल नहीं ले पाया। 2024 सर मेरा पूरा मतलब खाली चला गया, कोई मैंने काफी मेहनत की लेकिन मैं फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक। अभी सर 2025 में सर मेरा पहला नेशनल मेडल लगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मेरा सर ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता। उसके बाद सर स्टेट में मेडल लिए, फिर जोनल में मेडल लिए, फिर सर नेशनल में मेरे इस बार 5 मेडल थे।
3: ओके।
4: और सर उसी कड़ी में जो फर्स्ट और सेकंड ट्रायल हमारे हुए महू आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट महू के अंदर,
3: जी जी जी,
4: इसमें सर ऑल इंडिया में मेरी सर 3rd रैंक थी। उसके बाद सर हमारा सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स शूटिंग चैंपियनशिप में सर्बिया के अंदर,
3: जी जी,
4: जिसमें कि सर मैंने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, 10 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट, 10 मीटर एंड 25 मीटर पिस्टल इवेंट, जिसमें सर मेरी तीनों में ही सर बहुत बढ़िया रैंक रही। इसमें सर 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में मैंने सर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता।
3: वेरी गुड।
4: एंड सर 25 मीटर में सर मैं 7th प्लेस पर रहा ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड सर 10 मीटर एयर पिस्टल में मैंने सर टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
3: जी जी।

0: तो राहुल जी, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। पिस्टल शूटिंग जैसा कि एक बहुत कंसंट्रेशन वाला गेम होता है, तो कोई भी शूटिंग का गेम हो वो बहुत कंसंट्रेशन का होता है।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: ये कंसंट्रेशन लाने के लिए आप क्या किस तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं, क्या करते हैं?
1: जी सर, इसके लिए सर मैं मेडिटेशन, सर अपने आप को शांत रखता हूँ कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहूँ। तो फोकस के लिए सर सबसे पहली चीज़ होती है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहें, आप हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैच खेलें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि शूटिंग फोकस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग में ना आने दें। हम जब पिस्टल उठा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि शॉट कहीं ख़राब ना हो जाए या वो हो जाए, तो हम उसको अवॉइड करते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रखते हैं कि हमें हमारा जो प्रोसेस है उसको अच्छे से फॉलो करना
0: जी
1: है, परिणाम बाद में देखा
0: जी
1: जाएगा।
0: राहुल जी, यहाँ पर आप पैरा गेम्स आप खेलते हैं, जो ट्रेडिशनली जो नॉर्मल गेम्स होते हैं और पैरा गेम्स होते हैं,
1: जी
0: इनमें
1: सर,
0: क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से अंतर इसमें डिफरेंशिएट कर सकते
1: जी
0: हैं?
1: सर, नॉर्मल खिलाड़ी सर सामान्य, उनके सर सभी अंग जो हैं सामान्य हैं, उनसे सर उनको किसी भी प्रकार की सर चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो जो पैरा खिलाड़ी हैं, जैसे सर मेरा, मैं दाएं हाथ से सर मैं मतलब
0: जी जी
1: दिव्यांग है सर, मैं
0: जी
1: इसको दिव्यांग नहीं, मैं अपने अस्त्र मानता हूँ
0: जी जी जी
1: जी। तो ये हैं जैसे कई खिलाड़ी हैं जो व्हीलचेयर पर हैं, सर हमें, क्योंकि हमें वही करना है जो नॉर्मल खिलाड़ी कर रहा है, तो हमें सर उसके लिए एक अलग से कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेना होता है, कुछ अलग से टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं कि जिससे हम नॉर्मल खिलाड़ी जितना परफॉर्म कर पाएँ।
0: जी
1: जी सर,
0: जी अच्छा, ये आपका, अगर हम वर्ल्ड शूटिंग या वर्ल्ड कप शूटिंग, वर्ल्ड कप की अगर बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
1: सर ये मेरा पहला वर्ल्ड कप था और सर मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि हम यहाँ से निकले तो हमारी सर इस्तांबुल एयरपोर्ट पर टर्की में 5 घंटे का लेओवर था और हमारी कनेक्टिव फ्लाइट थी। यहाँ से हमारा टर्किश एयरलाइंस से था, वहाँ से हमारा एयर सर्बिया से था।
0: जी
1: हम जब फ्लाइट में इस्तांबुल से एयर सर्बिया में हम चढ़े तो हमें पता चला कि हमारे वेपन फ्लाइट में नहीं चढ़े हैं और हमारे वेपन इस्तांबुल एयरपोर्ट पर ही रह गए,
0: जी
1: जो कि हमें 2 दिन बाद सर्बिया में मिले। तो
0: जी
1: उसके लिए सर हमारे दिमाग में बस यही रहा कि अरे यार, वेपन तो आए नहीं, हम आ गए, तो बिना हथियारों के से कैसे जंग लड़ी जाएगी।
0: जी जी जी
1: तो वही चीज़ दिमाग में रही। लेकिन सर फिर मैंने हमारे कोच से बात हुई तो सर ने बोला कि आप ड्राई प्रैक्टिस करो, और सर हमारे एक बहुत ही मतलब दूरदृष्टि के धनी हैं, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रिप मेरे साथ में भेजी थी, यदि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आप किसी और का वेपन लेके भी शूटिंग कर सकते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं जी।
1: सर ये एक अच्छा मोमेंट रहा, सर ने बोला कि आप ड्राई प्रैक्टिस कीजिए, और ड्राई प्रैक्टिस कीजिए और वेपन आएगा वो देखेंगे, नहीं आएगा तो कुछ व्यवस्था की जाएगी। तो थोड़ा
0: जी
1: सा सर स्थिति ऐसी बन गई थी दिमाग में कि यार क्या होगा क्या होगा।
0: तो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने
1: जी
0: वर्ल्ड
1: सर,
0: रिकॉर्ड भी
1: जी सर,
0: स्थापित किया।
1: हम प्री ट्रेनिंग नहीं कर पाए सर, उसकी वजह से वेपन नहीं थे, हमने डायरेक्ट सर मैच ही किया।
0: जी फ्यूचर के क्या प्लानिंग्स हैं आपके?
1: फ्यूचर की सर सपना तो सर LA 2028 ही है, और लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028, एंड अभी जो हाल ही है जो मेरा नज़दीकी गेम है सर, वो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप साउथ कोरिया के अंदर सर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
0: जी राहुल जी, एक पैरा एथलीट होते हुए आपने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, निश्चय ही ये सभी जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो पैरा एथलीट्स हों या नॉर्मल एथलीट्स हों, उन सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी आपका है कि आपने 2023 से शुरुआत की थी शूटिंग की और 2026 में आप वर्ल्ड चैम्पियन बन करके आए हैं। तो निश्चय ही ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये संपूर्ण खिलाड़ी जितने भी हैं जो खेल रहे हैं, जो खेल में अपने करियर को आगे बनाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चय ही प्रेरणादायी रहेगा। ट्रेनिंग्स का क्या रहता है आपका, किस तरीके से आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के क्या सेशंस होते हैं, कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस ये क्योंकि शूटिंग एक एक्सपेंसिव गेम माना जाता है, तो किस प्रकार से मैनेज कर पाते हैं?
1: जी सर, गेम बहुत ही महंगा है ये कहा जा सकता है सर। इसमें मेरे पिताजी ने सर हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी इस मेहनत पर अंधा विश्वास किया है। वो कब वो कहते हैं कि यदि आप अपना करियर बना सकते हो तो पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे लगाए जा सकते हैं, तो आप सिर्फ मेहनत कीजिए, हम खड़े हैं आपके पीछे।
0: जी
1: और सर मेरे कोच का

0: सर इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो कि सर मुझे निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, और सर मैं मोस्टली वेपन सर उन्हीं के यूज़ करता हूँ, वो भी निशुल्क। तो सर इसमें सबसे बड़ा योगदान सर मेरे कोच और मेरे पिताजी का है।
1: जी चलिए राहुल जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके सपोर्टिव हैं, जो आपके कोच हैं, वो अगर सपोर्टिव होंगे तो निश्चय ही आपके गेम में निखार आता रहेगा। और क्या आप अपने साथ में जो भी सीखने वाले और खिलाड़ी हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, आप कैसे उनको सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं?
0: जी सर, मैंने मेरे अनुभवों से सर, जो मैंने जितनी मेहनत की है, मैं इस मेहनत से इतना सीखा है समय से, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो और खिलाड़ियों के लिए भी, या हर व्यक्ति के लिए जो मेरे से जुड़ा हुआ है, उसके साथ मेरे अनुभव उनके भविष्य निर्माण में कहीं ना कहीं कारगर साबित हो, तो सर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। इसके लिए सर मैं निरंतर प्रयास करता हूँ कि मैं किसी की व्यक्ति की किसी भी प्रकार से मदद कर पाऊँ।
1: राहुल जी, आपका शूटिंग में जाना और आपका जो आप इससे पहले पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे, तो उसमें और इसमें सामंजस्य बिठाने के लिए किस तरीके से आप करते हैं? अपनी एजुकेशन की बात अगर करें या कोई और काम आप करते हैं तो उसके लिए।
0: जी सर, मैं इससे पहले गवर्नमेंट जॉब की सर प्रिपरेशन कर रहा था, उसके साथ मैंने सर अचानक से शूटिंग में स्विच किया। मेरा मामला ये मेरा ये रहा कि मन की कुछ नया ट्राई किया जाए, और खेल की हमेशा से थी कि खेल खेलें खेल खेलें, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था किस खेल में जाएं। तो ये सर ईश्वरीय प्रेरणा रही कि हम शूटिंग में आए, सर यही हमारी जर्नी है।
1: जी राहुल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। किस प्रकार से आपने अपने संघर्षों के साथ में वर्ल्ड कप में आप खेले हैं, आपने जीते हैं, आप रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। जो खिलाड़ी इस समय तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उनके लिए सर यही है कि अपने जो विपरीत समय है, या आप जहाँ पे अपना मैच खराब हो जाता है या कुछ भी होता है, तो निराश ना हो, क्योंकि हम हर पल या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं हैं। अपने जो विफलताएं हैं उनसे सीखने की कोशिश करें, डीमोटिवेट ना हो कभी भी, क्योंकि मेहनत करने वालों कभी हार नहीं होती। सफलता समय मांगती है, एक एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है।
1: जी राहुल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी जर्नी के बारे में, अपने स्पोर्ट जर्नी के बारे में जो जानकारियाँ दी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय पर बातचीत के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पैराशूटर राहुल शर्मा से जितेंद्र वर्मा की प्रेरणादायक बातचीत। इसी के साथ आज का खेल जगत कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम खेल जगत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्म संगीत का। आइए आपको इस प्रोग्राम का पहला गीत सुनवाते हैं, मन्ना डे का गाया हुआ। फिल्म का नाम है वल्लाह क्या बात है।

0: 1956, 1957, 1958, 1959,
1: 1956, 1957, 1958, 1959.
0: दुनिया का ढांचा

0: 1959.
1: 1959.

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का ये समूह गीत। मुख्य स्वर थी मन्ना डे और लता मंगेशकर के। फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में श्रोताओं, अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। लता मंगेशकर के साथ एक और आवाज़ है शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है अंदाज़।

श्रोताओं, अभी आपने जो गीत सुना, फिल्म थी यकीन और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और अब गीत सुनिए उड़न खटोला फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, की आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम उस्तादों के उस्ताद। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त नीति को दर्शाती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलिन ब्लैक स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने अब तक की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया।

0: किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नबीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लव कुमार देब सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमारी चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना का चरण आज पूरा हो गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में लगभग 1,45,00,000 फॉर्म बांटे गए। इस दौरान 13,000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंचे और मतदाता सूची के सत्यापन का काम पूरा किया। इस महीने की 24 तारीख से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी प्रसारण सभा अब संपन्न होती है। कल सवेरे 5:53 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।